कर्म योग कर्म को एक विज्ञान बना देता है, जिसके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि संसार के समस्त कार्यों का सर्वोत्तम

उपयोग किस प्रकार करना चाहिए। कर्म तो अनिवार्य है, करना ही पड़ेगा, किंतु हमें सर्वोच्च ध्येय को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए। कर्म योग का अर्थ है मौत के मुंह में भी जाकर बिना तर्क वितर्क किए सबकी सहायता करना। भले ही हम लाखों बार ठगे जाएं, पर मुंह से एक बात तक ना निकालो और तुम जो कुछ भले कार्य कर रहे हो उसके संबंध में सोचो तक नहीं। निर्धन के प्रति किए गए उपकार पर गर्व मत करो और ना उससे कृतज्ञता की आशा ही रखो। कर्मयोग हमें शिक्षा देता है कि सबसे पहले हम स्वार्थपरता के अंकुर की बढ़ने की प्रवृत्ति को नष्ट कर दें और हमें जब इसके दमन की क्षमता आ जाए तो मन को बस वही रोक लें। स्वार्थपरता की इन लहरों से उसे मत बह जाने दें। कर्मयोग हमें शिक्षा देता है संसार को मत छोड़ो, संसार में ही रहो, जितना चाहो सांसारिक भाव ग्रहण करो, परंतु वह अपने ही भोग के निमित्त हो तो फिर तुम्हारा कर्म करना व्यर्थ है।

नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप सुन रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज और मैं हूं आपके अपने आरजे याजू। आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो से आप सभी का दिल से स्वागत करती हूं। हमारे स्टूडियो के घड़ी के हिसाब से अभी सुबह के 5:56 हो रहे हैं और इसी के साथ शुरू हो चुकी है हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा। आज है साल 2026 जुलाई महीने का शनिवार दिन और तारीख है 11। दोस्तों, इस खूबसूरत सुबह को आपके लिए और भी खास बनाने के लिए हम लेकर आए हैं ढेर सारी जानकारी, मनोरंजन और देश दुनिया की ताजातरीन खबरें। और इस पूरे प्रसारण में मेरे साथ स्टूडियो तथा एचपीडी में मौजूद है हमारी पूरी टीम, प्रसारण निष्पादक गोपाल राय और तकनीकी अभियंता तानातुम। तो बने रहिए मेरे साथ और चलिए इस सुहानी सुबह की शुरुआत करते हैं।

चलिए दोस्तों, अब एक नजर डालते हैं आज सुबह के आने वाले कार्यक्रम पर। 6:10 दिन की शुरुआत होगी भक्ति गीत के साथ। भक्ति और सुकून भरे गीतों के साथ आपको एक पॉजिटिव स्टार्ट मिलेगा। 6:40 सुनिए कालो दैलिक न्यूज, अपने क्षेत्रीय समाचार अपनी भाषा में। 6:45 पेश है सुबह सवेरे, जहां योगा, एक्सरसाइज, हेल्थ टिप्स और मधुर संगीत के साथ एक फ्रेश शुरुआत होगी। 7:10 सुनिए आपातकालीन दैनिक न्यूज़।

7:15 रहेगा मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट प्रोग्राम से, जहां मिलेगी लेटेस्ट जानकारी और लोकल न्यूज एक एंगेजिंग अंदाज में। 7:35 सुनिए तागिंदालिक न्यूज। 7:40 पेश है सदाबहार सूदिंग म्यूजिक के साथ लोकल अनाउंसमेंट और वेदर अपडेट्स।

8 बजे सुनिए समाचार प्रभात हिंदी में राष्ट्रीय समाचार 8:15 रहेगा मॉर्निंग न्यूज इंग्लिश में। 8:30 प्रस्तुत है नॉर्थ ईस्ट न्यूज पूर्वोत्तर के खास खबरों के साथ।

8:40 सुनिए हेलो ईटानगर, इन्फॉर्मेशन और म्यूजिक का एक परफेक्ट मिक्स। 9:00 फिर से हिंदी न्यूज, 9:05 रहेगा इंग्लिश न्यूज।

9 बज के 10 मिनट एंजॉय कीजिए फिल्मी गपशप जहां होंगे बॉलीवुड अपडेट्स मूवी रिव्यूज ओटीटी रिलीजेस और एंटरटेनमेंट की बातें। 10 बज के 10 मिनट शुरू होगा रेडियो ऑन डिमांड जहां बजेंगे आपके पसंद के गाने और स्पेशल रिक्वेस्ट। तो दोस्तों बने रहिए अरुण एफएम के साथ क्योंकि यहां हर सुबह होती है खास। यह आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है जहां होती है दिल से दिल की बात। तो दोस्तों अब आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच मुक्त व्यापार समझौते सहित वाणिज्य और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बातचीत जारी है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और प्रमुख उद्योग तथा खेल जगत की हस्तियों से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की यात्रा पूरी करने के बाद न्यूजीलैंड पहुंचे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। भारतीय समुदाय ने भी उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी की दो दिवसीय यात्रा के स्वागत में ऑकलैंड के प्रसिद्ध स्काई टॉवर को भारतीय तिरंगे के रंगों से रोशन किया गया है। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये न्यूजीलैंड की 40 साल बाद पहली यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआनपोई साइवई ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों को लाभ होगा।
1: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
2: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
1: एंड देन वी कैन सेल टू फर्दर मार्केट्स एज वेल।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज बिहार के गया जी का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। स्वदेशी स्टील फिग्रेट INS महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना भारत की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसीलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। ये सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस बीच रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए। प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल की जाती है। भाजपा ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर मतदान 30 जुलाई को होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन अहमद अल मुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर

0: तथा एआई क्षेत्रों पर केंद्रित रही। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा सिक्किम में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खेलों में फीफा विश्व कप में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 88वें मिनट में किया। आज तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। विंबलडन टेनिस में आज महिला सिंगल्स फाइनल में चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा का मुकाबला लिंडा नोस्कोवा से होगा। दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंची हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सुभद्रा रामचंद्रन। Prime Minister Narendra Modi is holding delegation-level talks with his New Zealand counterpart, Christopher Luxon, in Auckland. Both leaders will be reviewing the entire gamut of the bilateral relationship, which has seen significant progress in the last 2 years, especially in the areas of trade and commerce and defence. In his opening remarks, Prime Minister Modi said that his visit to New Zealand marks a historic milestone in bilateral relations and will give fresh momentum to ties between the two countries. He said the two countries have now taken a significant step by establishing a strategic partnership which will guide future cooperation. Highlighting the shared democratic values and maritime ties between the two nations, Prime Minister Modi said India and New Zealand can play an important role in strengthening peace, stability and security in the Indo-Pacific region.
2: मित्रता भरे शब्दों के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कल रात्रि को आपका एयरपोर्ट पे आना ये अपने आप में बहुत बड़ा जेस्चर है और मेरी तरफ से मैं विशेष रूप से आपका आभार व्यक्त करता हूँ और आपके मंत्री से पूरा समय मेरे साथ रहे रात को मेरे लिए खुशी की बात है कि 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ है और आपने एक प्रकार से आपकी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। न्यूजीलैंड के लोगों के बीच आकर उनका भारत के प्रति जो स्नेह है ये देखकर कोई भी व्यक्ति बहुत ही भावुक हो जाता है और मेरे मन को वो छूने वाला है और इसके लिए भी मैं बहुत आपका आभारी हूँ। ये हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो हमारे संबंधों की नई ऊर्जा हमारी मित्रता के नए संकल्प को दोहराने वाला है। आप जब भारत आए थे और एफटीए के शुरुआत हुई और इतने कम समय में पूरा न्यूजीलैंड एक साथ होकर के एफटीए को जमीन पे उतारना इतने कम शायद दुनिया में पहली बार इतने कम समय में ये सफलता हुई होगी और इसके लिए मैं आपके नेतृत्व को आपकी सरकार को आपकी टीम को हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।
1: Speaking on the occasion, the New Zealand Prime Minister described Prime Minister Modi's visit as a historic milestone, marking the first visit by an Indian Prime Minister to New Zealand in 40 years. Later in the day, Prime Minister Modi will also interact with prominent business and sports personalities. In a reflection of the strong people-to-people ties that exist between the two countries, Mr. Modi will address a large gathering of the Indian diaspora today. The Indian Navy is all set to commission its 6th Project 17A indigenous stealth frigate Mahendragiri F-38 into its eastern fleet at Vishakhapatnam in Andhra Pradesh today. The ceremony will be presided over by the Defence Minister Rajnath Singh. Union Home Minister Amit Shah has said the government is firmly committed to making the country's coastal security unbreachable. Mr. Shah made the remarks while reviewing the progress made in the establishment of the Bureau of Port Security, BOPS, along with the Union Minister for Port, Shipping and Waterways, Sarbananda Sonowal. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar met his Omani counterpart Badr bin Hamad Al Busaidi in Muscat yesterday and held discussions on various facets of the cooperation between the two countries. In a social media post, Dr. Jaishankar said the talks focused on trade, investments, connectivity,

स्वागत है आप सबका मेरे प्यारे दोस्तों। इस सुहानी सुबह की शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत और पवित्र एहसास के साथ, दिल को शांति देने वाले सुर और भक्ति से भरे। पेश है धोनी पोलो भक्ति गीत पालिंग पर में और साथियों की आवाजों में।

0: दोस्तों ये था भक्ति गीत। उम्मीद है इन मधुर सुरों ने आपके मन को शांत और दिन को एक पॉजिटिव शुरुआत दी होगी। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों अब आप सुन पाएंगे कालो दैलिक में समाचार।
1: से आकाशवाणी ईटानगर तनका दम प्रोग्राम चाप तेन लोफोल के लोरी गोला लोकिनान अरसोगों दुनुक तलीरो नम कलो मेंकी नाग में मेंजी दू मेंकी मेंजी ना से कोई जर दो लोग अलोलो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी नेशन टूर प्रोग्राम एमने भी लोम नाकलो न्यूजीलैंड लो आलिक तो सो को आलिक दागलो न्यूजीलैंड लो का प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लुकजन भी एमने वेलकम एमने आगाम लारिक सिनेम भी दाग दूला वेलकम एम रितो ओके मोदी ने ऑकलैंड एयरपोर्ट लो इंडिया ओके न्यूजीलैंड लो का आर्म फोर्स गद्दचिन रिसेप्शन एम कई रूब काकिन रूब रिगला दाग रिगला रिका अरुणाचल प्रदेश ओके इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट जर्नी आरालो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे अरुणाचल प्रदेश ओके 17 रोड प्रोजेक्ट एप्रूव नाम एमने काज तजिरा एमला मेन्दुकुला सोगो मूर्खो एम 611.17 करोड़ गोब इंदे सोक इंदे नाम सिगिम सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 2026-27 आरालो का जिरा एमला तोगसितु चीफ मिनिस्टर फेमाकांदो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के संब रिजिनम सोक लगाब अचिरूब कोई कागोम जिलकतु लोग अलोलो लरीगोला लकनाना असम लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन लो फाइनेंस मिनिस्टर जयंता माला बरुआ 2026-27 लोक असम गवर्नमेंट लोक बजट एस्टिमेट एमने 1.56 लाख करोड़ मतु बजेट आर सगो 2 लाख अनएम्प्लॉयमेंट सिमने आर नि सगो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज ऑटोनोमस काउंसिल ओके स्टेट ओन एंटरप्रेनर्स ओके अलीब कॉलेज मौलिक नाम एमने गोलफारा हिलीखंडी होजाई ओके बालीजन बजाली डिस्ट्रिक्ट लगाब बजे तमचिन बदे सगो परफोजम असेंबली सेशन रिदाकलो जीता तो निदुम आक मेंबर गोब इंटर मिनिस्ट्रियल टीम एमने होम मिनिस्ट्री लोक जॉइंट सेक्रेटरी निस्ता तिवारी भी इंग सिदुकुला दीदर रचक मज्जाब मोदर कुनाम एमने ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट लोक बिलाट सर्कुल ओके लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट लोक कोरा सर्कुल एमने कागो तागुआ रिदुकुला भी सिबुग रचक मज्जाब मोदर कुनाम नाम रूम तुम गारिक तारिक रिमिन सिदुकुला भी रिलीफ जिनम ओके रिहेबिलिटेशन सिगिम लरु सरकार लोक योग रिलाचिंग कागुर तागुरम रिजिरमला मेन्तु ओकब स्टेट गवर्नमेंट एमने प्राइवेट प्रॉपर्टी ओके पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज नम गदे लोक एस्टिमेट एम अलिब लाख डॉलर जिलुक तो कामला मेंकिंतु तान गदे मेंकिन अगम दनो आकाशवाणी ईटानगर लोक तपादु अरुणाचल प्रदेश डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट लोक रिपोर्ट लोक कान में सिंह गनी सगो चंपी गोला लिपी गोब मोद मोब अरुणाचल प्रदेश सगो एक्तु सगो वेस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट लो अची आरु बक्तु रिलाचिन सगो नी सिलिक नी लिगला ओक नाम रिक मोतु मोरे जानम काम आतु हमला मिंकिंतु तावांग डिस्ट्रिक्ट लो चिन 8 times गोब मोद मोब एक्क वेस्ट कमिंग लो 5 times गोब एक्तु लॉन्ग डिग लो लेकिन गो एक्तु हमला मिंकिन जिदु गुला डिजास्टर मैनेजमेंट अरुणाचल प्रदेश के मोद मोब कोलरुदाकुन्ना एक लगा बंदर हम एन सी कासला अलिब दूत लगा हमला दिंची जाब मेन किंतु मरो लोक भवन ईटानगर लो अरुणाचल प्रदेश स्मॉल टी ग्रोवर एसोसिएशन अरुणाचल प्रदेश गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर के टी फरनायक ने कारक सिदूला ती सारिको लोक योम प्रोग्रेस चैलेंज ओक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अबा एक आदू दे सोक लगे लगाम जब दुम मिन सितु दो दुम सको गवर्नर वे ती financial support, okay, quality certificate, value adding, opportunity, branding, initiative, and wider market linkage and facilities abaga the sigimne. State government okay. India T board Kajita Jamrira Amla Minka. FIFA World Cup Tukolo Ija France past year.

गुड मॉर्निंग ईटानगर, अभी आप सुन रहे थे गालो भाषा में हमारा खास समाचार बुलेटिन। और अब वक्त हो चला है आपके सबसे पसंदीदा और ताजगी से भरे कार्यक्रम, जी हां सुबह सवेरे। आप सभी प्यारे श्रोताओं को एक बेहद खूबसूरत और सुनहरी और सेहतमंद सुबह मुबारक। उम्मीद है आपकी ये सुबह एक नई उमंग और नए जोश के साथ शुरू हुई होगी। पता है हर नया दिन हमारे लिए एक कोरा कागज का जैसा होता है और इस कागज पर हम अपनी अच्छी आदतों से एक बेहद खूबसूरत जिंदगी की कहानी लिख सकते हैं। और जब बात दिन की शुरुआत की हो तो हमारी सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसीलिए तो आपका ये दोस्त हर दिन लेकर आता है ढेर सारी ऐसी बातें जो आपके चेहरे पर मुस्कान भी लाए और आपको फिट भी रखे। तो चलिए इस प्यारी सी इस सुबह का स्वागत करते हैं एक बेहद ही खूबसूरत गीत के साथ। आप सुनिए ये पहला गाना और मैं बस अभी हाजिर होती हूँ सेहत के कुछ अनमोल मंत्रों के साथ। स्टे ट्यून्ड।

वेलकम बैक श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सुबह सवेरे। दोस्तों, अक्सर जब हम योगा या एक्सरसाइज की बात करते हैं तो वही पुराने आसान और स्ट्रेचेस हमारे दिमाग में आते हैं, लेकिन आज हम कुछ बिल्कुल अलग बात करेंगे। सेहतमंद रहने के लिए जरूरी नहीं है कि आप घंटों मुश्किल आसन करें या हैवी वेट उठाएं। सबसे पहले बात करते हैं एक बेहद असरदार एक्सरसाइज की, जिसे कहते हैं कैट काउ मोबिलिटी स्ट्रेच। अगर सुबह उठते ही आपकी पीठ या कमर में जकड़न लगती है तो जमीन पर दोनों हाथ और घुटने टिकाकर बैठ जाइए और अपनी पीठ को ऊपर नीचे मूव कीजिए। यह आपकी स्पाइन को मक्खन जैसा लचीला बना देता है। इसके साथ ही आप खड़े खड़े 2 मिनट के लिए स्पोर्ट मार्चिंग या जॉगिंग कर सकते हैं। ये बिना घर से बाहर गए आपके हार्ट रेट को पंप करता है और सुबह का आलस बिल्कुल गायब कर देता है। अब आते हैं हमारे योगा सेगमेंट पर। क्या आपने कभी सूक्ष्म व्यायाम के बारे में कभी सुना है? इसे हम माइक्रो एक्सरसाइज भी कहते हैं। हमारे शरीर के छोटे छोटे जॉइंट्स, जैसे हमारी उंगलियां, कलाइयां और गर्दन, इन्हें सुबह सुबह हल्का सा रोटेट करना हमारे नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। अगर आप दिन भर कंप्यूटर पर बैठे हैं या खेत बड़ी का काम करते हैं तो सुबह सिर्फ 5 मिनट अपने जॉइंट्स को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को और एनर्जी को तुरंत बूस्टर देता है। और चलिए एक और कमाल की चीज बताती हूँ, त्रातक क्रिया या आई योगा। सुबह उठकर किसी एक चीज पर या सुबह के हल्का सूरज पर बिना पलके झपकाए फोकस करिए जब तक आंखों में थोड़ा पानी ना आ जाए। आजकल स्क्रीन देख देख कर हमारी आंखें थक जाती है और ये सिंपल सी प्रैक्टिस आपके आई साइट और फोकस दोनों को बेहतर बनाएगी। चलिए, इस यूजफुल टिप के बाद वक्त हो चला है एक और बेहद खूबसूरत गीत का।

दोस्तों, एक्सरसाइज का मतलब सिर्फ पसीना बहाना नहीं होता, बल्कि अपने शरीर के साथ एक गहरा कनेक्शन बनाना होता है। आज का मेरा सबसे बड़ा हेल्थ टिप्स पता है क्या है? वो है माइंडफुल वॉकिंग और सर्कैडियन रिदम, यानी प्रकृति के चक्राधर चलना। सुबह जब आप वॉक पर निकले तो अपने कानों में हेडफोन मत लगाइए। अपने आसपास की चिड़ियों की चहचहाट सुनिए, ठंडी हवा को महसूस कीजिए, और हाँ, अगर हो सके तो थोड़ी देर घास पर नंगे पैर चलिए, जिसे हम अर्थिंग कहते हैं। ये आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को जमीन के अंदर एब्सॉर्ब कर लेता है और आपको पूरे दिन के लिए काम और हैप्पी बनाता है। इसके साथ ही अपनी सुबह की शुरुआत किसी कोल्ड

ड्रिंक या सीधे चाय से करने के बजाय हल्का गुनगुना पानी पीकर करें। ये आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के का सबसे आसान और असरदार तरीका है। सेहत की इन प्यारी बातों के साथ अब वक्त हो चला है हमारे आज के अगले गाने का।

दोस्तों, उम्मीद है आज के गाने और हमारे सेहत की बातें आपको पसंद आई होंगी। याद रखिए, एक सेहतमंद शरीर में ही एक खुशहाल दिमाग बसता है। अपने लिए रोज सुबह थोड़ा सा वक्त जरूर जरूर निकालिएगा। तो ये था कार्यक्रम सुबह सवेरे आकाशवाणी ईटानगर कार्यक्रम एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ से, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, अब आप सुन पाएंगे अपनी भाषा में समाचार।

नमस्कार दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आपातानी भाषा में हमारा समाचार बुलेटिन। और अब वक्त हो चला है एक नई ऊर्जा, नए जोश और ढेर सारी जानकारियों से भरे आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम। जी हाँ, इट्स टाइम फॉर गुड मॉर्निंग एंटरटेनमेंट। आप सभी प्यारे श्रोताओं को एक बेहद ही शानदार और ताजा तरीन सुबह मुबारक हो। मैं हूं आपकी होस्ट और आरजे याजु इस खूबसूरत दिन की शुरुआत को और भी दिलचस्प बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। पता है दोस्तों, हर सुबह हमारे लिए कुछ नया सीखने और दुनिया को एक नए नजरिया से देखने का मौका लेकर आती है। और हमारा ये शो यानी मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट आपके लिए एक ऐसा ही गुलदस्ता है जहां आपको मिलेगी संगीत की धुन, आज के दिन का ऐतिहासिक महत्व और हमारे प्यारे अरुणाचल प्रदेश समेत देश दुनिया की ताजा खबरें। तो चलिए इस खूबसूरत सफर का आगाज करते हैं एक बेहद ही स्वीट और दिलदार गाने के साथ। आप गुनगुनाइए ये पहला गाना और मैं लेकर आती हूं दुनिया का इतिहास सिर्फ आपके लिए। स्टे ट्यून्ड।

वेलकम बैक श्रोताओं, आप सुन रहे हैं मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट। दोस्तों, वक्त हो चला है हमारे सबसे पहले सेगमेंट का, जहां हम बातें करते हैं ग्लोबल हिस्ट्री की, यानी उन बड़ी घटनाओं की जिन्होंने पूरी दुनिया का रूप बदल दिया है। आज के दिन यानी 11 जुलाई के इतिहास की कुछ ऐसे ही बड़े बातें आपको आज मैं बताने जा रही हूं। आज ही के दिन साल 1987 में दुनिया की आबादी ने 5 बिलियन का आंकड़ा पार किया था। इस बड़े माइलस्टोन को याद करने और बढ़ती पॉपुलेशन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने आज के दिन को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे घोषित किया। साल 1985 में आज ही के दिन दुनिया की सबसे पहली ऑटोमोबाइल रेस की शुरुआत हुई थी, जो पेरिस से रोएन तक थी। सोचिए, वहां से शुरू होकर आज हम फॉर्मूला एक के दौर में पहुंच गए हैं।

साल 1895 में आज ही के दिन दुनिया की सबसे पहली ऑटोमोबाइल रेस शुरू हुई थी। उसके बाद साल 1960 की तो आज ही के दिन अमेरिकन ऑथर हार्पर ली की मशहूर और आइकॉनिक नॉवल टू किल अ मॉकिंगबर्ड पब्लिश हुई थी, जिसने आगे चलकर पूरी दुनिया में लिटरेचर की परिभाषा बदल दी। और साल 1979 में अमेरिका का सबसे पहला स्पेस स्टेशन जिसे स्काईलैब कहते हैं, स्पेस से लौटते वक्त क्रैश होकर इंडियन ओशन और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के आसपास गिरा था। ये स्पेस हिस्ट्री की एक बेहद रोमांचक घटना थी। दुनिया का चक्कर लगाने के बाद अब थोड़ा सा संगीत का लुफ्त उठाते हैं। सुनिए ये प्यारा सा गाना और फिर मैं हाजिर होती हूँ आज के दिन हमारे प्यारे भारत में क्या क्या इतिहास रचाया गया है।

दोस्तों ग्लोबल हिस्ट्री के बाद अब रुख करते हैं हमारे देश की तरफ और देखते हैं इंडिया हिस्ट्री में आज का दिन क्या महत्वपूर्ण है। साल 1957 में आज ही के दिन इंडियन सिनेमा और गजल गायकी के एक बड़े उस्ताद और वर्सेटाइल एक्टर साधु महरिक जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने अपने बेहतरीन एक्टिंग से इंडियन पैरेलल सिनेमा को एक नया मुकाम दिया। साल 2003 में भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों को बेहतर करने के लिए लेजेंडरी दिल्ली लाहौर सदाए सरहद बस सर्विस को फिर से शुरू किया गया था, जो दोस्ती का एक बड़ा सिंबल बनी। स्पोर्ट्स की दुनिया से बात करें तो साल 2018 में भारत की बेटी और स्टार स्प्रिंटर हिमा दास ने फिनलैंड में चल रहे वर्ल्ड U20 चैंपियनशिप की 400 मीटर रेस में ग्लोबल मेडल जीतकर इतिहास रच दिया था। किसी ग्लोबल ट्रैक इवेंट में गोल्ड जीतने वाली वो पहली इंडियन एथलीट बनी थी। और साल 2012 में आज ही के दिन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने स्पेस टेक्नोलॉजी में एक और बड़ा कदम बढ़ाते हुए पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV C-19 के जरिए एडवांस रडार इमेजिंग सैटेलाइट RISAT-1 को कामयाबी के सत ऑर्बिट में सेटअप किया था। देश और दुनिया के इतिहास के पन्नों को देखने के बाद चलिए अब वक्त है हमारे आज के दूसरे गाने के।

0: वेलकम बैक दोस्तों। संगीत के सफर के बाद अब वक्त हो चला है हमारे सबसे अहम सेगमेंट का, लोकल न्यूज एक्सप्रेस, जो कि अरुणाचल टाइम से ली गई है। आज यानी 11 जुलाई 2024 को हमारे अरुणाचल प्रदेश के न्यूज़पेपर में कौन सी खबरें सबसे ज्यादा छाई हुई हैं, आइए उन पर एक नजर डालते हैं। ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन आपसू ने स्टेट गवर्नमेंट की उस कंसल्टेटिव मीटिंग के का खड़ी आलोचना और विरोध किया है, जो कचारी कम्युनिटी को एसटी स्टेटस देने के प्रपोजल पर होने वाली है। आपसू का कहना है कि नॉन इंडिजिनियस कम्युनिटीज को ट्राइबल स्टेटस देने से इंडिजिनियस ट्राइबल्स के राइट्स वीक होते हैं। अंशु ने गवर्नमेंट से फंक्चर हाईवे प्रोजेक्ट के लैंड कम्पेंसेशन को लेकर एक व्हाइट पेपर जारी करने की मांग की है। उनका कहना है कि कुरुंगकुमे, करादादी और ईस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट में कम्पेंसेशन डिस्पर्समेंट में पूरी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने गवर्नमेंट लैंड्स पर चल रहे एनक्रोचमेंट और इलीगल कब्जों के खिलाफ अपनी ड्राइव को और भी तेज करने का फैसला किया है, जिसमें लोकल यूथ बॉडीज भी उनका साथ दे रही है ताकि सरकारी जमीनों को मुक्त कराया जा सके। वेस्ट कमिंग के दिरंग सब डिवीजन से एक बेहद अच्छी और पर्यावरण के हित में खबर है। दिरंग एडमिनिस्ट्रेशन ने प्लास्टिक वेस्ट को कम करने के लिए 1 अगस्त से 500 ml की प्लास्टिक वाटर बॉटल्स पर पूरी तरह बैन लगाने का फैसला किया है। स्टेट में चल रहे डेवलपमेंट वर्क्स को लेकर एक बड़ी हाई लेवल रिव्यू मीटिंग हुई है, जहां प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम और बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर आने वाले सभी प्रोजेक्ट्स के स्टेटस और प्रोग्रेस का गहराई से जायजा लिया गया है ताकि काम सही वक्त पर पूरा हो सके। दोस्तों, मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट में आज बस इतना ही। यह आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ से अब आप सुन पाएंगे तागिन भाषा में समाचार।
1: आकाशवाणी ईटानगर स्टेशन ने शुरू मुल्क तागिन प्रोग्राम मकोगी लयुनंगा बिनताम गेने सिराज इब्राहिम। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अलुलोम गुब त्री नेशन टूर गु अंकर दकुला मयूग प्राइडे अलोलो ऑकलैंड लो अंगला विफा दुकु सो न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन निमे प्राइम मिनिस्टर मोदी नि हरफल कारुबला विफालें दुकु सो प्राइम मिनिस्टर मोदी नि ऑकलैंड एयरपोर्ट लो न्यूजीलैंड के

स्वागत है आप सबका फिर से दोस्तों। अभी आप सुन रहे थे तागिन भाषा में हमारा समाचार बुलेटिन। अब हवाओं में घुलने जा रही है संगीत की वो मीठी खुशबू जो आपके दिल के तारों को छू लेगी। वक्त हो चला है आपके सबसे दिलदार और यादों से भरे प्रोग्राम का। जी हाँ, शुरू हो चुका है आपका अपना शो सदाबहार। आप सभी प्यारे श्रोताओं को इस खूबसूरत ठंडी और सुहानी सुबह का प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे याजू, इस सुनहरे सफर में आपके साथी। दोस्तों, नए जमाने के गाने चाहे जितने भी बदल जाए, पर जब तक उन पुराने और सुनहरी गीतों की धुन कानों में ना पड़े, तब तक सुबह की शुरुआत अधूरी से लगती है। वो दौर ही कुछ और था जहां हर एक लफ्ज में जज्बात होते थे और हर धुन में एक सुकून होता था। आज के शो में हम गुजरे जमाने के उन्हीं नायाब पन्नों को पलटेंगे, संगीत के सुनहरे मोती बिखरेंगे और साथ ही जानेंगे कि आज हमारे मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है। तो चलिए यादों के इस सफर का आगाज करते हैं एक बेहद ही रोमांचक और हमेशा जवान रहने वाले क्लासिक पुराने गाने के साथ। आप इस गीत को आनंद लीजिए।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं सतबहार मेरे साथ। और जैसे कि मैंने कहा था कि बताया था, चलिए अब सीधे रुख करते हैं आई एम दी मेट्रोलॉजिकल सेंटर ईटानगर की तरफ और जानेंगे कि आज यानी 11 जुलाई 2024 को हमारी कैपिटल सिटी ईटानगर का मौसम कैसा रहने वाला है। दोस्तों, अगर आप आज घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपनी छतरी और रेनकोट बिल्कुल मत भूलिएगा। आईएमडी के मुताबिक आज ईटानगर और इसके आसपास के इलाकों में आसमान पर पूरे दिन घने बादल छाए रहेंगे। आज दिनभर में एक या दो बार तेज बारिश और थंडर शावर यानी बिजली खरीदने के साथ अच्छी खासी लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने की पूरी असर है। अगर टेम्परेचर यानी तापमान की बात करें तो सुबह के वक्त ठंडक बनी हुई है और आज दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर 33.0 डिग्री सेल्सियस तक जाने की उम्मीद है, जबकि रात को मिनिमम टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। मौसम में नमी यानी रिलेटिवली ह्यूमिडिटी लगभग 72% तक बनी हुई है, जिससे हल्की सी उमस महसूस हो सकती है, पर बारिश की बूंदें उसे जल्द ही सुहाना बना देंगी। तो ईटानगर के मेरे दोस्तों, मौसम का लुफ्त उठाइए पर सावधानी के साथ। चलिए मौसम की इस ठंडक के बीच खोलते हैं थोड़ा सा संगीत का जादू। सुनिए ये अगला पुराना गाना।

0: और डूब जाइए यादों की समुंदर में।
1: लेटेस्ट अपडेट

दोस्तों, ईटानगर के मौसम के बाद आइए अब बात करते हैं हमारे प्यारे अरुणाचल प्रदेश के बाकी डिस्ट्रिक्ट के मौसम की डिटेल फोरकास्ट के बारे में, क्योंकि आईएमडी डिपार्टमेंट ने स्टेट के लिए एक अहम स्पेशल वेदर बुलेटिन और वार्निंग्स जारी की है। दोस्तों, पूरे अरुणाचल प्रदेश में मानसून इस वक्त पूरे जोश पर है। आईएमडी के मुताबिक आज स्टेट के कई हिस्सों में फेयरली वाइड स्प्रेड रेनफॉल होने की संभावना है, यानी ज्यादातर जगहों पर अच्छी बारिश होगी। इसके साथ ही आईएमडी ने कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के लिए हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल का अलर्ट भी जारी किया है। खासकर हमारे पापुमपारे, अपर सियांग, ईस्ट सियांग और नामसाई डिस्ट्रिक्ट में कुछ जगहों पर बादल गरजने और बिजली खड़कने के साथ साथ भारी बारिश हो सकती है। इतना ही नहीं, लोअर दिवांग वैली डिस्ट्रिक्ट में तो वेरी हैवी रेनफॉल का वार्निंग अलर्ट जारी किया है, इसीलिए वहां के लोग बेहद सावधान रहें। बारिश के इस मौसम में हिली एरियाज में छोटी छोटी लैंडस्लाइड या मडस्लाइड होने का खतरा रहता है और विजिबिलिटी यानी धुंध के चलते रास्ते धुंधले हो सकते हैं। इसीलिए हमारा स्टेशन आप सभी से गुजारिश करता है कि जब तक जरूरी ना हो पहाड़ी रास्तों पर ट्रैवल करने से बचें और नदियां नालों के पास जाने से परहेज करें। सुरक्षित रहिए और मौसम को एंजॉय कीजिए। चलिए अब इस सुनहरी और ठंडी सुबह को और भी यादगार बनाते हैं हमारे आज के आखिरी सुनहरे गीत के साथ।

0: दोस्तों, मोहम्मद रफी और किशोर दा के दौर की तो बात ही कुछ अलग है। उम्मीद है आज के ये पुराने गाने और हमारे मौसम की ये डिटेल जानकारी आपके काम आई होगी और आपकी सुबह को सुहाना बनाया होगा। अब आपका ये दोस्त आपसे विदा लेना चाहेंगी। मौसम बदल रहा है तो अपना और अपने परिवार की सेहत का पूरा ख्याल रखिएगा। कल सुबह फिर मिलेंगे ठीक इसी वक्त इसी स्टेशन पर लेकर आपका अपना शो सदाबहार। तब तक के लिए हंसते रहिए, गुनगुनाते रहिए और सुरक्षित रहिए। यह आकाशवाणी ईटानगर कारण एफ एम 103.1 MHz है। दोस्तों, अब आप सुन पाएंगे दिल्ली और शिलोंग केंद्र से समाचार।
1: जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो
2: एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
3: जल है तो हम है। आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। भारत और न्यूजीलैंड ने आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा, आपदा प्रबंधन और पशुपालन सहित प्रमुख क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट महेंद्र गिरी आज नौसेना में शामिल होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की, मजबूत तटीय सुरक्षा उपायों के निर्देश दिए। फीफा विश्व कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में, आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से। और विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज की कैरोलिना मुकोवा हमवतन लिंडा नोस्कोवा के साथ खेलेंगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन एवं डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑकलैंड स्थित गवर्नमेंट हाउस में औपचारिक स्वागत किया गया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने उन्हें राजकीय सम्मान के साथ रिसीव किया। औपचारिक स्वागत के बाद दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान रक्षा, पशुपालन, डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ, जिससे भारत न्यूजीलैंड साझेदारी को नई गति मिली। इसके बाद दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड बिजनेस एंगेजमेंट कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने रिकॉर्ड कर समय में मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने पर खुशी जताई और विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2 गुना हो जाएगा। उन्होंने न्यूजीलैंड के उद्योग जगत को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि भारत केवल एक बड़ा बाजार ही नहीं बल्कि वैश्विक विकास का एक सशक्त लॉन्च पैड भी है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
4: वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 40 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
6: 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ है और एक प्रकार से आपकी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। ये हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो हमारे संबंधों की नई ऊर्जा, हमारी मित्रता के नए संकल्प को दोहराने वाला है।
4: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा। प्रधानमंत्री ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते को द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने वाला एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
6: लोकतांत्रिक मूल्यों के में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये, और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य हैं उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
4: न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई देगी। उन्होंने कहा कि सामरिक साझेदारी से व्यापार सहित कई क्षेत्रों में सहयोग का दायरा और बढ़ेगा।
7: Marking the first visit by an Indian Prime Minister to New Zealand in 40 years. This visit is also a significant milestone in the New Zealand-India relationship. When I visited last year, you welcomed me and my delegation with great warmth and tremendous generosity.
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और उद्योग तथा खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से भी मुलाकात करेंगे। स्वदेशी स्टील फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। ये भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का प्रमुख संरक्षक है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है।
8: हमारे व्यापार का 90% से अधिक हिस्सा समुद्री मार्ग से ही होता है। हमारे विशाल इंप्रेसिव इकोनॉमिक जोन है, हमारे आइलैंड टेरिटरीज है और यह जो रीजन है और आज पहले से कहीं अधिक कॉम्प्लेक्स और अधिक चैलेंजिंग होता जा रहा है और इस रीजन में एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स की प्रेजेंस और एक्टिविटी लगातार बढ़ रही है, जिससे आप प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहे हैं।
4: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। उन्होंने वर्तमान बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हुए पत्तन सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण शीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया।
2: इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, खुफिया ब्यूरो के निदेशक, सीमा प्रबंधन सचिव, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय सचिव, मत्स्य पालन विभाग के सचिव, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। BOPS का गठन मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 की धारा 13 के प्रावधानों के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में किया जा रहा है। ब्यूरो का नेतृत्व एक महानिदेशक करेंगे और यह पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के अधीन काम करेगा। श्री शाह ने मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के साथ मछली पकड़ने वाले बंदरगाहों और मछली उतारने के केंद्रों के लिए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज एक दिन के बिहार दौरे पर गया जी जाएंगे। इस दौरान वे बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हाल के तनाव के बावजूद अमेरिका और ईरान वार्ता जारी रखने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने वार्ता जारी रखने का अनुरोध किया है और अमेरिका इस पर सहमत हो गया है। अमेरिका ने ईरान से होर्मुस जलडमरू मध्य में जहाजों पर हमले रोकने की मांग की है। इन हमलों के कारण तनाव बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। वेनेजुएला में पिछले महीने आए 2 शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या 4,000 से अधिक हो गई है। वेनेजुएला संसद प्रमुख जॉर्ज रोड्रिगेज के अनुसार अब तक 4,118 लोगों की मौत हो चुकी है और 16,740 लोग घायल हुए हैं, वहीं हजारों लोग अब भी लापता हैं। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत लोगों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के काम में लगे आशीष अग्रवाल से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
3: प्लास्टिक को रिप्लेस कर दिया हमने कपड़े के बैग से, वैसे ही प्लास्टिक की बॉटल्स को रिप्लेस कर दिया मेटल की बॉटल से, टिश्यू पेपर को रिप्लेस कर दिया रुमाल वगैरह से। इन अनरीड मेल्स 2000 रहेंगे, 5000 रहेंगे, 10000 रहेंगे, 100 रहेंगे, कितना बड़ा मेल है उसमें अटैचमेंट है कि नहीं है, तो सिर्फ इनबॉक्स को अगर हम लोग क्लियर रखते हैं उससे बहुत सारे एमिशंस बच सकते हैं।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। ये चर्चा आज सवेरे 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड पर प्रसारित होगी। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम

0: त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले तीन दिन मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। और अब खेल खबरों के साथ है मुकेश कुमार।
1: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। लॉस एंजलिस में आज क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हरा दिया। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 88वीं मिनट में किया। इससे पहले फ्रांस ने पहले क्वार्टर फाइनल में मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 बजे शुरू होगा। वहीं चौथे क्वार्टर फाइनल में कल मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। उधर विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज की कैरोलिना मुकोवा का सामना लिंडा नेस्कोवा से होगा। चेक गणराज की दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंची हैं। पुरुष सिंगल्स फाइनल में कल विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सेनर का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव से होगा। सेनर ने सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच को और ज़वरेव ने ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इस बीच लंदन के लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में कल के 21 रन पर 1 विकेट के स्कोर से आगे खेलेगा। कल का खेल समाप्त होने के समय माया बाउचियर 17 और हीथर नाइट 1 रन बनाकर क्रीज पर थीं। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 285 रन बनाए थे। स्मृति मानधना ने 83 रन, कप्तान हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने अर्धशतक बनाए।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन यायार मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद कनक। पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण से संबंधित खबर आज अखबारों के पहले पन्ने पर है। हिंदुस्तान ने सरकार का बयान दिया है, E20 से माइलेज थोड़ा घटेगा मगर इंजन सुरक्षित। जनसत्ता लिखता है, पेट्रोलियम मंत्रालय ने दी जानकारी, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से 5% कम हो जाएगी औसत। पत्र ने संपादकीय में लिखा है, ये अच्छा हुआ कि अंततः सरकार की ओर से ये स्पष्ट किया गया कि E20 ईंधन से गाड़ियों का माइलेज भले ही कम होता हो लेकिन ये ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ पर्यावरण के लिए उपयोगी होने के साथ ही किसानों के लिए लाभकारी भी है। अल्कोहल युक्त दवाओं पर नए नियम लागू होने पर नवभारत टाइम्स ने नहीं मिलेगी छूट से लिखा है, अल्कोहल 12% से अधिक तो डॉक्टर की पर्ची से ही दवा, सरकार ने कहा हो रहा था गलत इस्तेमाल। सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान बदतमीजी करने पर याचिकाकर्ता को कक्ष से बाहर निकाले जाने की खबर दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स और हिंदुस्तान में है। दिल्ली में भूजल में तय सीमा से अधिक यूरेनियम, एनजीटी सख्त, अमर उजाला की खबर है। वंदे मातरम जन गण मन को लेकर नई गाइडलाइन पर पंजाब केसरी लिखता है, सभी राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं और पहले वंदे मातरम तथा उसके बाद जन गण मन गाया जाएगा। फीफा विश्व कप की खबर देते हुए जनसत्ता ने लिखा है, गोल्डन बूट की दौड़ में अब एम्बाप्पे आए मेसी के बराबर। अमर उजाला ने अमरनाथ यात्रा पर लिखा है, प्रकृति में दखल से जल्दी अंतर्ध्यान हुए बाबा बर्फानी। दैनिक भास्कर ने अपने खास आलेख में लिखा है, अतीत आज से बेहतर ये सच नहीं, बीते कल की चाहत में आज गुम न होने दें, यादों से ऊर्जा लें, भविष्य की चुनौतियों से लड़ सकेंगे।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने आर्थिक तथा रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा, आपदा प्रबंधन और पशुपालन सहित प्रमुख क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वदेशी स्टील फ्रिगेट महेंद्र गिरी आज नौसेना में शामिल होगा। फीफा विश्व कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा। आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। और विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज की कैरोलिना मुकोवा अपने ही देश की लिंडा नेस्कोवा से खेलेंगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस: India and New Zealand signed 5 MOUs in key areas including defense, disaster management and animal husbandry to boost economic and strategic cooperation. Prime Minister Narendra Modi holds delegation level talks with New Zealand Prime Minister Christopher Luxon in Auckland, says India and New Zealand can play important role in strengthening peace and security in Indo-Pacific region.

0: नमस्कार दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे दिल्ली और शिलांग केंद्र से हमारा राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार बुलेटिन। और अब वक्त हो चला है आपके अपने सबसे वाइब्रेंट, इन्फॉर्मेटिव और ढेर सारी बातों से बड़े लोकल शो का। जी हाँ, गुड मॉर्निंग ईटानगर, इट्स टाइम फॉर हेलो ईटानगर।
1: हेलो ईटानगर।

आप सभी प्यारे श्रोताओं को इस खिलती हुई तारोताजा सुबह का प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी दोस्त और आरजे याजू, एक बार फिर से हाजिर हूं आपके लिए। पता है दोस्तों, हमारा शहर ईटानगर जितना खूबसूरत है, यहाँ के लोग उतने ही जागरूक और समझदार है। और हमारे इस शो हेलो ईटानगर का मकसद ही यही है कि संगीत के मजे के साथ साथ हम हर सुबह कुछ नया सीखें, कुछ ऐसी बातें जाने जो हमारी और हमारे परिवार की जिंदगी को बेहतर बनाए। आज का हमारा एपिसोड बेहद खास है क्योंकि आज हम एक ऐसी मेडिकल टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में जानना हर एक नागरिक के लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए इस खूबसूरत और ज्ञानवर्धक सफर की शुरुआत करते हैं एक बेहद ही एनर्जेटिक और सुपरहिट गाने के साथ। आप सुनिए ये पहला गाना और मैं बस अभी लौटूंगी आज के हमारे खास एजुकेशनल टॉपिक के साथ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं हेलो ईटानगर मेरे साथ। दोस्तों आज 11 जुलाई है और पूरी दुनिया में आज का दिन वर्ल्ड बेंजोडिएज़ेपाइन अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि बेंजोडिएज़ेपाइन क्या चीज है। आइए इसकी आसान भाषा में एजुकेशनल जानकारी लेते हैं। बेंजोडिएज़ेपाइन, जिसे शॉर्ट टर्म में बेंजोज भी कहते हैं, ये दरअसल एक तरह की प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन होती हैं, जो हमारी ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को शांत करने का काम करती है। जब किसी को बहुत ज्यादा एंजाइटी, पैनिक अटैक्स या स्लीपिंग डिसऑर्डर्स जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो डॉक्टर्स उन्हें ये दवाइयां प्रिस्क्राइब करते हैं। आपने मार्केट में वैल्यूम, जेनेक्स या अटीवन जैसे ब्रांड नेम सुने होंगे, ये सब ऐसी कैटेगरी में आते हैं। मेडिकल साइंस के मुताबिक शॉर्ट टर्म यानी 2 से 4 हफ्ते तक अगर इसे डॉक्टर की देखरेख में लिया जाए तो ये काफी असरदार होती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा सच और डेंजर ये है कि इनका लॉन्ग टर्म यूज करने से इंसान को इस दवाई पर फिजिकल और साइकोलॉजिकल रूप से निर्भर बना देता है। तो चलिए इस अहम टॉपिक पर थोड़ी और गहराई से बात करेंगे, पर पहले सुनते हैं एक और बेहद खूबसूरत गाना।

0: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per litre. Smart Pay Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next gen K Series 1.0 litre dual jet, dual VVT engine, and spacious interiors.
1: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
2: दोस्तों, इस डे को मनाने का सबसे बड़ा कारण ही यही है कि लोगों को इन्फॉर्म कंसेंट मिल सके। यानी जब आप ये दवाइयां ले तो आपको इसके फायदे और नुकसान दोनों पता होना चाहिए। जब कोई व्यक्ति इन दवाइयों को लंबे समय तक लेता है तो बॉडी इसकी आदी हो जाती है, जिसे मेडिकल टर्म्स में टॉलरेंस कहते हैं। इसका मतलब है कि कुछ समय बाद वही पुरानी डोज असर करना बंद कर देती है और इंसान अनजाने में ज्यादा डोज लेने लगता है। और अगर कोई इसे अचानक बिना डॉक्टर की सलाह के छोड़ने की कोशिश करे तो शरीर में सीवियर विड्रॉवल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा घबराना, दिमाग में हेलुसिनेशन होना, हेलुसिनेशन यानी जो चीज नहीं है वो दिखना, शरीर में कपकपाने होना और यहां तक कि सीजर के दौरे पड़ना। इसीलिए मेडिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इन दवाइयों को कभी भी कोल्ड तुर्की यानी अचानक बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि डॉक्टर की मदद से धीरे धीरे टैपर करना चाहिए। चलिए, इस अहम जानकारी के बाद वक्त हो चला है हमारे आज के आखिरी गाने का।

दोस्तों संगीत के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका हेलो ईटानगर में। आज हमने बेंजोडिया ज़िफाइन के बारे में जो सीखा उसका सबसे बड़ा टेकअवे यही है, दवाइयाँ तभी तक सेफ है जब तक वो डॉक्टर के डिसिप्लिन में ले जाएं। किसी के कहने पर या नींद नहीं आने पर खुद से कभी भी ऐसी ड्राउजी पिल्स या स्लीपिंग पिल्स ना खाएं। अगर आपको स्लीप या एंजाइटी का प्रॉब्लम है तो मेडिटेशन, काउंसलिंग और योगा जैसे नॉन ड्रग थेरेपीज को पहले एक्सप्लोर करें। उम्मीद है आज की ये एजुकेशनल जानकारी आपको अलर्ट और अवेयर बनाएगी। तो ये था आज का कार्यक्रम हेलो ईटानगर। ये आकाशवाणी का ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है। जहाँ होते हैं दिल से दिल की बात। दोस्तों कहीं मत जाएगा, अभी आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से समाचार।

0: superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest
2: Mart. Innovation, enterprise, our future-oriented soch ka prateek hai. भारत की ओर से मैं 140 करोड़ लोगों की एस्पिरेशंस और एम्बिशंस का संदेश लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब भारत और न्यूजीलैंड के संबंध एक टर्निंग पॉइंट पर है। आज हम अपने संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के सूत्र में बांध रहे हैं। यह केवल एक डिप्लोमेटिक माइलस्टोन नहीं है, यह हमारे साझा भविष्य का एक नया संकल्प है।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते को द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने वाला एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
2: इस वर्ष दोनों देशों के बीच 9 महीनों के रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। यह आप सभी के लिए मार्केट एक्सेस, इन्वेस्टमेंट, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और टैलेंट मोबिलिटी के नए अवसर लेकर आएगा। मुझे विश्वास है हम 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना बढ़ाएंगे।
3: न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई देगी। उन्होंने कहा कि सामरिक साझेदारी से व्यापार सहित कई क्षेत्रों में सहयोग का दायरा बढ़ेगा। इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे तथा उद्योग और खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से भी मुलाकात करेंगे। स्वदेशी युद्धपोत INS महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का प्रमुख संरक्षक है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। उन्होंने वर्तमान बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हुए पत्तन सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण शीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज बिहार के गया जी जाएंगे। इस दौरान श्री राधाकृष्णन बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच परिवहन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और साझा परिवहन रणनीति पर चर्चा की जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हाल में तनाव बढ़ने के बावजूद अमेरिका और ईरान वार्ता जारी रखने पर सहमत हो गए हैं, लेकिन पिछले महीने हुआ युद्धविराम समाप्त हो गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने वार्ता जारी रखने का अनुरोध किया है और अमेरिका इस पर सहमत हो गया है। स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। लॉस एंजलिस में आज क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हरा दिया। स्पेन के लिए विजय गोल मिकेल मोरिना ने 88वें मिनट में किया। तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. India and New Zealand today elevated their ties to a strategic partnership and set a five-year target to double their annual bilateral trade in goods and services to 35,000 crore rupees by 2030 following talks between Prime Minister Narendra Modi and his New Zealand counterpart Christopher Luxon in Auckland. The meeting yielded several concrete outcomes. Key among them were a roadmap to expand ties in the next 4 years, a framework for enhancing Indo-Pacific maritime cooperation, and a reciprocal logistics support pact between the Indian Navy and the New Zealand Defence Force. A joint statement following the talks noted that both leaders exchanged views on the Indo-Pacific, reaffirming their shared commitment to a free, open, and prosperous region. They also emphasized the importance of safeguarding sovereignty, territorial integrity, and the rules-based international order. The two leaders welcomed the conclusion and signature of a balanced, comprehensive, and mutually beneficial India-New Zealand Free Trade Agreement, FTA. They agreed to work together to ensure its early entry into force and effective implementation. Earlier, speaking during delegation-level talks, Prime Minister Modi said that his visit to New Zealand marks a historic milestone in bilateral relations and will give fresh momentum to ties between the two countries. Prime Minister Modi said India and New Zealand can play an important role in strengthening peace, stability and security in the Indo-Pacific region.
2: लोकतांत्रिक मूल्यों के में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य हैं उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं.
4: The bilateral discussions were preceded by a ceremonial welcome at the Government House, where Prime Minister Modi was accorded a guard of honour. Later in the day, Prime Minister Modi and his New Zealand counterpart participated in the India-New Zealand Business Engagement 2026 event in Auckland, where both leaders reaffirmed their commitment to strengthening economic ties between the two countries. In a reflection of the strong people-to-people ties that exist between the two countries, Mr. Modi will address a large gathering of the Indian diaspora today. The Indian Navy is all set to commission its sixth project, 17A indigenous stealth frigate Mahendragiri F-38 to its eastern fleet at Vishakhapatnam in Andhra Pradesh today. The ceremony will be presided over by Defence Minister Rajnath Singh. It will mark another significant milestone in India's journey towards defense, self-reliance and indigenous warship construction. Addressing the naval personnel in Vishakhapatnam during Barakhana on the eve of the commissioning ceremony, the defense minister reaffirmed India's stand as a primary guarantor of peace and stability in the Indian Ocean region. Union Home Minister Amit Shah has said the government is firmly committed to making the country's coastal security unbreachable. Mr. Shah made the remarks while reviewing the progress made in the establishment of the Bureau of Port Security along with Union Minister for Ports, Shipping and Waterways Sarbananda Sonowal. The minister said only licensed private security agencies should be entrusted with port security. Only personnel trained by the Central Industrial Security Force, CISF, should be deployed. In the FIFA World Cup, Spain has booked its place in the semi-finals, defeating Belgium 2-1 in the second quarter-final at Los Angeles Stadium in Inglewood, United States, last night. Earlier, France advanced to the semi-finals with a comfortable 2-0 victory over Morocco in the first quarter-final in Boston. In the remaining quarter-finals, Norway will face England at Miami Gardens tonight. The match will begin at 2:30 a.m. Indian Standard Time. In Wimbledon tennis, Czechia's Karolina Mukova will face compatriot Linda Noskova in the women's singles final in London today. Both players are chasing their maiden Wimbledon crown. In women's cricket, England will resume their first inning play at the overnight score of 21 for 1 on day 2 of inaugural women's test at Lord's in London today. In reply to India's total of 285, the play is scheduled to commence at 3:30 p.m. Indian Standard Time. And that is the end of this news bulletin.

स्वागत है आप सबका फिर से। अभी आप सुन रहे थे दिल्ली से हमारा नेशनल समाचार बुलेटिन। लेकिन अब हवाओं में घुलने जा रहा है थोड़ा सा ग्लैमर, थोड़ी सी मस्ती और ढेर सारे टिंसल टाउन का मसाला। वक्त हो चला है आपके सबसे दिलदार चुलबुले और चटपटे प्रोग्राम का। जी हाँ, इट्स टाइम फॉर फिल्मी गपशप। आप सभी प्यारे दोस्त श्रोताओं को इस चमकीली और धांसु सुबह का प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी आरजे याजू और बी टाउन का खबरी बिल्कुल फ्रेश और गर्मा गर्म

0: बॉलीवुड अपडेट्स लेकर आपके बीच हाजिर हूं। पता है दोस्तों, सिनेमा हमारी जिंदगी का वो आईना है जो हमारी सुबह को रोमांस से भर देता है। चाहे बॉक्स ऑफिस के धांसू रिकॉर्ड्स हो या ओटीटी पर आने वाली धमाकेदार वेब सीरीज, फिल्मी दुनिया में हर पल कुछ ना कुछ बड़ा धमाका होते रहता है। और अगर आप भी हैं मेरी तरह सच्चे फिल्मी दीवाने, तो बस आराम से बैठ जाइए, क्योंकि आज मेरे पास है बॉलीवुड और ओटीटी से जुड़ी ऐसी खबरें जो आपको बिल्कुल तारोताजा कर देंगी। तो चलिए इस फिल्मी सफर का आगाज करते हैं एक सुपरहिट ओल्ड मेलोडी के साथ। आप इस गाने का लुफ्त उठाइए और मैं तैयार करती हूं गपशप की पहली थाली।
1: सारेगामा कारवां।

0: कैसा है जनाब का?
1: क्या ख्याल है आपका?
0: तुम तो मचल गए,
1: यूं ही फिसल गए।
0: अच्छा, फिसलने का अगला लोकेशन?
1: पिन भेज रहा हूँ, संभाल के चुप ना जाए।

0: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं फिल्मी गप शप मेरे साथ। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं थिएटर्स में चल रहे सबसे बड़े धमाके की। बॉक्स ऑफिस पर इस वक्त दो फिल्मों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। पहली है वेलकम टू द जंगल, जिसमें अक्षय कुमार की बड़ी एंसेंबल कास्ट पूरे देश को हंसा रहा है, और इस फिल्म का गाना घिस घिस इस वक्त सोशल मीडिया पर रील्स पर तबाही मचा रहा है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धांसु ओपनिंग के साथ कमाल की पकड़ बनाई हुई है, लेकिन इसी के साथ थिएटर्स में रिलीज हुई है अजय देवगन और उनकी पलटन की कॉमेडी फिल्म धमाल 4 का। जहां एक तरफ बॉक्स ऑफिस पर ये अच्छी कमाई कर रही है, वहीं सोशल मीडिया पर इंटरनेट पर जनता इसके एआई विजुअल्स को लेकर काफी बातें कर रही है और लोग इसे मिक्स रिव्यूज दे रहे हैं। किसी को ये बेहद हंसा रहा है तो कोई इसे थोड़ा क्रिंज बोल रहा है। चलिए बॉक्स ऑफिस के इस मुकाबले के बीच सुनते हैं एक और जबरदस्त गाना, और इसके बाद जानेंगे कि बॉक्स ऑफिस की असली अल्फा फीमेल कौन बन चुकी है।
1: कौन है ये जिसने दोबारा मुड़के मुझे नहीं देखा? Who is he?

दोस्तों बात करते हैं यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की सबसे पहली फीमेल लेड फिल्म अल्फा के। आलिया भट्ट और शार्वरी वॉक्स स्टेरर इन इज एक्शन ट्रेलर ने थिएटर्स में काफी हलचल मचाई हुई है और आज इसका बॉक्स ऑफिस पर पहला हफ्ता पूरा हो चुका है। बॉबी देओल के खूंखार विलन अवतार और आलिया भट्ट के हाई ऑक्टेन एक्शन सीन्स को देखकर लोग काफी इम्प्रेस है। इसके साथ ही थिएटर्स में एक और क्राइम थ्रिलर चल रही है जिसका नाम है बेबी दो डाई दो, जिसमें हुमा कुरैशी एक हिट वुमेन के डबल लाइफ के रूप में बवाल एक्टिंग कर रही है। अगर आपको डार्क एज सिनेमा पसंद है तो ये आपके लिए परफेक्ट है। चलिए अगला गाना सुनते हैं और उसके बाद रुक करेंगे OTT यानी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स की बड़ी खबरों पर।

0: मांडवा। रावण से उसकी
1: वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ फिल्मी कपशप में। चलिए अब घर बैठे एंटरटेनमेंट यानी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का हालचाल जान लेते हैं। स्ट्रीमिंग पर इस वक्त फीमेल लेड सीरीज का दबदबा चल रहा है। सबसे पहले बात करें Z5 की, तो करिश्मा कपूर की नियोनोयर क्राइम थ्रिलर ब्राउन को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, जिसमें उनका लुक और सस्पेंस बिल्कुल टॉप नॉच है। वहीं प्राइम वीडियो पर एक नया इन्वेस्टिगेटिव ड्रामा आया है जिसका नाम है राख, जो अपने अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट और मिस्ट्री से सबको स्क्रीन से चिपका हुए हैं। और अगर आपको अपनी फैमिली के साथ कुछ देखना है तो सोनी लिव पर मिश्रा परिवार फिर से लौट आया है गुल्लक सीजन 5 के साथ। वही पुरानी दोस्ती, वही किस्से और वही प्यारी सी नोक झोंक श्रोताओं को बहुत इमोशनल और खुश कर रही है। चलिए ओटीटी के इस दोस्त के बाद एक और मीठा सा गाना सुनते हैं और फिर चलेंगे वी टाउन की गर्मा गर्म सेलेब गॉसिप्स की तरफ।

0: सुनिए सुनिए कचरा जी, अब जरा संभल के, क्योंकि अब आने वाला है सफाई का सबसे बड़ा मुकाबला। जी हाँ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026
1: 13th ईटानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी यूथ एसोसिएशन लेकर आ रहा है बैटल ऑफ 20 वार्ड्स, जो होगा 10th जुलाई 2026 से 25th अगस्त 2026 तक। अब होगा मुकाबला, कौन सा वार्ड होगा सबसे क्लीन, सबसे ग्रीन और बनेगा राजधानी ईटानगर का स्वच्छ चैंपियन। और हाँ, जीतने वाले वार्ड के लिए है 5 लाख का ग्रैंड कैश प्राइज।
0: कॉर्पोरेटर साहब, फाइन और मीटिंग तो चलती रहेगी।
1: अब ग्लोव्स पहनिए, झाड़ू उठाइए और अपने वार्ड को चैंपियन बनाइए।
0: और ईटानगर के नागरिकों, आपका एक छोटा सा कदम हमारी राजधानी ईटानगर को बना सकता है और भी सुंदर और भी स्वच्छ।
1: तो अब कचरा हटाइए, वार्ड चमकाइए और जीतिए 5 लाख का कैश प्राइज।
0: रजिस्ट्रेशन और जानकारी के लिए संपर्क करें 9366693170 या 9402877126 पर।
1: झाड़ू घुमाओ, वार्ड चमकाओ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026, स्वच्छ राजधानी हमारी जिम्मेदारी।

200 संगीत का सिलसिला चलता रहेगा, पर अब वक्त अब बात करते हैं बॉलीवुड सेलेब्स की बीच चल रही हॉट गपशप की। सबसे बड़ी खबर आ रही है राघव जुयाल की के बर्थडे पर से। कल रात उनकी बर्थडे पार्टी में शहनाज गिल उनका हाथ थामे हुए बाहर निकली, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर आग तरह वायरल हो रहा है। इतना नहीं, इस पार्टी में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने भी एक रेयर अपीयरेंस दी, जिसे देखकर पेप्स के कैमरे रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इस पार्टी के माहौल के बीच राघव जुयाल के फैंस के लिए एक और खुशखबरी है। उनकी आने वाली कॉमेडी फिल्म भाई तेरा स्टार है का ट्रेलर रिलीज हो गया है, जो बिल्कुल एक लाफ रायत होने का वादा करता है। चलिए इस वायरल न्यूज के बाद सुनते हैं एक और सुपरहिट सॉन्ग।

0: सुनिए सुनिए सुनिए कचरा जी, अब जरा संभल के, क्योंकि अब आने वाला है सफाई का सबसे बड़ा मुकाबला। जी हाँ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026
1: 13th ईटानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी यूथ एसोसिएशन लेकर आ रहा है बैटल ऑफ 20 वार्ड्स, जो होगा 10th जुलाई 2026 से 25th अगस्त 2026 तक। अब होगा मुकाबला, कौन सा वार्ड होगा सबसे क्लीन, सबसे ग्रीन और बनेगा राजधानी ईटानगर का स्वच्छ चैंपियन। और हाँ, जीतने वाले वार्ड के लिए है 5 लाख का ग्रैंड कैश प्राइज।
0: कॉर्पोरेटर साहब, फाइन और मीटिंग तो चलती रहेगी।
1: अब ग्लोव्स पहनिए, झाड़ू उठाइए और अपने वार्ड को चैंपियन बनाइए।
0: और ईटानगर के नागरिकों, आपका एक छोटा सा कदम हमारी राजधानी ईटानगर को बना सकता है और भी सुंदर और भी स्वच्छ।
1: तो अब कचरा हटाइए, वार्ड चमकाइए और जीतिए 5 लाख का कैश प्राइज।
0: रजिस्ट्रेशन और जानकारी के लिए संपर्क करें 9366693170 या 9402877126 पर।
1: झाड़ू घुमाओ, वार्ड चमकाओ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026, स्वच्छ राजधानी हमारी जिम्मेदारी।
2: आप सुन रहे हैं फिल्मी गपशप। दोस्तों, बात करते हैं उन खबरों की जो इस वक्त हेडलाइंस में बनी हुई है और थोड़ी चिंताजनक है। वेटरन एक्टर राजपाल यादव को लेकर एक बड़ी खबर आई है। उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद एक 9 करोड़ के चेक बाउंस केस में 3 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है, जिसने उनके फैंस को काफी चौंका दिया है। वहीं दूसरी तरफ हाल ही में न्यूज आई थी कि प्रभास की आने वाली फिल्म फौजी के सेट पर एक्टर राजेश शर्मा को किसी कीड़े ने काट लिया था, जिसके बाद वो हॉस्पिटल में अंडर ऑब्जर्वेशन है। अक्षय कुमार ने भी उनके लिए ट्वीट करके कहा है, जल्दी ठीक हो जाए यार, वी प्रे कि वो जल्द से जल्द रिकवर हो जाए। चलिए इन खबरों के बीच थोड़ा सा माइंड फ्रेश करते हैं एक और धांसू गाने के साथ।

0: Station, Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी।
1: वेलकम बैक फिल्मी प्रेमी को। गपशप का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि एक ऐसे खबर की जिसमें थोड़ा गुस्सा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा धूपिया हाल ही में एक मुंबई इवेंट में पापराजी पर काफी बढ़ गई। उन्होंने फोटोग्राफर्स को इंट्रूसिव बैक शॉट्स लेने पर जमकर फटकर लगाई और कहा बंद करो ये सब, जिसके बाद इंडस्ट्री में सेलेब्स की प्राइवेसी को लेकर एक नई डिबेट शुरू हो गई है। वहीं अगर बात करें स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट के मिक्स की तो देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा इस वक्त लंदन में विम्बलडन मैच एंजॉय कर रही है और वहां से उन्होंने निक जोनस को फेस टाइम किया, जिसका वीडियो इंटरनेट पर सबका दिल जीत रहा है। चलिए आप सुनते हैं हमारा आखिरी गाना है।

0: सचिन ये क्या कर रहा है तू?
1: क्या हो रहा है भाई?
2: पापा रोमांटिक सीन
1: लिख रहा हूँ। यहाँ किस तरह बीच सड़क पर नाच कर
2: फील कर रहा हूँ।

दोस्तों ये था रेडियो अंजुमन आपके माफी चाहूंगी दोस्तों, ये था फिल्मी गपशप। उम्मीद है आपको मिला होगा एंटरटेनमेंट का परफेक्ट दोस्त। यह आकाशवाणी ईटानगर कारून एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद दोनों देशों के बीच रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 40 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
1: न्यूजीलैंड की इनोवेशन, एंटरप्राइज और फ्यूचर ओरिएंटेड सोच का प्रतीक है। भारत की ओर से मैं 140 करोड़ लोगों की एस्पिरेशंस और एम्बिशंस का संदेश लेकर आया। फ्रेंड, यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब भारत और न्यूजीलैंड के संबंध एक टर्निंग पॉइंट पर है। आज हम अपने संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के सूत्र में बांध रहे हैं। यह केवल एक डिप्लोमेटिक माइलस्टोन नहीं है, यह हमारे साझा भविष्य का एक नया संकल्प है।
0: न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते को द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने वाला एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
1: इस वर्ष दोनों देशों के बीच 9 महीनों के रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। यह आप सभी के लिए मार्केट एक्सेस, इन्वेस्टमेंट, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और टैलेंट मोबिलिटी के नए अवसर लेकर आएगा। मुझे विश्वास है हम 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना बढ़ाएंगे।
0: इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने उद्योग और खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। स्वदेशी युद्धपोत INS महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का प्रमुख संरक्षक है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसीलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। उन्होंने वर्तमान बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हुए पत्तन सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण शीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज बिहार के गया जी जाएंगे। इस दौरान श्री राधाकृष्णन बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच परिवहन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और साझा परिवहन रणनीति पर चर्चा की जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हालिया तनाव बढ़ने के बावजूद अमेरिका और ईरान वार्ता जारी रखने पर सहमत हो गए हैं, लेकिन पिछले महीने हुए युद्ध विराम समाप्त हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने वार्ता जारी रखने का अनुरोध किया है और अमेरिका इस पर सहमत हो गया है। स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। लॉस एंजलिस में आज क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हरा दिया। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 88वें मिनट में किया। तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 2:30 बजे शुरू होगा। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 3 दिन मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में अगले 5 दिन भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा दिन में आज राजधानी दिल्ली में बारिश होने की आशंका व्यक्त की गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. India and New Zealand today elevated their ties to a strategic partnership and set a five-year target to double their annual bilateral trade in goods and services to 35,000 crore rupees by 2030, following talks between Prime Minister Narendra Modi and his New Zealand counterpart Christopher Luxon in Auckland. The meeting yielded several concrete outcomes. Key among them were a roadmap to expand ties in the next 4 years, a framework for enhancing Indo-Pacific maritime cooperation, and a reciprocal logistics support pact between the Indian Navy and the New Zealand Defence Force. A joint statement following the talks noted that both leaders exchanged views on the Indo-Pacific, reaffirming their shared commitment to a free, open and prosperous region. They also emphasized the importance of safeguarding sovereignty, territorial integrity and the rules-based international order. The two leaders welcomed the conclusion and signature of a balanced, comprehensive and mutually beneficial India-New Zealand Free Trade Agreement, FTA. They agreed to work together to ensure its early entry into force and effective implementation. Earlier, speaking during delegation-level talks, Prime Minister Modi said that his visit to New Zealand marks a historic milestone in bilateral relations and will give fresh momentum to ties between the two countries. Prime Minister Modi said India and New Zealand can play an important role in strengthening peace, stability and security in the Indo-Pacific region.
1: लोकतांत्रिक मूल्यों के में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य हैं उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं.
2: The bilateral discussions were preceded by a ceremonial welcome at the Government House, where Prime Minister Modi was accorded a guard of honour. Later in the day, Prime Minister Modi and his New Zealand counterpart participated in the India-New Zealand Business Engagement 2026 event in Auckland, where both leaders reaffirmed their commitment to strengthening economic ties between the two countries. In a reflection of the strong people-to-people ties that exist between the two countries, Mr. Modi will address a large gathering of the Indian diaspora today. The Indian Navy is all set to commission its sixth Project 17A Indigenous Stealth Frigate Mahendragiri F-38 into its Eastern Fleet at Vishakhapatnam in Andhra Pradesh today. The ceremony will be presided over by Defence Minister Rajnath Singh. It will mark another significant milestone in India's journey towards defence self-reliance and indigenous warship construction. Addressing the naval personnel in Vishakhapatnam during Barakhana on the eve of the commissioning ceremony, the Defence Minister reaffirmed India's stand as a primary guarantor of peace and stability in the Indian Ocean region. Union Home Minister Amit Shah has said the government is firmly committed to making the country's coastal security unbreachable. Mr. Shah made the remarks while reviewing the progress made in the establishment of the Bureau of Port Security, along with Union Minister for Port, Shipping and Waterways, Sarbananda Sonowal. Home Minister said only licensed private security agencies should be entrusted with port security. Only personnel trained by the Central Industrial Security Force should be deployed. In the FIFA World Cup, Spain has booked its place in the semi-finals, defeating Belgium 2-1 in the second quarter-final at Los Angeles Stadium in Inglewood, United States, last night. Earlier, France advanced to the semi-finals with a comfortable 2-0 victory over Morocco in the first quarter-final in Boston. The remaining quarter-finals, Norway will face England at Miami Gardens tonight. The match will begin at 2:30 a.m. Indian Standard Time. In Wimbledon tennis, Tsitsipas Carolina Mukova will face compatriot Linda Noskova in the women's single final in London today. Both players are chasing their maiden Wimbledon crown. The India Meteorological Department, IMD, has issued an orange alert for very heavy rainfall over Bihar, Uttar Pradesh, Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, South Himalaya, West Bengal and Sikkim during the next 3 days. And that is the end of this news bulletin.

0: स्वागत है आप सबका फिर से दोस्तों। आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार और अब वक्त हो चला है हमारे आज के आखिरी और आप सभी का सबसे पसंदीदा कार्यक्रम। जी हाँ, इट्स टाइम फॉर रेडियो ऑन डिमांड।
1: रेडियो ऑन डिमांड सुबह के 10:10 से सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। जी हाँ दोस्तों, एसएमएस के जरिए भी आप अपने मनपसंद गीतों का रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं 9436887808 पर। जी हाँ, हमारा फोन नंबर है 9436887808। इस नंबर पर हमें आपके एसएमएस का इंतजार रहेगा।
0: तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ख्वाहिशों का ये सिलसिला। सबसे पहले रिक्वेस्ट आई है गोलाघाट असम से हमारे बेहद लॉयल लिसनर्स रोमेश रूनू और लकी की। उन्होंने एक बेहद ही प्यारा और एवरग्रीन गीत सुनने की ख्वाहिश जताई है। तो आप तीनों के लिए और आप सभी के लिए पेश है ये बेहद खूबसूरत नगमा।

वेलकम बैक श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना शो रेडियो ऑन डिमांड। गाने का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और रुक करते हैं हमारी अगली रिक्वेस्ट की तरफ। ये रिक्वेस्ट हमें भेजी है नाहरलगन से हमारे डेली लिसनर लोकेनाथ जी ने। लोकेनाथ जी रोज हमारे प्रोग्राम सुनते हैं और आज उनका मूड थोड़ा जोशीला और मस्ती भरा है। उन्होंने रिक्वेस्ट किया है 90s का एक जबरदस्त एनर्जेटिक ट्रैक। तो लोकेनाथ जी, आपकी रिक्वेस्ट पर ये रहा आपका पसंदीदा गाना।

0: दोस्तों चलिए अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे रिक्वेस्ट की तरफ जो आई है सरिहाजन करबी आंगलोंग से। वहां से हमारे प्यारे दोस्त जोगेंद्र सोनाली और दोरम कीरी ने मिलकर एक बेहद ही रोमांटिक और पुराना क्लासिक गीत सुनने की फरमाइश की है। उनका तो ये रहा आप तीनों के लिए ये आपका गाना।
1: डाउनलोड करिए ओरिजिनल।

0: संगीत का ये सफर सच में बेहद हसीन है दोस्तों। ख्वाहिशों की ये थाली अभी खत्म नहीं हुई है। मेरे पास ढेर सारी रिक्वेस्ट लाइन में है जिनको मैं आगे इस शो में शामिल करने वाली हूं। आप बस यूं ही मेरे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो ऑन डिमांड।
1: सुनिए सुनिए सुनिए कचरा जी, अब जरा संभल के, क्योंकि अब आने वाला है सफाई का सबसे बड़ा मुकाबला। जी हाँ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026
2: 13th ईटानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी यूथ एसोसिएशन लेकर आ रहा है बैटल ऑफ 20 वार्ड्स, जो होगा 10th जुलाई 2026 से 25th अगस्त 2026 तक। अब होगा मुकाबला, कौन सा वार्ड होगा सबसे क्लीन, सबसे ग्रीन और बनेगा राजधानी ईटानगर का स्वच्छ चैंपियन। और हाँ, जीतने वाले वार्ड के लिए है 5 लाख का ग्रैंड कैश प्राइज।
1: कॉर्पोरेटर साहब, फाइल और मीटिंग तो चलती रहेगी।
2: अब ग्लोव्स पहनिए, झाड़ू उठाइए और अपने वार्ड को चैंपियन बनाइए।
1: और ईटानगर के नागरिकों, आपका एक छोटा सा कदम हमारी राजधानी ईटानगर को बना सकता है और भी सुंदर और भी स्वच्छ।
2: तो अब कचरा हटाइए, वार्ड चमकाइए और जीतिए 5 लाख का कैश प्राइज।
1: रजिस्ट्रेशन और जानकारी के लिए संपर्क करें 9366693170 या 9402877126 पर।
2: झाड़ू घुमाओ, वार्ड चमकाओ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026, स्वच्छ राजधानी हमारी जिम्मेदारी।

चलिए दोस्तों, अगला रुख करते हैं माजुली असम की तरफ, जहां से हमारे दोस्त देवशीष हजारिका ने एक बेहद ही धांसू और हाई एनर्जी सॉन्ग की रिक्वेस्ट की है। देवशीष चाहते हैं कि उनका ये गाना सुनकर सबके पैर थिरकने लगे। तो देवशीष, आपकी फरमाइश पर पेश है बॉलीवुड का ये आइकॉनिक आइटम सॉन्ग।

दोस्तों माहौल में जो आग लगी है चलिए उसे थोड़ा सा रोमांटिक और सुहाना बनाते हैं। हमारी अगली रिक्वेस्ट आई है हेलम असम से हमारी डेली लिसनर ज्योति सुरेन की। ज्योति रोज हमारे शो को बहुत सारा प्यार भेजती है और आज उन्होंने शाहरुख खान का एक बेहद ही मीठा और प्यारा गाना सुनने की रिक्वेस्ट की है। तो ज्योति आपकी इस प्यारी सी फरमाइश को पूरा करते हुए ये रहा आपका गाना।

0: सुनिए सुनिए सुनिए कचरा जी, अब जरा संभल के, क्योंकि अब आने वाला है सफाई का सबसे बड़ा मुकाबला। जी हाँ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026
1: 13th ईटानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी यूथ एसोसिएशन लेकर आ रहा है बैटल ऑफ 20 वार्ड्स, जो होगा 10th जुलाई 2026 से 25th अगस्त 2026 तक। अब होगा मुकाबला, कौन सा वार्ड होगा सबसे क्लीन, सबसे ग्रीन और बनेगा राजधानी ईटानगर का स्वच्छ चैंपियन। और हाँ, जीतने वाले वार्ड के लिए है 5 लाख का ग्रैंड कैश प्राइज।
0: कॉर्पोरेटर साहब, फाइल और मीटिंग तो चलती रहेगी।
1: अब ग्लोव्स पहनिए, झाड़ू उठाइए और अपने वार्ड को चैंपियन बनाइए।
0: और ईटानगर के नागरिकों, आपका एक छोटा सा कदम हमारी राजधानी ईटानगर को बना सकता है और भी सुंदर और भी स्वच्छ।
1: तो अब कचरा हटाइए, वार्ड चमकाइए और जीतिए 5 लाख का कैश प्राइज।
0: रजिस्ट्रेशन और जानकारी के लिए संपर्क करें 9366693170 या 9402877126 पर।
1: झाड़ू घुमाओ, वार्ड चमकाओ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026, स्वच्छ राजधानी हमारी जिम्मेदारी।
2: दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे अगले रिक्वेस्ट की तरफ, जो आई है जोनाई देमाजी असम से, हमारे एक और डेली लिसनर बिमोल बसुमतारी की। बिमोल का मूड आज थोड़ा फन और लाइट हार्टेड गाना सुनने का है, इसीलिए उन्होंने 90s का एक बेहद ही मजेदार और आइकॉनिक गाना चूज किया है। तो बिमोल, आपकी सुबह को और भी मजेदार बनाने के लिए ये रहा आपका पसंदीदा गीत।

के बाद ही दोस्तों आपकी फरमाइशों का ये कारवा आगे बढ़ता ही जा रहा है। और अब हमारे पास जो अगली रिक्वेस्ट आई है वो बेहद खास है। आप सुन रहे हैं आपका अपना शो रेडियो डिमांड। ये फरमाइश आई है हमारे तिरप से, वहां से चाचा वांगसू ने हमें याद किया है और एक बेहद ही खूबसूरत रोमांटिक क्लासिक गीत सुनने की रिक्वेस्ट की है। और मुझे लगता है कि वांगसू जी हमारे इस रेडियो परिवार के एक बिल्कुल नए सदस्य हैं। तो वांगसू जी, हमारे पूरे रेडियो स्टेशन और हमारे सभी श्रोताओं की तरफ से आपका इस परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। हमें बेहद खुशी हुई कि आपने हमारा शो को सुना और अपनी पसंद का गाना भेजा। उम्मीद है अब से आप रोज हमारे साथ यूं ही जुड़ेंगे। तो वांगसू जी, आपकी इस प्यारी सी पहली फरमाइश पर ये रहा आपका एवरग्रीन गीत।

दोस्तों, अब जो रिक्वेस्ट मेरे सामने है वो आई है हमारे एक बेहद खास और पुराने साथी से। ईटानगर से हमारे रेगुलर लिसनर आरव ने हमें एक बार फिर से याद किया है। आरव तो अब हमारा शो का एक हिस्सा बन गया है और इनकी पसंद भी हमेशा एकदम क्लासिक होती है। आज उन्होंने रिक्वेस्ट किया है एक ऐसा गाना जो सुनकर आंखों में आंसू और दिल में देश प्रेम की भावना आ जाती है। तो आरव, आपकी इस रिक्वेस्ट पर पेश है ये जज्बाती नगमा।

आरव, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मुझे आपका गाना बीच में ही रोकना पड़ा, पर क्या करे, वक्त की स्ट्रिक्ट पाबंदी है और मेरे टाइम लिमिट यहां खत्म होता है। दोस्तों, बाकी जितने भी पेंडिंग गाने हैं उन्हें मैं कल के शो में डेफिनेटली सबसे पहले प्ले करूंगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपका दोस्त आपसे विदा लेते हैं, कल फिर मिलेंगे ठीक इसी वक्त। तब तक के लिए खुश रहिए और सुनते रहिए हमारा स्टेशन।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड। इसी के साथ अब हम आज के प्रातःकालीन प्रसारण सत्र के समापन पर आ पहुंचे हैं। उम्मीद है रोजाना की तरह आज भी आपको हमारा ये संगीतमय सफर बेहद पसंद आया होगा। आज के इस पहले प्रसारण में मेरे साथ थे स्टूडियो तथा एचपीते में मौजूद मेरे सहयोगी प्रसारण निष्पादक गोपाल राय और तकनीकी अभियंता तनातुम। दोस्तों कहीं मत जाएगा क्योंकि मनोरंजन का यह सिलसिला हमारे मध्य प्रसारण के साथ यूं ही जारी रहेगा अब से लेकर शाम 4:20 तक आरजी दुनिया के साथ अरुण एफएम पर। तो अब अपने आरजी याजू को दीजिए इजाजत। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 MHz है। आप सुनते रहिए अरुण एफएम, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद दोनों देशों के बीच रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
1: 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ है और एक प्रकार से आपकी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। ये हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो हमारे संबंधों की नई ऊर्जा, हमारी मित्रता के नए संकल्प को दोहराने वाला है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते को द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने वाला ऐतिहासिक कदम बताया।
1: इस वर्ष दोनों देशों के बीच 9 महीनों के रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। यह आप सभी के लिए मार्केट एक्सेस, इन्वेस्टमेंट, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और टैलेंट मोबिलिटी के नए अवसर लेकर आएगा। मुझे विश्वास है हम 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना बढ़ाएंगे।
0: इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। उन्होंने उद्योग और खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से भी मुलाकात की है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। ऑकलैंड में विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने संवाददाताओं को बताया कि बैठक में कई मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ तथा दोनों देश आपसी सहयोग और मजबूत करने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने बताया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भी दोनों देश एकमत हैं। स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का प्रमुख संरक्षक है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो के कार्यों में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच परिवहन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और साझा परिवहन रणनीति पर चर्चा की जाएगी। अमरीका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी वित्त मंत्रालय ने बताया है कि प्रतिबंध दुबई स्थित ईरानी कारोबारी अली अंसारी और उनके वैश्विक वित्तीय नेटवर्क पर लगाए गए हैं। अमरीका का आरोप है कि ये नेटवर्क ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई और शासन से जुड़े अन्य प्रभावशाली लोगों को आर्थिक लाभ पहुंचाता है। इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान समझौता ज्ञापन अब समाप्त हो चुका है। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि तेहरान के साथ बातचीत जारी रहेगी। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाने वाला ये दिन बढ़ती जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियों और अवसरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस की शुरुआत वर्ष 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तत्कालीन शासी परिषद ने की थी। स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। लॉस एंजलिस में आज क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराया। तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. India and New Zealand today elevated their ties to a strategic partnership and set a five-year target to double their annual bilateral trade in goods and services to 35,000 crore rupees by 2030, following talks between Prime Minister Narendra Modi and his New Zealand counterpart Christopher Luxon in Auckland. The meeting yielded several concrete outcomes. Key among them were a roadmap to expand ties in the next 4 years, a framework for enhancing Indo-Pacific maritime cooperation, and a reciprocal logistics support pact between the Indian Navy and the New Zealand Defence Force. A joint statement following the talks noted that both leaders exchanged views on the Indo-Pacific, reaffirming their shared commitment to a free, open and prosperous region. They also emphasized the importance of safeguarding sovereignty, territorial integrity and the rules-based international order. The two leaders welcomed the conclusion and signature of a balanced, comprehensive and mutually beneficial India-New Zealand Free Trade Agreement. They agreed to work together to ensure its early entry into force and effective implementation. Earlier, speaking during delegation-level talks, Prime Minister Modi said that his visit to New Zealand marks a historic milestone in bilateral relations and will give a fresh momentum to ties between the two countries. Prime Minister Modi said India and New Zealand can play an important role in strengthening peace, stability and security in the Indo-Pacific region.
1: लोकतांत्रिक मूल्यों के में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये, और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य हैं उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं.
2: The bilateral discussions were preceded by a ceremonial welcome at the Government House, where Prime Minister Modi was accorded a guard of honour. Later in the day, Prime Minister Modi and his New Zealand counterpart participated in the India-New Zealand Business Engagement 2026 event in Auckland, where both leaders reaffirmed their commitment to strengthening economic ties between the two countries. In a reflection of the strong people-to-people ties that exist between the two countries, Mr. Modi will address a large gathering of the Indian diaspora today. Prime Minister Narendra Modi and his New Zealand counterpart Christopher Luxon have decided to elevate the bilateral relationship to a strategic partnership. Secretary East Rudrendra Tandon shared this in Auckland while addressing the special briefing on Prime Minister's visit to New Zealand. He added that the Prime Minister endorsed the India-New Zealand Strategic Partnership Roadmap to 2030 as a framework to guide the joint action over the next 4 years. He added, this decision aims to take bilateral relations to a new level, strengthen the existing cooperation mechanisms and explore new avenues for deepening cooperation both bilaterally and multilaterally. Union Home Minister Amit Shah has said the government is firmly committed to making the country's coastal security unbreachable. Mr. Shah made the remarks while reviewing the progress made in the establishment of the Bureau of Port Security along with Union Minister for Ports, Shipping and Waterways Sarbanand Sonowal. The Home Minister said only licensed private security agencies should be entrusted with port security and only personnel trained by the CISF should be deployed. In United States, the Trump administration today imposed a fresh round of sanctions on Iran, targeting individuals and financial networks linked to the country's leadership in response to Tehran's attacks on commercial vessels in the Strait of Hormuz earlier this week. The latest measures mark another escalation in Washington's campaign against Iran, following a series of retaliatory steps that have included U.S. strikes on Iranian targets and the withdrawal of a sanctions waiver that had allowed Tehran to sell oil. In the FIFA World Cup, Spain has booked its place in the semi-finals, defeating Belgium 2-1 in the second quarter-final at Los Angeles Stadium in Inglewood, United States, last night. The IMD has issued an orange alert for very heavy rainfall over Bihar, Uttar Pradesh, Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, sub-Himalayan West Bengal and Sikkim during the next 3 days. And that is the end of this news bulletin.
3: Sh श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी टनागर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी आज के दूसरी प्रसारण सभा में। इससे पहले दोस्तों, पहले प्रसारण सभा में आप बने हुए थे RJ याजो के साथ। अब इस सुहाना सफर को आगे बढ़ाते हैं और ऐसे ही बेहतरीन कार्यक्रमों का सिलसिला यूं ही जारी रखते हैं। और आज की दूसरी प्रसारण सभा में आपके साथ रहूंगी मैं, आपके रेडियो साथी RJ तिन्या। दोस्तों, सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ है स्टूडियो तथा HPT में मौजूद सहकर्मी सहित प्रसारण निष्पादक गैर अत तथा तकनीकी अभियंता तिम। रोजाना की तरह आज भी सभा में हम आपके लिए पेश करेंगे ढेरों ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक कार्यक्रमों के साथ देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें।

दोस्तों, आज की दूसरी प्रसारण सभा की शुरुआत करें उससे पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का रूपरेखा। अब से लेकर 11:30 तक आप सुन पाएंगे कार्यक्रम फिल्म लहर। 11:30 पर आप सुन पाएंगे वेस्टर्न मेलोडीज कार्यक्रम। 12:00 आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। बारह बजकर 10 मिनट पर आप सुन पाएंगे हमारे सीनियर सिटीजन्स पर आधारित कार्यक्रम यादों के बारात। 12:30 पर आप सुन पाएंगे फौजी भाई बहनों का दैनिक कार्यक्रम गीतमाला। 1:00 आप सुन पाएंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। 1:10 पर आप सुन पाएंगे

कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक, जहां हम आपको सुनवाएंगे 60s, 70s और 80s के कुछ खूबसूरत गीतों को। 1:40 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। दोपहर के 2 बजे से लेकर 2:30 तक बारी बारी से आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से मिडडे न्यूज दोपहर समाचार। 2:30 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम हिट ऑफ 90s। 2:58 पर आप सुन पाएंगे आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो से न्यूज हेडलाइंस। 3 बजे आप सुन पाएंगे मिश्मिकमान श्रोताओं का कार्यक्रम। तीन बजकर 15 पर आप सुन पाएंगे ताई खामती श्रोताओं का कार्यक्रम। 3:30 पर आप सुन पाएंगे बॉलीवुड अपडेट और हिंदी फिल्म सॉन्ग्स कार्यक्रम। वंचू श्रोताओं का समाचार आप सुन पाएंगे 3:40 पर। 3:45 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। ईद उमिश में श्रोताओं का समाचार आप सुन पाएंगे 4 बजे। 4:05 पर आप सुन पाएंगे हिंदी फिल्म सॉन्ग्स कार्यक्रम। और सभा के अंत में 4:20 पर आप सुन पाएंगे तांगसा श्रोताओं का समाचार। तो दोस्तों, ये थे अब से लेकर शाम के 4:20 तक प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का रूपरेखा। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz से जहां होती है दिल से दिल की बात।

अब दोस्तों शुरू करते हैं आज की दूसरी प्रसारण सभा और इस सभा का पहला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे फिल्म लहर, जहां हम आपको सुनवाएंगे हिंदी सिनेमा के वो गीत जो कभी मुस्कान बन जाते हैं तो कभी यादों की धुन। हर धड़कन हर एहसास के लिए यहां कोई ना कोई गाना आपको जरूर मिल जाएगा, तो बस खुद को संगीत के हवाले कर दीजिए क्योंकि शुरू हो रहा है हिंदी गीतों का ये खास सिलसिला सिर्फ और सिर्फ फिल्म लहर कार्यक्रम पर। और इस कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन पाएंगे जब हुई मैथ फिल्म का ये इश्क हाय, जिसे गाया है श्रेया घोषाल ने।

ट्रेन दस्ता बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz पर और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म लहर। आइए दोस्तों इस कार्यक्रम का अंतिम लेकिन बहुत ही खूबसूरत गीत सुनते हैं। कल हो न हो फिल्म से प्रीति वुमन, जिसे गाया है शंकर महादेवन और रवि राघोदे ने।

0: इस खूबसूरत गीत के साथ ही दोस्तों फिल्म लहर कार्यक्रम का ये अंक यही समाप्त होते हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों अब आप सुन पाएंगे पाश्चात्य संगीत पर आधारित वेस्टर्न मेलोडीज कार्यक्रम।
1: Hello guys and welcome to the Western Music Program only on Akashvani Itanagar. I'm Sam, your host for the day. Today's playlist feels like a road trip. Songs about leaving, wandering, falling in love with places and people, and figuring out what matters along the way. Budapest captures the feeling of being willing to leave everything behind for someone you care about. It's warm, adventurous, and carried by George Ezra's unmistakable voice. Budapest by George Ezra.

0: That is all for today, listeners. I hope you all enjoyed the songs today and that you'll catch us back tomorrow only on Akashvani Itanagar. This was your host, Sam, signing off for the day. Goodbye.
1: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे पाश्चात्य संगीत पर आधारित वेस्टर्न मेलोडीज कार्यक्रम। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz से, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों अब से कुछ ही देर बाद आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। आप सुनते रहे अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों देशों के बीच रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। प्रधानमंत्री मोदी ने मुक्त व्यापार समझौते को द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने वाला ऐतिहासिक कदम बताया।
1: इस वर्ष दोनों देशों के बीच 9 महीनों के रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। यह आप सभी के लिए मार्केट एक्सेस, इन्वेस्टमेंट, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और टैलेंट मोबिलिटी के नए अवसर लेकर आएगा। मुझे विश्वास है हम 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना बढ़ाएंगे।
0: विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने ऑकलैंड में बताया कि दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। श्री टंडन ने बताया कि आगामी 4 वर्षों में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है। प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में श्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। उन्होंने उद्योग और खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से भी मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों को मजबूत करके एक सशक्त, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य के युद्धों में एआई और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग हो सकता है, लेकिन उन्हें दृढ़ संकल्प और सेना के साहस के साथ ही जीता जा सकता है। विशाखापट्टनम में नौसेना के बेड़े में प्रोजेक्ट 17A के 6 स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी का आज जलावतरण किया गया। उन्होंने कहा कि भारत की समुद्री ताकत को बढ़ाने और स्वदेशी रक्षा क्षमता को मजबूत करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इसमें उन्नत स्वदेशी तकनीकों का उपयोग किया गया है।
2: INS महेंद्रगिरी में मल्टी फंक्शन राडार के साथ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन है, जो आकाश से आने वाले किसी भी खतरे को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकते हैं। और इसमें इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है, टॉरपीडो लॉन्चर्स है, एक इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है और क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है। ये तमाम चीजें INS महेंद्रगिरी को महेंद्रगिरी पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाती हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो के कार्यों में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृह मंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को ही सौंपा जाना चाहिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच परिवहन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और साझा परिवहन रणनीति पर चर्चा की जाएगी। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 3 दिन मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में अगले 5 दिन भारी बारिश की संभावना है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में 1 विकेट पर 21 रन से आगे खेलेगा। कल भारतीय टीम ने पहली पारी में 285 रन बनाए। स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात 2:30 बजे इंग्लैंड के साथ खेलेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi and his New Zealand counterpart Christopher Luxon have decided to elevate the bilateral relationship to a strategic partnership. Secretary East Rudhrendra Tandon shared this in Auckland while addressing the special briefing on the Prime Minister's visit to New Zealand. He added that the Prime Minister's endorsed the India-New Zealand Strategic Partnership Roadmap to 2030 as a framework to guide the joint action over the next 4 years. He added this decision aims to take bilateral relations to a new level, strengthen the existing cooperation mechanisms, and explore new avenues for deepening cooperation both bilaterally and multilaterally.
4: Is the decision by the two prime ministers to raise the relationship to a strategic partnership. They also decided that this goal of a more strategic relationship would be approached systematically, for which they decided that there would be a roadmap to take us forward the next couple of years. This roadmap has been summarized, in fact, in a document which is being released along with the joint statement that the two prime ministers are issuing, the conclusion of their talks.
3: Earlier, speaking during delegation-level talks, Prime Minister Modi said that his visit to New Zealand marks a historic milestone in bilateral relations and will give fresh momentum to ties between the two countries. Prime Minister Modi said India and New Zealand can play an important role in strengthening peace, stability and security in the Indo-Pacific region.
1: लोकतांत्रिक मूल्यों में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये, और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य हैं उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
3: The bilateral discussions were preceded by a ceremonial welcome at the Government House, where Prime Minister Modi was accorded a guard of honour. Later in the day, Prime Minister Modi and his New Zealand counterpart participated in the India-New Zealand Business Engagement 2026 event in Auckland, where both leaders reaffirmed their commitment to strengthening economic ties between the two countries. In a reflection of the strong people-to-people ties that exist between the two countries, Mr. Modi will address a large gathering of the Indian diaspora today. Defence Minister Rajnath Singh has said today that India is building a strong, self-reliant and future-ready defence force by strengthening both conventional defence capabilities and advanced technologies. He said future wars may employ artificial intelligence and other emerging technologies, but they will ultimately be won by national resolve, courageous soldiers and capable military power. Mr. Rajnath Singh was addressing the commissioning ceremony of the INS Mahendragiri, the sixth Project 17A Indigenous Stealth Frigate, into the Eastern Fleet at Vishakhapatnam today. He said the commissioning marks another milestone in strengthening India's maritime power and indigenous capability. He said the warship is capable of tackling threats in the air, on the sea surface and beneath the sea, and will significantly strengthen India's maritime security and operational reach across the Indian Ocean region.
2: मल्टी फंक्शन रडार के साथ
5: इट हैज अ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल कॉम्बिनेशन विद अ मल्टी फंक्शन रडार दैट कैन डिटेक्ट एंड डिस्ट्रॉय एनी थ्रेट कमिंग फ्रॉम द स्काई फ्रॉम अ डिस्टेंस एंड इट हैज एन इंडिजीनियस रॉकेट लॉन्चर टॉर्पेडो लॉन्चर्स एन इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम एन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट एंड अ क्लोज इन वेपन सिस्टम टू दीज ऑल थिंग्स मेक INS महेंद्रगिरी एज इनविंसिबल एंड स्ट्रॉन्ग एज द महेंद्रगिरी माउंटेन
2: महेंद्रगिरी पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाती है।
3: Sikkim has once again emerged as India's richest state in terms of per capita income. According to the latest income data analysis, the state's per capita income stood at over 6.46 lakh rupees in the 2024-25 financial year, nearly three times the national average, despite accounting for just 0.05% of the country's population. The India Meteorological Department has issued an orange alert for very heavy rainfall over Bihar, Uttar Pradesh, Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Sub-Himalayan, West Bengal and Sikkim during next 3 days. In the FIFA World Cup, Spain has booked its place in the semi-finals, defeating Belgium 2-1 in the second quarter-final at Los Angeles Stadium in Inglewood, United States last night. Earlier, France advanced to the semi-finals with a comfortable 2-0 victory over Morocco in the first quarter-final in Boston. And that is the end of this news bulletin.

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों अब आप सुन पाएंगे हमारे सीनियर सिटीजन्स पर आधारित कार्यक्रम यादों की बारात।

दोस्तों, जिंदगी की किताब के कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ पुराने जरूर हो जाते हैं, लेकिन उनकी खुशबू कभी कम नहीं होती। कुछ यादें ऐसी होती है जो दिल के किसी कोने में हमेशा बसी रहती है। बचपन की शरारतें, दोस्तों के साथ बिताए पल, पहला रेडियो, पहली साइकिल और वो गीत जो आज भी सुनते ही हमें सालों पहले की दुनिया में ले जाते हैं। आज का हमारा खास सेगमेंट है यादों की बारात, समर्पित हमारे प्यारे सीनियर सिटीजन्स के नाम। ये सिर्फ गानों का सफर नहीं बल्कि उन सुनहरे लम्हों का सफर है जहां जिंदगी थोड़ी धीमी थी, रिश्ते तोड़े गहरे थे और मुस्कुराहट दिल से निकलती थी। तो दोस्तों, आइए कुछ देर के लिए आज की दौड़ की भाग दौड़ को पीछे छोड़ते हैं और चलते हैं उन हसीन सालों की तरफ जब रेडियो की मधुर धुनों पर पूरा परिवार एक साथ बैठकर गीत सुना करता था, जब हर गाने के साथ जुड़ी होती थी एक कहानी, एक एहसास और एक अनमोल याद। तो चलिए यादों के इस खूबसूरत कारवां को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं एक ऐसा गीत जो शायद आपको भी आपकी जिंदगी के किसी खास मोड़ पर ले जाए। पहला गीत सुनते हैं अवतार फिल्म से, दिन महीने साल गुजरते जाएं, किशोर कुमार की आवाज में।

दोस्तों कहते हैं ना, वक्त जरूर आगे बढ़ता है लेकिन यादें कभी पुरानी नहीं होती। बस किसी पुराने गीत की एक धुन सुनते ही दिल फिर से उन्हीं हसीन लम्हों में पहुंच जाता है। तो चलिए उन्हीं यादों को फिर से ताजा करते हैं और सुनते हैं एक और सदाबहार नगमा। आप सुन पाएंगे पंछी बनी उड़ती पीरू मस्त गगन में। इस फिल्म है चोरी चोरी और गीत गाया है लता मंगेशकर ने।

0: दोस्तों, इस खूबसूरत सदाबहार गीत के साथ आज का हमारे वरिष्ठ नागरिकों पर आधारित ये खास सेगमेंट यही समाप्त होते हैं। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz से जहां होती है दिल से दिल के बात। दोस्तों, हम लौटेंगे हमारे फौजी भाई बहनों पर आधारित गीतमाला कार्यक्रम के साथ इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: सुनिए सुनिए सुनिए कचरा जी, अब जरा संभल के, क्योंकि अब आने वाला है सफाई का सबसे बड़ा मुकाबला। जी हाँ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026
2: 13th ईटानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी यूथ एसोसिएशन लेकर आ रहा है बैटल ऑफ 20 वार्ड्स, जो होगा 10th जुलाई 2026 से 25th अगस्त 2026 तक। अब होगा मुकाबला, कौन सा वार्ड होगा सबसे क्लीन, सबसे ग्रीन और बनेगा राजधानी ईटानगर का स्वच्छ चैंपियन। और हाँ, जीतने वाले वार्ड के लिए है 5 लाख का ग्रैंड कैश प्राइज।
1: कॉर्पोरेटर साहब, फाइल और मीटिंग तो चलती रहेगी।
2: अब ग्लोव्स पहनिए, झाड़ू उठाइए और अपने वार्ड को चैंपियन बनाइए।
1: और ईटानगर के नागरिकों, आपका एक छोटा सा कदम हमारी राजधानी ईटानगर को बना सकता है और भी सुंदर और भी स्वच्छ।
2: तो अब कचरा हटाइए, वार्ड चमकाइए और जीतिए 5 लाख का कैश प्राइज।
1: रजिस्ट्रेशन और जानकारी के लिए संपर्क करें 9366693170 या 9402877126 पर।
2: झाड़ू घुमाओ, वार्ड चमकाओ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026, स्वच्छ राजधानी हमारी जिम्मेदारी।

दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे फौजी भाई बहनों पर आधारित ये दैनिक कार्यक्रम गीत माला में। दोस्तों गीत माला कार्यक्रम का सबसे पहला गीत सुनते हैं चक डे इंडिया फिल्म का टाइटल ट्रैक, जिसे गाया है मरियन डिक्रूज, सलीम मर्चेंट और सुखविंदर सिंह ने।

दोस्तों आप सुन रहे थे चक डे इंडिया फिल्म का टाइटल ट्रैक। चक डे इंडिया फिल्म सिर्फ हॉकी पर बनी फिल्म नहीं, ये एक इमोशन था। वुमेन्स हॉकी को जो पहचान इस फिल्म ने दी ना, वो शायद सालों में भी नहीं मिली। फिल्म में शाहरुख खान ने कबीर खान का किरदार निभाया, एक ऐसा कोच जो सिर्फ टीम नहीं बनाता बल्कि टीम इंडिया बनाता है। रिलीजन, रीजनल डिफरेंसेस, सेक्सिज्म, हर तरह के प्रेजुडिस को तोड़ते हुए ये फिल्म एक पावरफुल मैसेज देती है कि कंट्री कम्स फर्स्ट। इस फिल्म के बाद सिर्फ हॉकी की पॉपुलैरिटी नहीं बढ़ी बल्कि लोगों की सोच भी बदली। वुमेन एथलीट्स को लेकर जो स्टीरियोटाइप्स थे उन पर सवाल उठने लगे। चक डे इंडिया ने हमें सिखाया इंडिविजुअल स्टार्स नहीं टीम स्पिरिट जीत दिलाती है, और जब अलग अलग स्टेट से आए प्लेयर्स एक साथ खड़े होते हैं तो बनती है टीम इंडिया। तो चलिए ऐसे ही एक और फिल्म की ओर बढ़ते हैं जो हमें हिंदुस्तानी होने का गर्व महसूस कराते हैं। सुनते हैं फिर भी दिल है हिंदुस्तानी फिल्म का टाइटल ट्रैक उदित नारायण की आवाज में।

0: Attention, Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज, जहां होती है दिल से दिल की बात। और इस वक्त आप बने हुए हमारे साथ फौजी भाई बहनों का दैनिक कार्यक्रम गीत माला में। दोस्तों अब कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं, संदेश से आते हैं लेकिन थोड़े नए अंदाज में। जी हाँ, ये गाना है बॉर्डर 2 का और इस गाने को बॉलीवुड के कुछ बेहतरीन सिंगर्स ने गाए हैं, सोनू निगम, रोहित कुमार राठौड़, अरिजीत सिंह, विशाल मिश्रा और दिलजीत दोसांझ ने।

दोस्तों इसी के साथ ही हमारे फौजी भाई बहनों का दैनिक कार्यक्रम गीत माला यही समाप्त होते हैं। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz से जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से कुछ ही देर बाद आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। विदेश मंत्रालय में पूर्व विदेशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने ऑकलैंड में बताया कि आगामी चार वर्षों में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है।
1: दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय ये दर्शाता है कि हम अपने रिश्तों के सभी क्षेत्रों में संबंध मजबूत कर रहे हैं, विशेष रूप से रक्षा तथा सुरक्षा के क्षेत्र में और राजनीतिक स्तर पर।
0: इससे पहले दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े पांच महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
2: लोकतांत्रिक मूल्यों में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य हैं उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
0: प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में भी श्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। उन्होंने उद्योग और खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17A का ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों को मजबूत करके एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि INS महेंद्रगिरी में 75% से अधिक स्वदेशी घटकों का इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है और इससे हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत और बढ़ेगी।
3: गिरी में मल्टी फंक्शन राडार के साथ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन है जो आकाश से आने वाले किसी भी खतरे को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकते हैं। और इसमें इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है, टॉरपीडो लॉन्चर्स है, एक इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है और क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है। ये तमाम चीजें INS महेंद्रगिरी को महेंद्रगिरी पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाती हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का शुभारंभ किया। श्री शाह ने युवाओं से पुस्तकालयों में जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पुस्तकें व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। श्री शाह ने कहा कि महान क्रांतिकारी और विचारक जयप्रकाश नारायण ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सिक्किम एक बार फिर देश का सबसे समृद्ध राज्य बनकर उभरा है। प्रति व्यक्ति आय के नवीनतम विश्लेषण के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 6,46,000 रुपए से अधिक रही। ये राष्ट्रीय औसत से लगभग 3 गुना है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में 1 विकेट पर 21 रन से आगे खेलेगा। इससे पहले कल भारतीय टीम ने पहली पारी में 285 रन बनाए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अंतिम क्वार्टर फाइनल में कल सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे।

0: to advance while France progressed with a comfortable 2-0 win over Morocco. India will face host England in the fifth and final T20 international of the series today in Southampton at 7 p.m. Indian Standard Time. England has already clinched the series with a 3-0 lead, while India will be aiming to register a consolation victory before the teams move on to the ODI series. And that is the end of this news bulletin.
1: श्रोता दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी टनागर का अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगा।

0: दोस्तों वक्त हो चला है हिंदी क्लासिक म्यूजिक कार्यक्रम का, जहां हम आपको सुनवाते हैं 60s, 70s और 80s के कुछ खूबसूरत गीतों को। तो चलिए इस खूबसूरत सदाबहार गीतों का सेगमेंट शुरू करते हैं और सबसे पहला गीत सुनते हैं कर्ज फिल्म का, मेरी उम्र के नौजवानों, किशोर कुमार की आवाज़ में।
1: तुमने कभी किसी से प्यार किया?
2: किया!
1: कभी किसी को

दोस्तों, हिंदी क्लासिक म्यूजिक कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन पाएंगे द बर्निंग ट्रेन फिल्म से पल दो पल का साथ हमारा। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने। दोस्तों, अगर हम बॉलीवुड की उन फिल्मों की बात करें जो अपने वक्त से काफी आगे मानी जाती है, तो द बर्निंग ट्रेन का नाम जरूर लिया जाता है। रवि चोपड़ा के निर्देशन में बनी यह फिल्म शायद आज हर किसी ने टीवी पर देखी होगी, लेकिन 1980 के दौर में इस तरह का कॉन्सेप्ट अपने आप में एक बड़ा एक्सपेरिमेंट माना गया। इस फिल्म में वीएफएक्स लगभग ना के बराबर था, बैकग्राउंड में प्रोजेक्टर स्क्रीन्स का इस्तेमाल हुआ और क्लाइमेक्स के लिए एक मिनिएचर ट्रेन मॉडल तैयार किया गया। आज के हिसाब से ये सब आर्टिफिशियल लग सके, लेकिन उस जमाने में ये काफी इनोवेटिव और डेयरिंग माना गया। कम टेक्नोलॉजी के बावजूद इतनी बड़ी कहानी को पर्दे पर उतारना एक बड़ी उपलब्धि मानी गई। ये कहानी शायद किसी विदेशी फिल्म या नॉवेल से प्रेरित हो, लेकिन इससे फिल्म की खूबसूरती कम नहीं होती, बल्कि इस बात की तारीफ होती है कि इतनी कम सुविधाओं के साथ भी इतनी बड़ी और ग्रिपिंग कहानी पेश की गई। अपने जमाने के हिसाब से ये एक महंगी फिल्म थी। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर ये एवरेज हिट रही, फिर भी उस साल की सातवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। आज के दौर में भी ऐसे रिस्क लेने वाले प्रोजेक्ट्स कम ही देखने को मिलते हैं। तो चलिए सुनते हैं द बर्निंग ट्रेन फिल्म से पल दो पल का साथ हमारा।

0: सुनिए सुनिए सुनिए कचरा जी, अब जरा संभल के, क्योंकि अब आने वाला है सफाई का सबसे बड़ा मुकाबला। जी हाँ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026
1: 13th ईटानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी यूथ एसोसिएशन लेकर आ रहा है बैटल ऑफ 20 वार्ड्स, जो होगा 10th जुलाई 2026 से 25th अगस्त 2026 तक। अब होगा मुकाबला, कौन सा वार्ड होगा सबसे क्लीन, सबसे ग्रीन और बनेगा राजधानी ईटानगर का स्वच्छ चैंपियन। और हाँ, जीतने वाले वार्ड के लिए है 5 लाख का ग्रैंड कैश प्राइज।
0: कॉर्पोरेटर साहब, फाइन और मीटिंग तो चलती रहेगी।
1: अब ग्लोव्स पहनिए, झाड़ू उठाइए और अपने वार्ड को चैंपियन बनाइए।
0: और ईटानगर के नागरिकों, आपका एक छोटा सा कदम हमारी राजधानी ईटानगर को बना सकता है और भी सुंदर और भी स्वच्छ।
1: तो अब कचरा हटाइए, वार्ड चमकाइए और जीतिए 5 लाख का कैश प्राइज।
0: रजिस्ट्रेशन और जानकारी के लिए संपर्क करें 9366693170 या 9402877126 पर।
1: झाड़ू घुमाओ, वार्ड चमकाओ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026, स्वच्छ राजधानी हमारी जिम्मेदारी।
2: दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात। और इस वक्त आप बने हुए हमारे साथ कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक में। दोस्तों, बॉलीवुड में अगर किसी एक्टर ने अपनी मेहनत, टैलेंट और डांस से एक अलग पहचान बनाई तो वो है मिथुन चक्रवर्ती। एक ऐसा नाम जिन्होंने साबित किया कि सुपरस्टार बनने के लिए सिर्फ फिल्मी बैकग्राउंड नहीं, हौसला और लगन भी चाहिए होती है। मिथुन दा ने अपने करियर की शुरुआत 1976 के फिल्म मिर्गाया से की और कमाल की बात यह है कि अपनी डेब्यू फिल्म के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर मिला। ये किसी भी नए कलाकार के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि मानी गई। लेकिन देश भर में उनकी असली पहचान बनी 1982 की फिल्म डिस्को डांसर से। आई एम अ डिस्को डांसर और जिमी जिमी आजा आजा जैसे गाने ने हर गली, हर मोहल्ला और दुनिया के कई देशों तक गूंज उठे। मिथुन दा एक एनर्जेटिक डांस मूव्स ने उन्हें इंडिया का पहला असली डांस सेंसेशन बना दिया। इसके बाद कसम पैदा करने वाले की डांस डांस, प्यार झुकता नहीं और अग्निपथ जैसे फिल्मों में उन्होंने एक्शन, रोमांस और ड्रामा हर जोनर में अपनी छाप छोड़ दी। 90s में जब बॉलीवुड बदल रहा था तब भी मिथुन दा ने लगातार काम किया और बाद में कैरेक्टर रोल्स में भी दर्शकों का दिल जीता। टेलीविजन पर डांस इंडिया डांस के ग्रैंड मास्टर के रूप में उनका अंदाज और उनका मशहूर डायलॉग क्या बात क्या बात क्या बात घर घर में पॉपुलर हो गए। आज भी मिथुन चक्रवर्ती सिर्फ एक्टर नहीं बल्कि मेहनत, सिंप्लिसिटी और वर्सेटिलिटी की मिसाल मानी जाती है। उनका सफर हमें ये सिखाता है कि टैलेंट और डेडिकेशन के दम पर हर सपना सच हो सकता है। तो आइए सुनते हैं उनके फिल्म का डिस्को डांसर फिल्म का ये गाना, कोई यहाँ आहा नचे नचे। इस गीत को गाया है उषा उतूप और बप्पी लहरी ने।

0: दोस्तों, कार्यक्रम का अंतिम गीत आपने सुना दिल दीवाना मैंने प्यार किया फिल्म से लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में। इसी के साथ ही हिंदी क्लासिक म्यूजिक कार्यक्रम का ये अंक यही समाप्त होते हैं। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज से जहां होती है दिल से दिल के बाद। दोस्तों, लौटेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: पारे हाइड्रो पावर स्टेशन इज करेंटली इन ऑपरेशन।

0: attention. Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वारी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ। सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: दोस्तों आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी तनगर का अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से कुछ ही देर बाद आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से बारी बारी से मिड डे न्यूज एवं दोपहर समाचार। हम लौटेंगे 2:30 पर कार्यक्रम हिट ऑफ 90s के साथ। सुनते रहिए अरुण FM 103.1 MHz, दिल से दिल की बात।

0: बंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया, कहा न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच साझा सफर का एक अहम हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी का जलावतरण किया, कहा भारत एक मजबूत आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। परिवहन क्षेत्र में तकनीकी और नवाचार आधारित सहयोग मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 को अपनाया गया। बावी तूफान के कारण जापान और ताइवान में उड़ानें रद्द और स्कूल बंद। भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्पटन में खेला जाएगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य है। ऑकलैंड में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि आगामी 4 वर्षों में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है।
1: दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय ये दर्शाता है कि हम अपने रिश्तों के सभी क्षेत्रों में संबंध मजबूत कर रहे हैं, विशेष रूप से रक्षा तथा सुरक्षा के क्षेत्र में और राजनीतिक स्तर पर।
0: इससे पहले दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा।
2: आज हमने इंडो पैसिफिक में मैरिटाइम कोऑपरेशन के लिए एक फ्रेमवर्क पर सहमति बनाई है। बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज, लॉजिस्टिक सपोर्ट और हाइड्रोग्राफी में सहयोग से हमारा आपसी तालमेल बढ़ेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने के लिए भी सहमत हुए हैं।
2: वैश्विक मंच पर भी भारत और न्यूजीलैंड भरोसेमंद साझेदार और करीबी मित्र है। हमारा मानना है कि वर्तमान समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए UN सहित अन्य वैश्विक संस्थानों में रिफॉर्म आवश्यक है। आतंकवाद के विषय पर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ाने के लिए आज हमने ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का गठन किया है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश खेल संबंधों की 100वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
2: 100 साल पहले मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में हॉकी टीम ने यहां आकर जो इतिहास रचा था वह हमारी खेल साझेदारी को आज भी प्रेरित कर रहा है। इस उपलक्ष्य पर हम दोनों देशों में कई स्पोर्ट्स इवेंट्स आयोजित कर रहे हैं। क्रिकेट के साथ साथ अन्य खेलों में भी सहयोग बढ़ाने के लिए हमने स्पोर्ट्स ज्वाइंट एक्शन प्लान बनाया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों का महत्वपूर्ण आधार है। ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के संबंध साझा विरासत, स्थायी मित्रता, समान लोकतांत्रिक मूल्यों और उज्ज्वल भविष्य के साझा संकल्प पर आधारित हैं।
2: हमने न्यूजीलैंड से भी बहुत कुछ सीखा है और अब भी सीख रहे हैं। न्यूजीलैंड दुनिया का वो देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग का राइट दिया था। भारत भी आज विमेन लेड डेवलपमेंट के मंत्र के साथ महिलाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि ऑकलैंड से वेलिंगटन और क्राइस्टचर्च से क्वींसटाउन तक भारतीय समुदाय ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

0: समझौते से न्यूजीलैंड के निर्यातकों को भारत के विशाल बाजार तक पहुंच मिलेगी और न्यूजीलैंड में भारतीय कारोबार के लिए नए अवसर खुलेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्रगिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17 एकाई युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों को सुदृढ़ करके एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। श्री सिंह ने कहा कि आईएनएस महेंद्रगिरी में 75% से अधिक स्वदेशी घटकों का इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है। इससे हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत और बढ़ेगी।
1: आईएनएस महेंद्रगिरी में मल्टी फंक्शन राडार के साथ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का कॉम्बिनेशन है, जो आकाश से आने वाले किसी भी खतरे को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकते हैं। और इसमें इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है, टॉरपीडो लॉन्चर्स है, एक इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है और क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है। ये तमाम चीजें आईएनएस महेंद्रगिरी को महेंद्रगिरी पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाती हैं।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 अपनाई गई है। बैठक में ब्राजील, चीन, मिश्र, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात के परिवहन मंत्रियों ने अपने विचार साझा किए। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत दो दिन की ये बैठक आज से नागपुर में शुरू हुई। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में जय प्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का शुभारंभ किया। श्री शाह ने युवाओं से पुस्तकालयों में जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पुस्तकें व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। श्री शाह ने कहा कि महान क्रांतिकारी और विचारक जय प्रकाश नारायण ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
2: किशोरों ने और युवाओं ने अपने रुचि के विषय छान लेने चाहिए और सुने सुनाए ज्ञान की बगैर हमारे रुचि के विषय में जिन्होंने पूरा जीवन खपा दिया है, जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया है, ऐसे लोगों ने जो अपने अनुभव, अपने विचार, अपना चिंतन और चिंतन की व्यवहारिता जो पुस्तकों में अंकित की है उसको पढ़ना चाहिए। ये बहुत बड़ा मौका है दिल्ली के युवाओं के लिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट 32,000 पुस्तक और 1 करोड़ ई बुक का एक्सेस है।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि हैदराबाद को प्रमुख हाई स्पीड रेल हब के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रस्तावित बुलेट ट्रेन कॉरिडोर हैदराबाद को पुणे, चेन्नई और बेंगलुरु से जोड़ेगा। हैदराबाद में श्री वैष्णव ने कहा कि हाई स्पीड रेल नेटवर्क से यात्रा में लगने वाले समय में कमी आएगी और दक्षिण भारत में रेल संपर्क मजबूत होगा। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। विश्व जनसंख्या दिवस पर उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय मां और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व है। उन्होंने कहा कि अभियान का नारा जब बच्चों में हो सही अंतराल, परिवार बने स्वस्थ और खुशहाल, गुणवत्तापूर्ण परिवार नियोजन सेवाओं तथा जागरूक प्रजनन संबंधी निर्णयों के महत्व को दर्शाता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जापान के दक्षिणी द्वीपों में आज तूफान बावी के टकराने की खबर है। इस दौरान द्वीपों में तेज हवाएं चली और मूसलाधार बारिश हुई। लगभग 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ तूफान बावी के कल तड़के चीन के झेजियांग प्रांत में टकराने

0: का अनुमान है। इस तूफान के कारण जापान के ओकिनावा प्रांत में 200 से अधिक उड़ानें रद्द की गईं। ताइवान में स्कूल और सरकारी कार्यालय भी बंद रहे। इस बीच चीन ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश ने बताया कि अल नीनो के कारण देश में मॉनसून की बारिश सामान्य से कम हुई है।
1: आज के लिए हमारा असम मेघालय के लिए रेड अलर्ट भी है, वहाँ हम 20 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल अनुमान लगा रहे हैं। ईस्ट उत्तर प्रदेश, बिहार, सब हिमालय, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो रेनफॉल एक्टिविटी है आने वाले 4 से 5 दिन कंटिन्यू रहेगी, और नॉर्थ पंजाब, नॉर्थ हरियाणा में आज हैवी रेनफॉल हो सकती है। अगर आप एनसीआर दिल्ली की बात करें, बाई इवनिंग और लेट इवनिंग हल्का फुल्का रेनफॉल हो सकता है।
0: सिक्किम एक बार फिर देश का सबसे समृद्ध राज्य बनकर उभरा है। प्रति व्यक्ति आय के नवीनतम विश्लेषण के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 6,46,000 रुपए से अधिक रही। ये राष्ट्रीय औसत से लगभग 3 गुना है। देश की कुल आबादी में सिक्किम की हिस्सेदारी केवल 0.05% है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सिक्किम एक बार फिर भारत का सबसे समृद्ध राज्य प्रति व्यक्ति आय के आधार पर घोषित हुआ है। बिजनेस स्टैंडर्ड की कल प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार सिक्किम के एक औसत निवासी की आय बिहार के एक औसत निवासी की तुलना में लगभग 10 गुना ज्यादा है। पिछले 10 वर्षों से शीर्ष 4 स्थानों पर सिक्किम, गोवा, दिल्ली और चंडीगढ़, जबकि सबसे निचले स्थानों पर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर लगातार बने हुए हैं। मानस प्रतिम शर्मा के साथ मोइनाक चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज शाम 7 बजे साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में 1 विकेट पर 21 रन से आगे खेलेगा। माइया बाउचियर 17 और हीथर नाइट 1 रन बनाकर क्रीज पर हैं। इससे पहले कल भारतीय टीम ने पहली पारी में 285 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 83, कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 58 और दीप्ति शर्मा ने 57 रन बनाए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अंतिम क्वार्टर फाइनल में कल सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इससे पहले स्पेन और फ्रांस सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया। कहा, न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच साझा सफर का एक अहम हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी का जलावतरण किया। कहा, भारत एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। परिवहन क्षेत्र में तकनीकी और नवाचार आधारित सहयोग मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र 2026 को अपनाया गया। और भारत तथा इंग्लैंड के बीच 5वां और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्पटन में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित मिड डे न्यूज एवं दोपहर समाचार। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज से जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों सभा के इस भाग में लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम हिट ऑफ 90s, जहां हम आपको सुनाएंगे 90s के सुपरहिट सॉन्ग्स।

90s का दौर जब प्यार खतों में लिखा जाता था, दोस्ती बिना सोशल मीडिया के निभाई जाती थी और फिल्मों के गाने सीधे दिल में उतर जाते थे। आज के इस खास महफिल में हम

सुनेंगे कुछ ऐसे ही सदाबहार नगमे जो आज भी उतने ही ताजगी के साथ हमारे दिलों में बसती है। और सबसे पहले बात करते हैं पहला नशा के फिल्म जो जीता वही सिकंदर से। इस गीत को उदित नारायण और साधना सरगम ने अपनी आवाज दी है। और इस गाने की खास बात ये थी कि इसके कई सीन्स स्लो मोशंस में फिल्माए गए थे, जिसने पहले प्यार की मासूमियत को और भी खूबसूरती से पेश किया। आज भी जब पहला नशा गाने की बात होती है तो ये गाना जरूर याद आता है। चलिए सुनते हैं पहला नशा, पहला खुमार, उदित नारायण और साधना सरगम की आवाजों में।

पहला नशा पहला खुमार, दोस्तों क्या खूबसूरत गाना है ना। कुछ गाने वक्त के साथ पुराने नहीं होते बल्कि और अनमोल बन जाते हैं। अब चलते हैं 1998 की ब्लॉकबस्टर फिल्म कुछ कुछ होता है की तरफ। इस फिल्म का गाना तुझे याद ना मेरी आए सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि अधूरे प्यार की एक कहानी है। उदित नारायण, अलका याग्निक और मनप्रीत अख्तर की आवाजों ने इस गीत को दिलों तक पहुंचाया। शायद ही कोई ऐसा हो जिसने इस गाने को सुनते वक्त उसकी भावना को महसूस न किया हो।

0: सुनिए सुनिए सुनिए कचरा जी, अब जरा संभल के, क्योंकि अब आने वाला है सफाई का सबसे बड़ा मुकाबला। जी हाँ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026
1: 13th ईटानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी यूथ एसोसिएशन लेकर आ रहा है बैटल ऑफ 20 वार्ड्स, जो होगा 10th जुलाई 2026 से 25th अगस्त 2026 तक। अब होगा मुकाबला, कौन सा वार्ड होगा सबसे क्लीन, सबसे ग्रीन और बनेगा राजधानी ईटानगर का स्वच्छ चैंपियन। और हाँ, जीतने वाले वार्ड के लिए है 5 लाख का ग्रैंड कैश प्राइज।
0: कॉर्पोरेटर साहब, फाइल और मीटिंग तो चलती रहेगी।
1: अब ग्लोव्स पहनिए, झाड़ू उठाइए और अपने वार्ड को चैंपियन बनाइए।
0: और ईटानगर के नागरिकों, आपका एक छोटा सा कदम हमारी राजधानी ईटानगर को बना सकता है और भी सुंदर और भी स्वच्छ।
1: तो अब कचरा हटाइए, वार्ड चमकाइए और जीतिए 5 लाख का कैश प्राइज।
0: रजिस्ट्रेशन और जानकारी के लिए संपर्क करें 9366693170 या 9402877126 पर।
1: झाड़ू घुमाओ, वार्ड चमकाओ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026। स्वच्छ राजधानी हमारी जिम्मेदारी।
2: प्यारे श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात। और इस वक्त आप बने हुए हमारे साथ कार्यक्रम हिट ऑफ 90s में। दोस्तों, 90s का म्यूजिक सिर्फ रोमांस तक सीमित नहीं है, बल्कि हर मूड के लिए एक गाना जरूर मिल जाता है। अब जिक्र उस गाने का जो आज भी शादियों और सेलिब्रेशन की जान बनी हुई है। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज से सजा हुआ ये गीत लगभग हर इंडियन वेडिंग का हिस्सा बन चुका है। कितनी ही पीढ़ियां बदल गई, लेकिन इस गाने का जादू आज भी वैसा ही बरकरार है। तो चलिए 90s के इस महफिल को थोड़ा और रंगीन बनाते हैं और सुनते हैं मेहंदी लगा के

दोस्तों, इस खूबसूरत गीत के साथ ही आज के हिट ऑफ 90s कार्यक्रम यही समाप्त होती है। उम्मीद है आज के सारे गाने आपको फिर से 90s की हसीन यादों में ले गए होंगे। कल फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ सदाबहार नगमों और उनसे जुड़ी दिलचस्प कहानियों के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए 90s के गाने। साथ ही बता दूं दोस्तों, अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 2:58 पर आप सुन पाएंगे आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो से न्यूज हेडलाइंस। 3 बजे आप सुन पाएंगे मिस्र का मंच श्रोताओं का कार्यक्रम। 3:15 पर आप सुन पाएंगे ताई खामती श्रोताओं का कार्यक्रम। हम लौटेंगे 3:30 पर कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट और हिंदी फिल्म सॉन्ग्स के साथ। आप सुनते रहिए अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे ताई खामती श्रोताओं का कार्यक्रम। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz से जहां होती है दिल से दर की बात। दोस्तों, सभा के इस भाग में अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट और हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज के बॉलीवुड अपडेट। और इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा चर्चा में रही अल्फा फिल्म YRF स्पाई यूनिवर्स की ये पहली वुमेन लीड स्पाई फिल्म है, जिसमें आलिया भट्ट और शर्वरी लीड रोल्स में नजर आ रहे हैं। स्पाई यूनिवर्स को एक नई डायरेक्शन देने की ये कोशिश काफी इंटरेस्टिंग है। और सबसे पहले तो यशराज फिल्म्स की तारीफ बनती है कि उन्होंने सिर्फ मेल सुपर स्पाइस तक अपने फ्रेंचाइज को सीमित नहीं रखी, बल्कि फीमेल एजेंट्स को भी सेंटर स्टेज दिया। हिंदी सिनेमा में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स वाकई वेलकम किए जाने चाहिए। फिल्म की कहानी दो इलीट एजेंट्स के इर्द गिर्द घूमती है। आलिया भट्ट और शर्वरी ने अपने कैरेक्टर्स को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ निभाया है। दोनों के एक्शन सिक्वेंसेज, हैंड टू हैंड कॉम्बैट और इमोशनल मोमेंट्स ऑडियंस को काफी पसंद आ रही है। वही बॉबी देओल अपने नेगेटिव रोल में एक बार फिर दमदार स्क्रीन प्रेजेंस दिखाते नजर आए। फिल्म का एक और बड़ा हाईलाइट है ऋतिक रोशन का कबीर के रूप में कैमियो। उनकी एंट्री छोटी जरूर है, लेकिन इम्पैक्ट काफी बड़ा छोड़ देती है। थिएटर्स में उनकी एंट्री पर सीटियां और तालियां इस बात का सबूत है कि कबीर का कैरेक्टर आज भी ऑडियंस का फेवरेट है। ये कैमियो सिर्फ एक्साइटमेंट की

एक्साइटमेंट ही नहीं भरा था बल्कि YRF यूनिवर्स के आने वाले चैप्टर्स के लिए भी फैंस की क्यूरियोसिटी और बढ़ा देती है। रिव्यूज की बात करें तो फिल्म के एक्शन सीक्वेंसेस, ग्रैंड विजुअल्स और परफॉर्मेंसेस की काफी तारीफ हो रही है, लेकिन कहानी और स्क्रीन प्ले को लेकर रिएक्शंस मिक्स रहे। कई व्यूवर्स का कहना है कि फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो लगता है और स्टोरी में वो फ्रेशनेस नहीं मिली जिसकी उम्मीद की जा रही थी। हाँ, लेकिन सेकेंड हाफ में एक्शन और पेस दोनों बेहतर हो जाते हैं जिसकी वजह से फिल्म ज्यादा एंगेजिंग बन जाती है। और इसी बीच सोशल मीडिया पर फिल्म की तुलना धुरंधर से भी की जा रही है। कई मूवी लवर्स का मानना है कि धुरंधर ने अपनी ग्रिपिंग स्टोरी टेलिंग, टाइट स्क्रीन प्ले और रियलिस्टिक स्पाई एक्शन के साथ स्पाई जोनरा के लिए एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया है। उसे कंपैरिजन में कुछ व्यूवर्स को लगता है कि अल्फा एक्शन और स्टाइल में तो इम्प्रेस करती है, लेकिन राइटिंग और थ्रिल के मामले में थोड़ी पीछे रह जाती है। फिर भी दोस्तों एक बात तो साफ है, YRF का वुमेन लेड स्पाई फिल्म बनाने का फैसला एक पॉजिटिव और बोल्ड कदम है। अगर ऑडियंस इसी तरह के एक्सपेरिमेंट्स को सपोर्ट करती रही तो आने वाले सालों में हमें और भी दमदार फीमेल स्पाई कैरेक्टर्स देखने को मिल सकती है।

और जहां दोस्तों एक तरफ पूरी इंडस्ट्री की नजरें अल्फा पर टिकी हुई थी, वहीं उसी दिन रिलीज हुई एक और फिल्म ने धीरे धीरे ऑडियंस का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। मैं बात कर रही हूँ फिल्म बेबी डू डाई डू की। डायरेक्टर नचिकेत सम्बन्ध के इस क्राइम थ्रिलर में हुमा कुरैशी लीड रोल्स में है। उनके साथ सिकंदर खेर, चंकी पांडे, सीमा पावा और विद्या मालदे भी अहम किरदारों में नजर आ रहे हैं। फिल्म की कहानी मुंबई की एक डेफ और म्यूट कॉन्ट्रैक्ट किलर की इर्द गिर्द घूमती है, जो एक डबल लाइफ जीती है, लेकिन एक मिशन गलत हो जाता है और उसके बाद राज, धोखे और सर्वाइवल की एक रोमांचक जंग शुरू हो जाती है। डार्क ह्यूमर, सस्पेंस और एक्शन का ये कॉम्बिनेशन फिल्म को एक अलग पहचान देती है। और सबसे खास बात यह है कि बिना किसी बड़े बज या मैसिव प्रमोशंस के भी फिल्म अपनी स्ट्रॉन्ग राइटिंग और परफॉर्मेंसेस की वजह से ऑडियंस को काफी इम्प्रेस कर रही है। सोशल मीडिया पर कई व्यूवर्स इसे इस हफ्ते का सरप्राइज पैकेज बता रही है। वर्ड ऑफ माउथ भी काफी पॉजिटिव देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, अगर आपको सिर्फ बड़े बजट और वीएफएक्स वाले एंटरटेनर से नहीं बल्कि एक ग्रिपिंग कॉन्टेंट ड्रिवन थ्रिलर देखना है तो बेबी डू डाई डू आप जरूर देख सकते हैं।

अब दोस्तों बात करते हैं उन फिल्मों की जो इस हफ्ते एंटरटेनमेंट का लेवल और भी हाई करने जा रही है। एक तरफ है हंसी का धमाका और दूसरी तरफ है कोर्टरूम का जबरदस्त ड्रामा। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं धमाल 4 की। धमाल फ्रेंचाइज का नाम सुनते ही याद आ जाती है वो क्रेजी कॉमेडी, अजीबो गरीब सिचुएशंस और पेट पकड़ कर हंसने वाले मोमेंट्स। और अब ये आइकॉनिक गैंग एक बार फिर वापस आ गई है। इस बार फिल्म में नजर आएंगे अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वर्सी, जावेद जेफरी, रवि किशन, संजय मिश्रा, ऐशा गुप्ता और संजीदा शेख। कहानी एक नए ट्रेजर हंट के इर्द गिर्द घूमती है जहां हर कोई खजाने तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन रास्ते में जो कन्फ्यूजन, कॉमेडी और कियोस मचाते हैं वही इस फिल्म की जान है। तो दोस्तों धमाल 4 रिलीज हो चुकी है 10 जुलाई यानी कल। अगर आप अपने फैमिली के साथ एक स्ट्रेस फ्री एंटरटेनर देखना चाहते हैं तो धमाल 4 जरूर देखने जाइएगा। और अब बात एक बिल्कुल अलग जोनरा की फिल्म की। अगर कॉमेडी से सीधा सीरियस कोर्टरूम ड्रामा की तरफ जाना चाहते हैं दोस्तों तो इक्का भी इस हफ्ते रिलीज हो रही है। फिल्म में सनी डियोल, अक्षय खन्ना और तिलोतामा सोम लीडोज में नजर आ रहे हैं। और खास बात इस फिल्म की ये है कि सनी डियोल और अक्षय खन्ना लगभग 3 दशक बाद एक साथ स्क्रीन शेयर करने वाली है। एक कोर्टरूम थ्रिलर है जहां सिर्फ केस ही नहीं बल्कि हर डायलॉग और हर आर्गुमेंट भी ऑडियंस को एंगेज रखता है। इक्का रिलीज हो चुकी है 10 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर। तो दोस्तों अगर आपको इंटेंस कोर्टरूम ड्रामा और

दोस्तों, अब कार्यक्रम के अंतिम में सुनते हैं एक दमदार गीत। आप सुनेंगे बतला हाउस से साकी साकी, जिसे गाया है तुलसी कुमार और नेहा कक्कड़ ने।

इसी के साथ ही दोस्तों बॉलीवुड अपडेट और हिंदी फिल्म सॉन्ग्स कार्यक्रम यही समाप्त होते हैं। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz से जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुन पाएंगे वांछो श्रोताओं का समाचार।

इजा आकाशवाणी ईटानगर अनि जुलाई लेट मानी बन अता हुनिबार इरुमा के वांचो चाय का होवांग वांगना होवांगे का हो पाई फाले मंचुई यामी खमे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हिजा ची निंग के न्यूजीलैंड काउंटर पार्ट क्रिस्टोफर लक्जनी ए ऑकलैंड मा अरों ले अनि इंडिया हिया न्यूजीलैंड देश नी ए थाले वन ताई मोट चट ले चू 2030 रंग पों कप ले यात सबन नगा करोल मुंठा रंगगा मोकई ले फंदवा हयाखामा इंडो पैसिफिक मैरिटाइम सत मोट तो तम मोक के बोमा इंडियन नेवी हिया न्यूजीलैंड डिफेंस फोर्स बामा अटाटा तो फोंग ले मोक्सा लंगवाई हले आरों पाई मा लीडर्स नी ए हले मोक्कम खांगे रीजन फन नामै हैलेङाइ के बोमा चावान लोंखो खुइखप मोटचु जाटाइ अनतोले इंटरनेशनल ऑर्डर टोले मोक्साइ लेवनले चीफ सेक्रेटरी मनीष कुमार मनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जॉइंट सेक्रेटरी निशा तिवारी मा अपाके इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम मीटिंग ओखमले हयतिम इबा ए चोंके टीचन ए थम ओबकु जोपोलिटिक तो आंगले केनी पान्योर लोवर सियांग बोमा इसियांग डिस्ट्रिक्ट तोले पाउले अहम को चंके हया होशु खोके मा अपोके मा चीफ सेक्रेटरी ए अरुणाचल प्रदेश मा आया के रंगपो 2026 मा चोंके रंगवा टीचन बामा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आंग ड्राफ्ट मेमोरेंडम खामा जायका टेम्पांग रिंग पोइ लेके बामा वन को बोमा आईएमसीटी थम जायका स्टेट मा होनु होनु तो हले

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे वांचो श्रोताओं का समाचार। अगर आप वांचो श्रोताओं का पूरा कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो आप ट्यून इन कर सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर का मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ तथा DRM 666 किलोहर्ट्ज़ पर, या फिर आप न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप के द्वारा भी हमारे कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं। इस वक्त आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। अब आप सुन पाएंगे कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स और कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुनते हैं बाजीगर फिल्म का टाइटल ट्रैक। इस गीत को गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने।

दोस्तों, कार्यक्रम का अंतिम गीत आपने सुना दरखास्त अरिजीत सिंह और सुनिधि चौहान की आवाजों में। इसी के साथ ही हिंदी फिल्म सॉन्ग्स कार्यक्रम यही समाप्त होते हैं। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज से, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुन पाएंगे इधमिश में श्रोताओं का समाचार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे वांचो श्रोताओं का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। लीजिए, प्रस्तुत है इदुमिश्मी श्रोताओं का कार्यक्रम।
1: ऐचा आकाशवाणी ईटानगर आचला पुचे जे होलो के मानोले नि एतानिजे इदुमिश्मी आहोला के जे दरगालंबो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लुकजोन में ऑकलैंड मने चिचगा महो इनु एजर कैना सु माचे नोलीबा एजर बासु हु मंगा को पावर अभिया में सीलो दगावे अंबवा तिगा बदा आहोगा इगाओ कापि नोलीबा इंडो पैसिफिक आतिकाची माचे छमा आतिकानि में जरगावे लापरगे उखो जता इंडिया ने न्यूजीलैंड में जरगाओ दाने एचकानि में अंबवा तिगा ने इनिया आतिका बुगा जिब्रम्रो याता दाता आतिका एमा खो नोआंगा आखाओ मा बुइन जरगाव अरुन दगादा लाय बदा आहोगा बुरुगे मे आतोर दाबा के पन्यर लोअर सियांग दोने इ सियांग डिस्ट्रिक्ट मा आथुसुवा बा सेंट्रल गवर्नमेंट होम मिनिस्ट्री मा चे जॉइंट सेक्रेटरी निस्ता तिवारी मे छिनला आजारम ब्रगो अरुणाचल प्रदेश चीफ सेक्रेटरी मनीष कुमार गुप्ता मे बुनी ईटानगर माने चौगा महो डिस्ट्रिक्ट मोमाची में सेंट्रल गवर्नमेंट का मेमोरेंडम आजोप्रा हाथी एंड चीफ सेक्रेटरी में अथुसुगा चिदा आहोगा सेंट्रल माची आजानम्रो में बुरुचा मामा अथुसुगा बची पोआ चिचगा पा सेंट्रल का शो ने आरुगामी मा हरुची नाला ने मेमोरेंडम आजोप्रा हाथी का नाव के बने अरुंधा डिपार्टमेंट आनप्रो में इसी लाके जगह एक बुखा बुआ इगावे लिवलिनी माचिनी लिपा

उगा हाथ जी ना ने चिप सेक्रेटरी में लाते बता आओगा अब ने आतिकाची डेमोक्रेसी प्रा आखा कुछ हुए यो इलेक्शन माचे जोचु यहाँ इमने इलेक्शन मा दिया इमोन नंबरो ची राइट हाँ आई तो ने इलेक्शन माचे जोता माथु मालूम ने आतिकाची इमो के बने आसला जी का एक जो के हुए अरुणदगा दा ने अरुणाचल प्रदेश गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर के टी पारनायक में बुनी ईटानगर माचे लॉकडाउन मा जिगने पॉलिटिकल पार्टी आलम्रो दोने इलेक्शन मा दया आलम्रो ची राइट ची पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अखगा मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माने चिचाय बमा हो लाई बदा आ होगा इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी दोने इलेक्शन मैनेजमेंट IIIDEM को माने अरुणाचल प्रदेश चीफ इलेक्टोरल ऑफिस माची में राजीव गांधी यूनिवर्सिटी को आरोगा गने अखानेगा कॉन्फ्रेंस मा इंडिया टिका एम माचे असुन तार होया चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर आजालम्रो दोने साउथ अफ्रीका लाप्रागे अहुताची आती वो खोमाचे आजालम्रो मेबु अरुण बया बदा आहोगा लाका दंगा इलेक्शन अखावमा यतान दता अरमाची आजालम्रो में प्या जोगा वे अरुण दगा दाने गवर्नर में लाओं बदा आहोगा ऑल टाइ कंटी सिंगपोर स्टूडेंट्स यूनियन में बुनी नाम साई माने इनवल फेलिसिटेशन प्रोग्राम अखागे ने लिबाचा एग्जाम मा प्रांड आया मैं आलम्रो प्राइस अपिगा दू मा डिप्टी चीफ मिनिस्टर चौना मैन में चिचाई बने ताई खाम ती सिंग फो इमो में बहा आयुठु चिको ने इन नगा जा आतो चे दो ने किसा प्रा कल्चर इचुन दो लिजिगा मी बुजी ना लाई बदा आहोगा आयु आलम्रो में नाता नबाचे आतो चे दो एको बेथो दो ने बहा चे इचुन दो नुजिम ना ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने लगा ने आतिबु के बने हुगारु बा इमो लंबे चे ताजो है जो ऐसे के ने अखाची ना लाओ बादा आहोगा अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट में चे सेकेंडरी एजुकेशन डायरेक्टर तान्यांग ताताक में लानिया अरुणाचल प्रदेश स्टेट स्काउट्स दोने गाइड्स फेलोशिप में आम ऐसे के ने अहम बयागा ब्रू में तंदो अतो डागे बा कई पंजोर डिस्ट्रिक्ट में चे अनाशा लंबो अरुगा चिदा लाने अरुणाचल प्रदेश भारत स्काउट्स दोने गाइड्स ट्रेनिंग कमिश्नर केम्पी पाकाम मैम या चुलिया तिको ची एम एल ए तोको तातुंग अतचा हाथे बदा आहोगा ईशियांग एस पी पंकज लाम्बा में लाने डिस्ट्रिक्ट पुलिस में पासीगा जवाहरलाल नेहरू कॉलेज गो आरोगा गने आ कॉलेज माचे कटोरू का नि आजो आहितया है जानू खे नि के बने पुलिस जो आहित बाजिगा ट्रेनिंग आएगा दा ला होगा आ इंटर्नशिप प्रोग्राम है आ थालापुची जवाहरलाल माची ने आ चलापुची एरोमाची ने लीबा आखने का ला दा ला होगा पापुं परे डिस्ट्रिक्ट लापरा के अरुणाचल प्रदेश माची होलोयू डिस्ट्रिक्ट मा आयो ब्रम्ब्रो अरुणामया अबुली जवाहरलाल ने ईटानगर मीटरोलॉजिकल सेंटर माच में ला होगा इंडिया ने इंग्लैंड एबगाची इम्तान दोगे बने टी ट्वेंटी इंटरनेशनल क्रिकेट मैच है साउथहैम्पटन आतिकोचे योतिलेता बॉल स्टेडियम मने अबु न्यामो तो इंग बाजी महुआ ने अखापगाम बोधा ला होगा फीफा वर्ल्ड कप मा मैच दोबुशी बहुआ ने माइकल मेरिनो में गोल गे हागे ने स्पेन में बेल्जियम है कानिक है गोल मने आने गए ने सेम फाइनल मा फ्रांस गो एमगाई बौदा लगा स्पेन के बने गोल खेगे तो है एफ रुइस में हा बमहो बेल्जियम के बने है कितलायरे में हा बदा आओगा नॉर्वे ने इंग्लैंड एबगाची मैच है अनानामा कानी वजन ने असुर मिलमा खगा महो अर्जेंटीना ने स्विट्जरलैंड एबगाची क्वार्टर फाइनल मैच है अना नामा तारो बजन असुम मिलमा हो ने खगा दा ला होगा एतानी ईद मिशमी आहो अली माओ नोबाए ए चा आकाशवाणी ईटानगर डिब्रुगढ़ नाली ईद मिशमी प्रोग्राम मा एचमता आशे अहोसो खिया महो एतानी हेन्दो ममता मेलो ची चाशे ची अहुजी

0: दोस्तों अभी आप सुन रहे थे इदुमिश में श्रोताओं का समाचार। इदुमिश में श्रोताओं के आगे के कार्यक्रमों को आप सुन सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर का मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा डीआरएम 666 किलोहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज से जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों हम शुरू करेंगे कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स, लेकिन उससे पहले लेते एक छोटा सा ब्रेक।
1: सुनिए सुनिए सुनिए कचरा जी, अब जरा संभल के, क्योंकि अब आने वाला है सफाई का सबसे बड़ा मुकाबला। जी हाँ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026
2: 13th ईटानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी यूथ एसोसिएशन लेकर आ रहा है बैटल ऑफ 20 वार्ड्स, जो होगा 10th जुलाई 2026 से 25th अगस्त 2026 तक। अब होगा मुकाबला, कौन सा वार्ड होगा सबसे क्लीन, सबसे ग्रीन और बनेगा राजधानी ईटानगर का स्वच्छ चैंपियन। और हाँ, जीतने वाले वार्ड के लिए है 5 लाख का ग्रैंड कैश प्राइज।
1: कॉर्पोरेटर साहब, फाइल और मीटिंग तो चलती रहेगी।
2: अब ग्लोव्स पहनिए, झाड़ू उठाइए और अपने वार्ड को चैंपियन बनाइए।
1: और ईटानगर के नागरिकों, आपका एक छोटा सा कदम हमारी राजधानी ईटानगर को बना सकता है और भी सुंदर और भी स्वच्छ।
2: तो अब कचरा हटाइए, वार्ड चमकाइए और जीतिए 5 लाख का कैश प्राइज।
1: रजिस्ट्रेशन और जानकारी के लिए संपर्क करें 9366693170 या 9402877126 पर।
2: झाड़ू घुमाओ, वार्ड चमकाओ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026, स्वच्छ राजधानी हमारी जिम्मेदारी।

इसी के साथ ही दोस्तों हमने शुरू कर लिया है कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स और कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन पा रहे हैं राजा हिंदुस्तानी फिल्म से उदित नारायण की आवाज में आई हो मेरे जिंदगी में।

दोस्तों, इस खूबसूरत गीत के साथ ही हिंदी फिल्म सॉन्ग्स कार्यक्रम यही समाप्त होते हैं। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz से जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से कुछ ही देर बाद यानी 4:20 पर आप सुन पाएंगे थांगसा श्रोताओं का समाचार। साथ ही बता दूं दोस्तों, इसी के साथ ही हम आज की दूसरी प्रसारण सभा के समापन पर आ पहुंचे हैं। उम्मीद करती हूं इस सभा में प्रसारित सभी कार्यक्रम आपको रोजाना की तरह बेहद पसंद आए होंगे। इस सभा के कार्यक्रमों को बिना किसी रुकावट के आप तक पहुंचाने में आज हमारे साथ थे स्टूडियो तथा अचपीते में मौजूद सहकर्मी सहित प्रसारण निष्पादक गैर तथा तकनीकी अभियंता तिम। साथ ही बता दोस्तों, इसी तरह के बेहतरीन कार्यक्रमों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा हमारी आज की तीसरी प्रसारण सभा में शाम के 4:25 से लेकर रात्रि के 9:30 तक। और तीसरी प्रसारण सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाएंगे आपके अपने RJ नीलम। तो दोस्तों, अब मुझे यानी आपके रेडियो साथी RJ दुनिया को दीजिए इजाजत और सुनते रहे अरुण FM 103.1 MHz जहां होती है दिल से दिल की बात।

मेर आकाशवाणी ईटानगर डिब्रुगढ़ मजूसा डुबा रंगकड़ो जुलाई लिंग रंगसासी तारीख बांग हजनेरा खकड़ोपा और मचौरंग जा सौसाइटार मन कचाई रुंगलंग रोकोहंग कोनका मामाइर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रई न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर ल्यूक्शन न्यूजीलैंड कैपिटल ऑकलैंड हानंग मचौसा रफान रौरे मूंग नईतुंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रोमब तचेन रम गुड्स एंड सर्विसेस काउनंग एनुअल बाय लेटर ट्रेड प पाम तुंग डबल तयांग रफान त परजु मीटिंग नंग मूंग नईर थोवानी सी पाम लई तुंग परजु मूंग नई तुंग रोम प तचेन मनई इंडो पेसिफिक मेरीटाइम कोऑपरेशन रोम प तचेन म मोरो लामलो लाममरा परजु इंडियन नेवी वनई न्यूजीलैंड डिफेंस फोर्स वन तुंकांग नंग होहाई रकुमोदब रफांत आरो मुंग नई वांग वालांग वानेर सोवरेंटी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी प वोंकांग रंग आरिंग रार मांडब रफांत अरुणाचल प्रदेश चीफ सेक्रेटरी मनीष कुमार र मनीषा आचोंग सोरकारी वांग मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जॉइंट सेक्रेटरी निस्ता तिवारी जामने आपी टीम महें जाम रफांत इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम रो केई पान्योर डिस्ट्रिक्ट नांगनै लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट नांगला परम इ सियांग डिस्ट्रिक्ट ता नांग अने हियो खाम लेम त नांग तांचोंग वांगरोंग तांवांग उन्तान थेंजान त परप राइगत मीटिंग नांग चीफ सेक्रेटरी र ड्राफ्ट मेमोरेंडम टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन अरुणाचल प्रदेश रेन एंड फ्लड डैमेज 2020 कमोंग नांग रफान त नांगमा

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्स, जहां होती है दिल से दिल की बात। और आप सभी श्रोता मित्रों का इस तीसरी प्रसारण सभा में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। इस सफर में आपके साथ हैं आपकी अपनी रेडियो साथी नीलम। श्रोता मित्र, आपको बता दें कि इस प्रसारण सभा की शुरुआत करने से पहले आरजे दुनिया का बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो की जिम्मेदारी मुझे सौंपने के लिए और मेरे परिचय के लिए। आपको बता दें कि इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4:28 हो रहे हैं। तो चलिए अब सफर का आरंभ करते हैं दैनिक कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर के साथ।
1: Good evening, Itanagar.

श्रोता मित्र, आज 11 जुलाई है और जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि आज दुनिया भर में विश्व जनसंख्या दिवस यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जा रहा है। विश्व जनसंख्या दिवस पर ये विचार आवश्यक है कि पृथ्वी के सीमित संसाधनों और बढ़ती जनसंख्या के बीच संतुलन कैसे स्थापित किया जाए। जल संकट, वायु प्रदूषण, जैव विविधता का क्षरण और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि से गहराती जा रही है। महात्मा गांधी का ये कथन वर्तमान दौर में बिल्कुल सत्य होता हुआ प्रतीत हो रहा है कि पृथ्वी हर व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन देती है, लेकिन हर व्यक्ति के लालच को नहीं। जिस पृथ्वी ने मानव को जीवन, जल, जंगल और जैव विविधता का अनमोल उपहार दिया, उसी पृथ्वी पर आज विकास की अंधी दौड़ और जनसंख्या के निरंतर विस्तार ने अस्तित्व का संकट जी हां खड़ा कर दिया है। हर वर्ष 11 जुलाई को मनाए जाने वाला विश्व जनसंख्या दिवस केवल जनसंख्या वृद्धि के आंकड़ों का स्मरण कराने का अवसर नहीं है, बल्कि ये उस गंभीर प्रश्न पर विचार करने का भी दिन है कि क्या पृथ्वी पर उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन बढ़ती मानव आबादी का भार अनंत काल तक वहन कर सकेगा। श्रोता मित्रों, आईएसी के साथ ही आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर का ये पहला गीत।

श्रोता मित्र, इस खूबसूरत गीत को आप सुन रहे थे वीर ज़ारा फिल्म से, जिसे आवाज दी है उदित नारायण, अलका, माफ कीजिएगा, उदित नारायण और लता मंगेशकर ने। श्रोता मित्र, आज जब जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, जल संकट, वायु प्रदूषण, जैव विविधता का क्षरण और प्राकृतिक आपदाएं मानव सभ्यता को चुनौती दे रही हैं, तब ये स्वीकार करना होगा कि इन समस्याओं की जड़ में अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि भी एक महत्वपूर्ण कारण है। यदि समय रहते जनसंख्या और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ियों को हरित भविष्य नहीं बल्कि संसाधनों के लिए संघर्षरत संसार विरासत में मिलेगा। विश्व की जनसंख्या ने बीते 100 वर्षों में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की है। वर्ष 1900 में विश्व की आबादी लगभग 1.6 अरब थी, 1950 तक ये 2.5 अरब हुई और 2022 में संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व की जनसंख्या 8 अरब के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर गई। अनुमान है कि 2050 तक लगभग 9.7 अरब तक पहुंच सकती हैं। भारत, जिसने वर्ष 2023 में चीन को पीछे छोड़कर विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बनने का स्थान प्राप्त किया, आज लगभग 1.46 अरब लोगों का घर है। आपको बता दें कि भारत की लगभग 65% आबादी 35 वर्ष यानी कि 35 ईयर्स से कम आयु की है, जो एक विशाल जनसंख्या की शक्ति है। किंतु यह जनसंख्या तब चुनौती बन जाती है जब उसके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, स्वच्छ जल और स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराना कठिन हो जाए। जनसंख्या अपने आप में समस्या नहीं है, समस्या तब उत्पन्न होती है जब संसाधनों की

उपलब्धता और जनसंख्या वृद्धि के बीच संतुलन बिगड़ जाता है। यही असंतुलन आज पर्यावरणीय संकट का सबसे बड़ा कारण बन चुका है। प्रत्येक नया व्यक्ति भोजन, पानी, ऊर्जा, आवास और परिवहन की आवश्यकता लेकर आता है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जंगल काटे जाते हैं, नदियों का दोहन होता है, खनिज निकाले जाते हैं और जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक उपयोग किया जाता है। जी हाँ श्रोता मित्रों, आप जुड़े हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर, जिसके तहत आज हम बात कर रहे हैं विश्व जनसंख्या दिवस की। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए फिलहाल हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम में ये अगला गीत।

श्रोता मित्रों, आप सुन रहे थे सपने फिल्म का ये खूबसूरत गीत हिमा सरदेसाई मलेशिया वासुदेवन की आवाजों में। आपको बता दें कि यदि प्रत्येक नागरिक ये संकल्प ले कि वो प्रकृति से उतना ही लेगा जितना आवश्यकता है और जितना संभव हो उतना उसे लौटाएगा, तो हरित भविष्य केवल एक स्वप्न नहीं रहेगा बल्कि आने वाली पीढ़ियों की जीवंत वास्तविकता बनेगा। श्रोता मित्रों, इसी के साथ ही कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर का आज का ये अंक यहीं पर संपन्न होता है। आपको बता दें कि आगे कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार और 5 बजते ही आप सुन पाएंगे नुक्ते श्रोताओं का समाचार। फिलहाल सुनते रहे ये गीत।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओकलैंड में भारत प्रवासी समुदाय को संबोधित किया। कहा, न्यूजीलैंड में भारत समुदाय दोनों देशों के बीच साझा सफर का एक अहम हिस्सा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव मनीष कुमार ने गृह मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त सचिव निष्ठा तिवारी के नेतृत्व वाले अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल के साथ समीक्षा बैठक में भाग लिया। अरुणाचल प्रदेश सरकार के माध्यमिक शिक्षा निदेशक तान्यांग टाटा के मार्गदर्शन में स्टेट स्काउट्स एंड गाइड फेलोशिप ने कई पान्योर जिले की निपको कॉलोनी में हाल में बाढ़ से प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल टाइट केटी पारनायक ने ईटानगर स्थित लोकभवन से आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय वर्चुअल सम्मेलन में भाग लिया। अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिला पुलिस अधीक्षक पंकज लाबा के नेतृत्व में ईस्ट सियांग जिला पुलिस ने जवाहरलाल नेहरू कॉलेज पासीघाट के सहयोग से विद्यार्थियों के लिए आयोजित 3 सप्ताह के पुलिस इंटर्नशिप कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम से स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरि का जलावतरण किया। कहा, भारत एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लैक्सन द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। ऑकलैंड में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्व देशों के प्रभारी सचिव रुदेंद्र तंडर ने बताया है कि आगामी 4 वर्षों में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा भी मंजूर की गई है। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है।
1: दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय ये दर्शाता है कि हम अपने रिश्तों के सभी क्षेत्रों में संबंध मजबूत कर रहे हैं, विशेष रूप से रक्षा तथा सुरक्षा के क्षेत्र में और राजनीतिक स्तर पर।
0: इससे पहले दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद रक्षा, सुरक्षा और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े

0: 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने के लिए भी सहमत हुए हैं।
1: वैश्विक मंच पर भी भारत और न्यूजीलैंड भरोसेमंद साझेदार और करीबी मित्र है। हमारा मानना है कि वर्तमान समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए यूएन सहित अन्य वैश्विक संस्थानों में रिफॉर्म आवश्यक है। आतंकवाद के विषय पर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ाने के लिए आज हमने ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का गठन किया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों का महत्वपूर्ण आधार है। ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा है कि भारत और न्यूजीलैंड के संबंध साझा विरासत, स्थायी मित्रता, समान लोकतांत्रिक मूल्यों और उज्जवल भविष्य के साझा संकल्प पर आधारित है।
1: हमने न्यूजीलैंड से भी बहुत कुछ सीखा है और अब भी सीख रहे हैं। न्यूजीलैंड दुनिया का वो देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग का राइट दिया था। भारत भी आज विमेन लेड डेवलपमेंट के मंत्र के साथ महिलाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल रहा है।
0: अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव मनीष कुमार ने गृह मंत्रालय, भारत सरकार की संयुक्त सचिव निष्ठा तिवारी के नेतृत्व वाले अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल के साथ समीक्षा बैठक में भाग लिया। दल द्वारा वर्षा और फ्लैश फ्लड से हुई क्षति का मौके पर आकलन करने के लिए कई पान्योर, लोअर सियांग और ईस्ट सियांग जिले का दौरा किया जा चुका है। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने अरुणाचल प्रदेश वर्षा एवं बाढ़ क्षति 2026 से संबंधित भारत सरकार को भेजे जाने वाले प्रारूप ज्ञापन की समीक्षा की। इस दौरान अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल ने निष्कर्षों, राज्य सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए गए क्षति आकलन तथा उससे संबंधित दस्तावेजों पर विस्तार से विचार विमर्श किया। मुख्य सचिव ने इससे संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि वे शेष आवश्यक जानकारी प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराएं, ताकि अंतिम एवं पूर्ण ज्ञापन अगले बुधवार तक भारत सरकार को भेजा जा सके। अरुणाचल प्रदेश सरकार के माध्यमिक शिक्षा निदेशक तान्यांग ताताक के मार्गदर्शन में स्टेट स्काउट्स एंड गाइड फेलोशिप ने कई पान्योर जिले के निपको कॉलोनी में हाल ही में बाढ़ से प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की है। इस पहल का नेतृत्व भारत स्काउट्स एंड गाइड की राज्य प्रशिक्षित आयुक्त गाइड्स केम्पी पाकाम द्वारा किया गया। यह आर्थिक सहायता याचुली विधानसभा क्षेत्र के विधायक तोगो तातुंग को औपचारिक रूप से सौंप दी गई है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी परनायक ने ईटानगर स्थित लोकभवन में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय वर्चुअल सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन का आयोजन अरुणाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट के मार्गदर्शन में तथा दोईमुख स्थित राजीव गांधी विश्वविद्यालय के सहयोग से किया। अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा है कि वर्तमान चुनौतियों की स्पष्ट समझ और अधिक प्रभावी सुधारों और उत्तरदायी नीतियों का निर्माण संभव होता है। उन्होंने सभी हितधारकों से आग्रह किया है कि वे संवेदनशीलता, सहानुभूति और समावेशी दृष्टिकोण के साथ कार्य करें, ताकि सुशासन जनकेंद्रित रहे और प्रत्येक नागरिक की आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी बनी रहे। ईस्ट सियांग जिला पुलिस अधीक्षक पंकज लांबा के नेतृत्व में ईस्ट सियांग जिला पुलिस ने जवाहरलाल नेहरू कॉलेज पासीघाट के सहयोग से 42 विद्यार्थियों के लिए आयोजित 3 सप्ताह के पुलिस इंटर्नशिप कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को पुलिस व्यवस्था और औपचारिक न्याय प्रणाली की कार्यप्रणाली से प्रत्यक्ष रूप से परिचित कराना, कानूनी जागरूकता बढ़ाना, पारदर्शिता और नागरिक जिम्मेदारी को प्रोत्साहित करना तथा पुलिस और जनता के बीच बेहतर संबंध स्थापित करना था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम से स्वदेशी स्टिल्ट फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17A का ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा है कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों को मजबूत करके एक सुदृढ़, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। श्री सिंह ने कहा है कि INS महेंद्र गिरी 75% से अधिक स्वदेशी घटकों का इस्तेमाल हुआ है और इससे हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत और बढ़ेगी।
2: जब देश की सुरक्षा पर बात आती है तो हमारी कन्वेंशनल और मॉडर्न दोनों क्षमताएं मिलकर कैसे एक साथ काम करती। ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में इसका बहुत

0: की सटीक उदाहरण था। हमारी आर्म फोर्सेज ने उस ऑपरेशन के दौरान यह दिखाया कि भारत अब न केवल अपनी रक्षा करने में बल्कि आवश्यकता पड़ने पर निर्णायक उत्तर देने में और दुश्मनों का समूल नाश करने में भी पूरी तरह से सक्षम है।
1: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टी20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज शाम 7 बजे से साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। श्रीलंका में इंग्लैंड पुनः सुने श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 से अजय बढ़त बना ली है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में 1 विकेट पर 21 रन से आगे खेलेगा। इससे पहले कल भारतीय टीम ने पहली पारी में 285 रन बनाए थे। फीफा फुटबॉल विश्व कप के तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात 2:30 बजे से नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अंतिम क्वार्टर फाइनल में कल सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इससे पहले स्पेन और फ्रांस सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का शुभारंभ किया। श्री शाह ने युवाओं से पुस्तकालयों में जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा है कि पुस्तकें व्यक्ति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। श्री शाह ने कहा है कि महान क्रांतिकारी और विचारक जयप्रकाश नारायण ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था।
2: किशोरों ने और युवाओं ने अपने रुचि के विषय छान लेने चाहिए और सुने सुनाए ज्ञान की बगैर हमारे रुचि के विषय में जिन्होंने पूरा जीवन खपा दिया है, जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया है, ऐसे लोगों ने जो अपने अनुभव, अपने विचार, अपना चिंतन और चिंतन की व्यवहारिता जो पुस्तकों में अंकित की है उसको पढ़ना चाहिए। ये बहुत बड़ा मौका है दिल्ली के युवाओं के लिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट 32,000 पुस्तक और 1 करोड़ ई बुक का एक्सेस है।
1: जापान के दक्षिणी द्वीपों में आज तूफान बावी के टकराने की खबर है। इस दौरान द्वीपों में तेज हवाएं चली और मूसलाधार बारिश हुई। लगभग 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ तूफान बावी के कल तड़के चीन के जेजियांग प्रांत में टकराने का अनुमान व्यक्त किया गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: This is Akashvani, the news read by Indu Chuku. India and New Zealand today elevated the ties to a strategic partnership and set a 5-year target to double the annual bilateral trade in goods and services to 35,000 crore rupees by 2030, following talks between Prime Minister Narendra Modi and his New Zealand counterpart Christopher Luxon in Auckland. Earlier, speaking during delegation-level talks, Prime Minister Modi said his visit to New Zealand marks a historic milestone in bilateral relations and will give fresh momentum to ties between the two countries. Prime Minister Modi said India and New Zealand can play an important role in strengthening peace, stability and security in the Indo-Pacific region. Mr. Modi thanked the people and leadership of New Zealand for their warmth and support, saying the visit of an Indian Prime Minister after 4 decades reflects the growing strength of the partnership. Speaking on the occasion, the New Zealand Prime Minister announced that India and New Zealand will establish a strategic partnership to provide a broader framework for expanding cooperation across key sectors. Defence Minister Rajnath Singh said today that India is building a strong, self-reliant and future-ready defence force by strengthening both conventional defence capabilities and advanced technologies. He said future wars may employ artificial intelligence and other emerging technologies, but they will ultimately be won by national resolve, courageous soldiers and capable military power. The defense minister said technology and conventional military strength complement each other, and India is committed to excelling in both under the vision of Atmanirbhar Bharat. Mr. Rajnath Singh was addressing the commissioning ceremony of the INS Mahendragiri, the 6th Project 17A Indigenous Stealth Frigate into the Eastern Fleet at the Visakhapatnam today. He said the commissioning marks another milestone in strengthening India's maritime power and indigenous defence capability. Union Home Minister Amit Shah has appealed to the younger generation to connect with libraries, highlighting their significant role in shaping an individual's personality. Inaugurating the Jaya Prakash Narayan Public Library in New Delhi today, Mr. Shah said that Lok Nayak Jaya

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: सुनिए सुनिए सुनिए कचरा जी, अब जरा संभल के, क्योंकि अब आने वाला है सफाई का सबसे बड़ा मुकाबला। जी हाँ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026
1: ईटानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी यूथ एसोसिएशन लेकर आ रहा है बैटल ऑफ 20 वार्ड्स, जो होगा 10 जुलाई 2026 से 25 अगस्त 2026 तक। अब होगा मुकाबला, कौन सा वार्ड होगा सबसे क्लीन, सबसे ग्रीन और बनेगा राजधानी ईटानगर का स्वच्छ चैंपियन। और हाँ, जीतने वाले वार्ड के लिए है 5 लाख का ग्रैंड कैश प्राइज।
0: कॉर्पोरेटर साहब, फाइल और मीटिंग तो चलती रहेगी।
1: अब ग्लोव्स पहनिए, झाड़ू उठाइए और अपने वार्ड को चैंपियन बनाइए।
0: और ईटानगर के नागरिकों, आपका एक छोटा सा कदम हमारी राजधानी ईटानगर को बना सकता है और भी सुंदर और भी स्वच्छ।
1: तो अब कचरा हटाइए, वार्ड चमकाइए और जीतिए 5 लाख का कैश प्राइज।
0: रजिस्ट्रेशन और जानकारी के लिए संपर्क करें 9366693170 या 9402877126 पर।
1: झाड़ू घुमाओ, वार्ड चमकाओ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026, स्वच्छ राजधानी हमारी जिम्मेदारी।

जी हाँ श्रोता मित्र, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर, जहाँ होती है दिल से दिल की बात। और इस सफर में आपके साथ हैं आपकी अपनी रेडियो साथी नीलम। आपको बता दें कि हमारी स्टडी के घड़ी के अनुसार इस वक्त शाम के 5:08 हो रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ ही लीजिए, प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव। श्रोता मित्र, कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। तो चले कार्यक्रम का आगाज करते हैं तमाशा फिल्म के इस खूबसूरत गीत के साथ।

श्रोता मित्र, कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन रहे थे मोहित चौहान की आवाज में तमाशा फिल्म से। उम्मीद है इन गीतों के साथ आप अपने वीकेंड का खूब मजे ले रहे होंगे। श्रोता मित्र, आज भी हम आपके लिए गीतों के साथ एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं। तो चलिए, अब वक्त हो चला है इस खूबसूरत और प्रेरणादायक कहानी का। भरोसे का पुल टूट जाए तो रिश्ते बिखर जाते हैं। जी हां श्रोता मित्र, जानिए कैसे एक बुद्धिमान बढ़ई यानी कि कारपेंटर ने दो लड़ते हुए भाइयों के बीच फिर से प्यार का पुल बनाया। जी हां, भरोसे का पुल जब तक मजबूत रहता है तब तक कोई भी ताकत आपको जुदा नहीं कर सकती। सुंदरपुर नाम के एक खुशहाल गांव में दो सगे भाई रहते थे, रामू और श्यामू। दोनों भाई पास पास के खेतों में खेती करते थे। रामू बड़ा भाई था और श्यामू छोटा। पिछले 40 सालों से दोनों ने मिलकर खेती के सुख दुख साझा किए और एक दूसरे की मदद की, लेकिन एक छोटी सी गलतफहमी के कारण दोनों में एक बड़ा झगड़ा हो गया। ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों ने हफ्तों तक एक दूसरे से बात नहीं की। उनके बीच का पुराना प्यार और भरोसा पूरी तरह खत्म हो चुका था। एक सुबह रामू के घर एक बूढ़ा बड़े आया। उसके पास लकड़ी काटने के औजार थे। बड़े ने कहा, भाई मुझे काम की तलाश है, क्या आपके पास मेरे लिए कोई काम है? रामू ने गुस्से में अपने भाई श्यामू के खेत की तरफ इशारा करते हुए कहा, हाँ मेरे पास तुम्हारे लिए एक बड़ा काम है। कल मेरे छोटे भाई ने नदी का रुख मोड़कर मेरे और उसके खेत के बीच में एक गहरी खाई बना दी। वो मुझसे दूर होना चाहता है। तुम इस लकड़ी के गटर का इस्तेमाल करो और मेरे खेत के किनारे एक 8 फीट ऊंची लकड़ी की दीवार खड़ी कर दो। मैं उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता। बड़े ने शांति से सब सुना और कहा, मुझे स्थिति समझ में आ गई है। मैं ऐसा काम करूंगा कि आप खुश हो जाएंगे। रामू बड़े को सामान देकर बाजार चला गया। बड़े ने तुरंत अपना काम शुरू कर दिया। उसने नाप लिया, लकड़ी काटी और हथौड़ी की आवाज से पूरा खेत गूंज उठा। श्रोता मित्र, इसके आगे क्या होता है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको सुनवाना चाहेंगे कार्यक्रम में एक और गीत।

जानवर फिल्म का ये गीत सुनिधि चौहान और उदित नारायण की आवाजों में। श्रोता मित्र, चलिए इस कहानी को आगे जारी रखते हैं। शाम को जब रामू बाजार से वापस लौटा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां कोई 8

जैसे ही श्यामू ने उसके पैर छुए, रामू का सारा गुस्सा पिघल गया। उसने श्यामू को गले से लगाया। दोनों भाइयों को समझ में आ गया कि नफरत से सिर्फ दूरियां बढ़ती हैं। दोनों भाई तुरंत उस बूढ़े बड़े की तरफ मुड़े जो अपना थैला उठाकर जाने लगा था। रामू ने कहा, अरे रुकिए, मत जाइए, हमारे पास आपके लिए और भी बहुत सारे काम हैं, हमारे साथ रुकिए। बड़ई ने मुस्कुराते हुए एक बहुत बड़ी बात कही, मैं रुकना तो चाहता हूँ लेकिन मुझे अभी कई और जगहों पर जाना है। मुझे दुनिया में और भी बहुत सारे भरोसे का पुल बनाने हैं। ये कहकर बड़ई वहां से चला गया। जी हाँ श्रोता मित्रों, जीवन में गुस्सा और अहंकार हमेशा रिश्तों के बीच नफरत की दीवार खड़ी कर देते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो नफरत की दीवारों को गिराकर प्यार और भरोसे का पुल बनाना जानता है। तो श्रोता मित्रों, उम्मीद है ये प्रेरणादायक छोटी सी कहानी आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। तो चलिए इसी के साथ ही अब हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का ये आखिरी गीत।

0: श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे इवनिंग ड्राइव कार्यक्रम का ये अंतिम गीत वॉर टू फिल्म से सचेत टंडन, साज भट्ट और अन्य की आवाजों में। और इसी के साथ ही कार्यक्रम इवनिंग ट्रैप कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। श्रोता मित्र, आपको बता दें कि हिंदी फिल्मी गीतों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, तो आप बने रहे हमारे साथ यानी कि अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर।
1: Attention, Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
2: पारे हाइड्रो पावर स्टेशन इज करेंटली इन ऑपरेशन। Whenever you hear the warning siren, please move away immediately from the river and all adjoining river banks. When the siren sounds, do not attempt to cross the river or swim in it. Also avoid entering the river bed to collect sand, stones or any other quarry materials. Do not park vehicles in river banks or use the river for washing vehicles. Fishing in the river is strongly discouraged. We also request the public not to organize picnics, gatherings or any other recreational activities in or around the river banks. Even after the water level has gone down, do not camp, stay or set up temporary shelters in river beds or river channels, as water levels can rise suddenly without warning. Your safety depends on staying alert and following precautions. This announcement is issued by Pare Hydro Power Station in the interest of public safety and awareness.
0: जी हाँ श्रोता मित्र, अब वक्त हो चला है कार्यक्रम शाम की महफिल का। जी हाँ दोस्तों, शाम की महफिल, प्यार भरा एक खूबसूरत संगीत का सफर। आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ चुनिंदे प्यार भरे नगमे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको सुनवा रहे हैं पापा कहते हैं फिल्म का ये बेहद ही खूबसूरत गीत, जिसके बोल हैं, प्यार में होता है क्या जादू, तू जाने या मैं जानू, रहता नहीं क्यों दिल पर काबू, तू जाने या मैं जानू। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये पहला गीत।

0: जी हाँ श्रोता मित्रों, आप सुन रहे थे सैयारा फिल्म का ये बेहद ही लोकप्रिय गीत। जी हाँ, विशाल मिश्रा और हंसिका पारेख की आवाजों में। आपको एक बार फिर से बता दें कि आप बने हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम शाम की महफिल का। श्रोता मित्रों, फिलहाल हम ले रहे हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
1: सुनिए सुनिए सुनिए कचरा जी, अब जरा संभल के, क्योंकि अब आने वाला है सफाई का सबसे बड़ा मुकाबला। जी हाँ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026
2: 13th ईटानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी यूथ एसोसिएशन लेकर आ रहा है बैटल ऑफ 20 वार्ड्स, जो होगा 10th जुलाई 2026 से 25th अगस्त 2026 तक। अब होगा मुकाबला, कौन सा वार्ड होगा सबसे क्लीन, सबसे ग्रीन और बनेगा राजधानी ईटानगर का स्वच्छ चैंपियन। और हाँ, जीतने वाले वार्ड के लिए है 5 लाख का ग्रैंड कैश प्राइज।
1: कॉर्पोरेटर साहब, फाइल और मीटिंग तो चलती रहेगी।
2: अब ग्लोव्स पहनिए, झाड़ू उठाइए और अपने वार्ड को चैंपियन बनाइए।
1: और ईटानगर के नागरिकों, आपका एक छोटा सा कदम हमारी राजधानी ईटानगर को बना सकता है और भी सुंदर और भी स्वच्छ।
2: तो अब कचरा हटाइए, वार्ड चमकाइए और जीतिए 5 लाख का कैश प्राइज।
1: रजिस्ट्रेशन और जानकारी के लिए संपर्क करें 9366693170 या 9402877126 पर।
2: झाड़ू घुमाओ, वार्ड चमकाओ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026, स्वच्छ राजधानी हमारी जिम्मेदारी।

0: Attention! Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: दिल से दिल तक बात पहुँचे, मिलते मिलते सनम हो।
2: गीत संगीत,
3: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
2: प्यार भरे अल्फाजों में,
3: दिल से दिल की बात,
2: बस आपके नाम।
3: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

आप सभी सुनने वालों का कार्यक्रम शाम की महफिल में पुनः स्वागत है। श्रोता मित्र, चले कार्यक्रम में अब हम अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं मेट्रो इन दिनों फिल्म से अरिजीत सिंह की आवाज में।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: जी हाँ श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे कार्यक्रम शाम की महफिल का अंतिम गीत एयरलिफ्ट फिल्म से अरिजीत सिंह की आवाज में। श्रोता मित्र, इसी के साथ ही कार्यक्रम शाम की महफिल का आज का ये सफर यानी कि आज का ये अंक यहीं पर संपन्न होता है। आपको बताना चाहेंगे कि विश्व जनसंख्या दिवस यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के अवसर पर लीजिए प्रस्तुत है एक विशेष कार्यक्रम।
1: नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर अरुण FM 103.1 MHz और मैं हूं आपकी होस्ट बिक्की रिलुम, लेकर हाजिर हूं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम। हर साल 11 जुलाई को पूरी दुनिया में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य बढ़ती हुई जनसंख्या से जुड़े मुद्दों के प्रति लोगों को जागरूक बनाना है, साथ ही फैमिली प्लानिंग, रेस्पॉन्सिबल पेरेंटहुड, मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ और पॉपुलेशन स्टेबिलाइजेशन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लोगों को सही जानकारी देना भी इसका एक अहम उद्देश्य है। इस चर्चा के माध्यम से हम जानेंगे कि फैमिली प्लानिंग का सही मतलब क्या है, इसके क्या फायदे हैं और किस तरह एक प्लान्ड फैमिली माँ, बच्चे और पूरे समाज के बेहतर भविष्य में योगदान देती है। इसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर हागे केदन जी, जो अर्बन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ईटाफोर्ट ईटानगर में मेडिकल ऑफिसर और रूटीन इम्यूनाइजेशन RI इंचार्ज के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ, फैमिली वेलफेयर और कम्युनिटी हेल्थ के क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। डॉक्टर केदन हागे जी, आकाशवाणी ईटानगर में आपका हार्दिक स्वागत है।
2: जी धन्यवाद, मुझे यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे मुझे बुलाया, मैं बहुत प्रिविलेज फील कर रहा हूँ यहाँ पे आकाशवाणी ईटानगर पे आके, तो थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए यहाँ पे।
1: डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे श्रोताओं के लिए ये जानना जरूरी होगा कि हर साल 11 जुलाई को ही वर्ल्ड पॉपुलेशन डे क्यों ऑब्जर्व किया जाता है, इसके पीछे का बैकग्राउंड या इतिहास और इसका मेन पर्पस क्या है।
2: जी, ये वर्ल्ड पॉपुलेशन डे एक्चुअली किस लिए स्टार्ट किया गया था बोलने से, ये जो एक्चुअली 1987 पे जुलाई 11, 1987 पे हमारा वर्ल्ड पॉपुलेशन टोटल जो अराउंड 5 बिलियन हिट हो गया था, वो काफी उस समय में अलार्मिंग लग रहा था। तो वो अर्जेंसी को देखते हुए वो रैपिड जो डेमोग्राफिक ग्रोथ हो गया था, मतलब 5 बिलियन पॉपुलेशन हो जाने के कारण, तो उसले ये जो UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे को इस्टेब्लिश किया, तो 1989 पे उसे इस्टेब्लिश किया है, ये ऑफिशियली एडॉप्शन दिया है 1989 को। फिर अनदर वन ईयर के बाद दिसंबर 1990 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने उसे ऑफिशियली एडॉप्शन देके उसे मतलब हर साल ऑब्जर्व करने के लिए अलाउ कर दिया था। उसके बाद से एवरी ईयर जुलाई 11 को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। और इसके इम्पोर्टेंस बोलने से हम लोग जानना भी जरूरी है कि किस कारण से हम लोग मनाते हैं, इसका क्या इम्पोर्टेंस है। हम लोग पब्लिक लोग सोचते हैं कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मीन्स जस्ट पॉपुलेशन को कंट्रोल करना ही है और कुछ नहीं है, पॉपुलेशन को डिक्रीज करना है, सिर्फ उतना तक ही सोचता है। बट बियॉन्ड डेट ऑल्सो बहुत सारा मतलब ऐसे प्लान करके सोच करके ये डे को ऑब्जर्व करने के लिए डिसाइड किया गया था। तो जैसे कि कुछ रीजन है, जैसे कि उसमें ये फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करने के लिए साथ साथ में और हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर को ज़्यादा एक्सेसिबल बनाने के लिए, ताकि इंडिविजुअल्स लोग अपने इन्फॉर्म्ड रहे।

0: है अबाउट हेल्थ रिलेटेड चीज़ को, एजुकेशन रिलेटेड चीज़ को। तो ज़रा इन्फॉर्म रहने से ज़रा उन लोग लिटरेट रहेंगे, ज़रा मतलब नॉलेजेबल रहेंगे, तो उस हिसाब से उन लोग अपना डिसीजन मेकिंग भी कर सकते हैं इंडिविजुअली भी। उसके बाद में ये सेकेंड पॉइंट में जैसे कि एडवांसिंग जेंडर इक्वलिटी हो गया, तो उसमें जेंडर इक्वलिटी जो फीमेल्स जो फेस करते हैं आजकल के ज़माने पे, मतलब ये जो एक डेमोग्राफिक ट्रेंड एंड मैटरनल वेलबींग पे क्लोजली लिंक्ड है, ये जो जेंडर इक्वलिटी जो, तो उसे भी हम लोग मतलब जेंडर इक्वलिटी को एडवांसिंग करने के लिए एक मोटो में था। तो उसके बाद फिर अनदर पॉइंट भी है कि उसे मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंकरेज करने के लिए
1: जी।
0: तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंकरेज किस तरीका से बोलने से उसे जान मतलब अंडरस्टैंड करना कि ओवर पॉपुलेशन किस तरह से इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं, अर्बनाइजेशन लाते हैं, उसके बाद रिसोर्स मैनेजमेंट को किस तरह से अफेक्ट करते हैं, उस तरह से मतलब लाइक आई मीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी इंकरेज करने के लिए ये भी एक तो एक मोटो था। फिर अनदर है एम्पावरिंग यूथ हो गया, यूथ को मतलब लाइक आई मीन यंगर जनरेशन को हेल्थ केयर, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर में ज़रा फोकस करना, यूथ लोग को और आगे बढ़ाने के लिए, तो ये सब वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के अंदर में मतलब फोकस किया जाता है। सिर्फ पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं करके बाकी फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करना, जेंडर इक्वलिटी को बढ़ाना, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंकरेज करना, यूथ को एम्पावर करना, ये सब भी उसके अंदर आ जाते हैं।
1: बहुत ही अच्छी और इन्फॉर्मेटिव बात आपने बताई डॉक्टर साहब। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सिर्फ बढ़ती हुई पॉपुलेशन की बात करने का दिन नहीं है, बल्कि लोगों को रेस्पॉन्सिबल पेरेंटहुड और फैमिली प्लानिंग के प्रति जागरूक करना भी एक महत्वपूर्ण अवसर है। डॉक्टर साहब, अभी इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है। हमारे समाज में आज भी कई लोग फैमिली प्लानिंग को लेकर थोड़ा कन्फ्यूज रहते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि इसका मतलब सिर्फ बच्चे पैदा करना या बच्चों की संख्या कम रखना होता है। आखिर फैमिली प्लानिंग का सही मतलब क्या है?
0: जी, अभी मैंने बताया था कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सिर्फ ये पॉपुलेशन को कमती करना, सिर्फ एक ही बच्चे में फोकस करना, सिर्फ ये बात नहीं है। इसमें मतलब लाइक फैमिली प्लानिंग और बाकी अलग अलग पॉइंट्स भी आ जाते हैं। तो फैमिली प्लानिंग अभी हम लोग पे अगर बात करने से, फैमिली प्लानिंग के एग्जैक्ट मीनिंग बोलने से, बर्थ कंट्रोल को तो कंट्रोल तो करना ही है, बट बियॉन्ड डेथ ऑल्सो उसमें मतलब बहुत सारा एरियाज पे कवर करते हैं, जैसे कि मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ और फैमिली बिल्डिंग एंड इनफर्टिलिटी हो गया, फिर एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्वलिटी हो गया। तो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ पे क्या क्या है बोलने से, उसमें जैसे कि हम लोग फोकस करते हैं कि ऑप्टिमल स्पेसिंग रखना चाहिए, मतलब दो बच्चों के बीच में, दो प्रेगनेंसीज के बीच में ऑप्टिमल स्पेसिंग बोलते हैं। तो WHO हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वो रिकमेंड करते हैं कि एटलीस्ट 2 to 3 years का गैपिंग रखना चाहिए। तो वो क्यों बोलने से, उसमें मदर को अपने बॉडी को डिलीवरी होने के बाद में अपने बॉडी को रिकवर होने के लिए टाइम देते हैं, टाइम मिल जाता है रिप्लेनिस वाइटल न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स बदन से जो बहुत गायब हो गया था उसको भी वापस रिप्लेनिस करने का टाइम मिल जाते हैं। इवन प्रॉपर स्पेसिंग देने से दो बच्चों के बीच में वो प्री मेच्योर बर्थ एंड लो इन्फेंट वेट को भी कंट्रोल रखते हैं। तो ये सब फैक्टर्स है। उसके बाद में हो गया फिर एक सेविंग लाइफ्स भी, एक काइंड ऑफ सेविंग लाइफ्स भी हो गया। तो जैसे कि वो अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज हो गया, तो उसको मतलब लाइक कंट्रोल कराना नॉलेज दे के, फिर उसके बाद में अनसेफ एबॉर्शन के जो फ्रिक्वेंसी होते हैं उसे भी कमती कराना, तो मैटरनल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मतलब जो माँ हो गया, इन्फेंट मतलब जो बच्चा हो गया, उसका जो मोर्टेलिटी रेट हो गया, तो उन लोगों का रेट को भी रिड्यूस करना, तो ये भी एक काइंड ऑफ मतलब सेविंग लाइफ्स के अंदर में आ जाते हैं। फिर अनदर पॉइंट होगा कि फैमिली बिल्डिंग एंड इनफर्टिलिटी हो गया, तो इवन जो कपल स्ट्रगल कर रहे हैं कंसीव होने के लिए, उसे भी मतलब मेडिकल काउंसलिंग ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे कि IVF लगा के, मेडिकल काउंसलिंग्स लगा के, तो उसे मतलब लाइक आई मीन एक फैमिली उन जिस तरह से एक चाहते हैं उसे बिल्ड करने में मदद आ जाते हैं ये फैमिली प्लानिंग के अंदर पे। फिर और एक पॉइंट होगा एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्वलिटी हो गया, तो जब फीमेल्स जो हो गया, जो औरत हो गया, फीमेल्स लोग हो गया, जब अपने रिप्रोडक्टिव फ्यूचर पे उन लोग अपना कंट्रोल होता है, तो उन लोग बेहतर पोजिशन पे होता है कि अपना जो करियर को परस्यू कर सकने के लिए, एजुकेशन को परस्यू कर सकने के लिए, उसके बाद अपने वर्कफोर्स में अच्छा से काम कर सकने के लिए, पार्टिसिपेट कर सकने के लिए।

0: तो ये उसमें इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस भी आ जाते हैं। तो मतलब फोकस करते हैं कि इस पे चिल्ड्रेन बाय चॉइस हो ना कि चिल्ड्रेन बाय चांस, तो इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो वही है एम्पावरमेंट एंड जेंडर इक्वलिटी पे फीमेल्स को ज़्यादा फोकस करता है जेंडर इक्वलिटी करने के लिए, ताकि रिप्रोडक्टिव जो फीचर्स होते हैं उसे उन लोग बेटर कंट्रोल रखने के लिए। जब बेटर कंट्रोल होगा तब अपना उन लोग बेटर पोजिशन पे होते हैं, अपना एडुकेशन कैरियर्स पे फोकस कर सकने के लिए। तो ये सब आ जाते हैं फैमिली प्लानिंग के अंदर पे।
1: बहुत ही अच्छी तरह से आपने फैमिली प्लानिंग का सही मतलब हमारे श्रोताओं को समझाया। आज भी बहुत से लोग इसके बारे में गलत धारणा रखते हैं, लेकिन जैसे आपने बताया फैमिली प्लानिंग का मतलब बच्चे पैदा ना करना नहीं, बल्कि कपल अपनी मर्जी और तैयारी के हिसाब से सही समय पर बच्चों की प्लानिंग करे और माँ और बच्चे दोनों की सेहत का ध्यान रखे। ये वाकई हर परिवार के लिए बहुत जरूरी बात है। डॉक्टर कैदन जी, हमारे समाज में अक्सर ये सोच देखने को मिलती है कि फैमिली प्लानिंग की जिम्मेदारी सिर्फ महिलाओं की होती है, क्या ये सोच सही है? इसमें पुरुष किस तरह अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं?
0: ये सोच बिल्कुल गलत है। जिम्मेदारी दोनों की होती है, बराबरी होती है जिम्मेदारी। जो तो उसमें पुरुष जो किस तरह से अपना रोल प्ले कर सकता है, बोलने से बहुत सारा तरीके से अपना रोल प्ले कर सकता है फैमिली प्लानिंग पे। जैसे कि मेल कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शंस को अच्छे तरीके से यूज करना, मेल कॉन्ट्रासेप्टिव बोलने से जैसे कि मेल कॉन्डोम्स हो गया, एंड इवन एक वैसेक्टोमी बोल के होता है जो जो स्पर्म को जो कैरी करने के लिए जो पाइप होते हैं, वास डिफरेंस बोलते हैं, उसे बंद कर देते हैं। तो उस तरीके से ये कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शंस को अच्छा से फॉलो कर सकता है मेल। जो अनदर वे है बोलने से तो ये जो एक फिजिकल एंड हार्मोनल साइड इफेक्ट्स ला सकते हैं वुमेन को, तो उसमें मेन जो पुरुष के तरफ से वो भी बर्थ कंट्रोल मैटर्स को वो खुद इनिशिएट करना है, ना कि फीमेल्स कोई फीमेल्स के लिए रुकना है। एंड उसके बाद में अपने पार्टनर को सपोर्ट करना है, उसके जो पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स होता है, मतलब जो माइनर साइड इफेक्ट्स होता है बर्थ कंट्रोल पिल्स वगैरह के ना, तो उसे थोड़ा मोरा जैसे कि माइनर जो मूड स्विंग्स वगैरह क्या क्या होता है, तो उसमें भी पार्टनर अंडरस्टैंड करके थोड़ा सपोर्टिव उल्टा हो देना है। एंड उसके बाद में अगर कुछ ज़्यादा ये उसे तकलीफ होने से उसे हॉस्पिटल पे ले जाना, डॉक्टर को दिखाना, एकम्पनी कर देना है पति, तो उस तरीके से अपने वाइफ को, अपने पार्टनर को पुरुष जो सपोर्ट करना है। उसके बाद और एक है ओपन कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग, उस पर भी पुरुष काफ़ी एक्टिवली उनके रोल प्ले करना है। तो उसमें क्लियर कट डिस्कशन होना है अपने पार्टनर से कि कितने चिल्ड्रेन चाहिए एंड कितने टाइमिंग गैपिंग रखेंगे, उस तरीके से अपने पार्टनर से अच्छा से डिस्कशन करना है, क्लैरिटी होना है, ना कि सब कुछ अनप्लान हिसाब से हो जाना है। और अपने पार्टनर को भी सुनना है, उसका पार्टनर के बॉडी एक्सपीरियंस एंड उसके जो पार्टनर का जो ओपिनियंस है, थॉट्स है, तो उसे मतलब लाइक आई मीन जो बर्ड कंट्रोल के लिए अपने उसका पार्टनर जो जो कुछ सोच के रखा है उसको भी अंडरस्टैंड करना है, रिस्पेक्ट करना है। उस तरीके से पुरुष जो रोल प्ले कर सकता है कि अपने फैमिली प्लानिंग के लिए अपने पार्टनर के साथ में।
1: जी डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। फैमिली प्लानिंग सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं है, इसमें पति और पत्नी दोनों का बराबर योगदान और जिम्मेदारी जरूरी होती है। जब दोनों मिलकर फैसले लेते हैं तब माँ और बच्चे की सेहत भी अच्छी रहती है और पूरा परिवार खुशहाल रहता है। वैसे आज के समय में फैमिली प्लानिंग के लिए कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यानी गर्भ निरोधक तरीके उपलब्ध हैं, और क्या ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और हेल्थ सेंटर्स में आसानी से मिल जाते हैं?
0: बहुत सारा कॉन्ट्रासेप्शन के तरीके हैं, जैसे कि बैरियर मेथड्स हो गया, हार्मोनल मेथड्स हो गया, परमानेंट स्टेराइलाइजेशन हो गया, एंड उसके बाद में नेचुरल एंड इमरजेंसी मेथड्स हो गया। तो उस पर अच्छा से देखने से बैरियर मेथड्स पे जैसे कि मेल एंड फीमेल कंडोम्स अवेलेबल होते हैं
1: जी।
0: उसके बाद में ये स्पर्मिसाइड्स बोल के एक होते हैं जो फोम्स, जेल्स, क्रीम्स के रूप में अवेलेबल होता है, तो उसको भी यूज करने से वो स्पर्म सेल्स को मार डालते हैं ताकि फर्टिलाइज ना हो। तो ये सब एक बैरियर मेथड्स में गिना जाता है अंडर कॉन्ट्रासेप्शंस। तो उसके बाद में हार्मोनल मेथड्स में बोलने से जैसे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्शंस हो गया,

0: ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह हो गया, तो उसके बाद बर्थ कंट्रोल जो शॉट्स होता है, इंजेक्शंस वगैरह जो कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शंस होता है, तो ये सब हार्मोनल मैटर्स में आ जाता है। तो ये जो बदन पे थोड़ा हम लोग का बदन का जो केमिस्ट्री होता है उसको थोड़ा सा आगे पीछे कर देता है टेम्पोररी के लिए, एंड उसमें मतलब ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करने के लिए,
1: जी
0: या तो वो जो ओवरी से जो एग रिलीज होते हैं उसके उसको थोड़ा बंद कर देते हैं, और उसके बाद में जो सर्वाइकल एरिया में एक म्यूकस होते हैं उसे उसको मतलब ठीक कर देते हैं। तो ठीक करने से वो जो स्पर्म सेल्स जो अंदर नहीं जा पाते हैं, तो मतलब स्पर्म सेल जो ब्लॉक हो जाते हैं, तो उस तरीका से थोड़ा मतलब ये कॉन्ट्रासेप्शन जो हो जाते हैं। और इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है, इंजेक्शन फॉर्म जो होता है वो टाइपिकली एवरी 3 मंथ्स में एक बार लिया जा सकता है। तो ये सब जो पिल्स हो गया एंड इंजेक्शन हो गया, ये सब हार्मोनल मेथड्स के अंदर में आ जाएगा। उसके बाद एक है LARCS बोल के, तो वो मतलब है लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन। उसमें ये ऐसा है कि एक बार लगाओ आप भूल जाओ कुछ कुछ साल के लिए, तो ये बहुत हाईली इफेक्टिव होता है। इसके अंदर पे इंट्रा यूटरेन डिवाइसेस आ जाता है। इंट्रा यूटरेन डिवाइसेस जैसे कि कॉपर टी हो गया, तो कॉपर टीस जो केयरफुली मतलब एक
1: जी
0: ट्रेन डॉक्टर या तो एक ट्रेन एक नर्स जो होता है वो केयरफुली यूटरस के अंदर में उसे इंसर्ट किया जाता है। कॉपर से बना होता है जो कि नॉन हार्मोनल है, एंड ये आपका अराउंड 10 to 12 ईयर्स लास्टिंग करता है। एंड फिर उसके बाद में जो हार्मोनल आईयूडीज भी आता है, हार्मोनल आईयूडीज जो 3 to 8 ईयर्स का लास्टिंग करता है। उसके बाद हो गया परमानेंट स्टेरिलाइजेशन। परमानेंट स्टेरिलाइजेशन में जैसे कि सर्जिकल प्रोसीजर्स जो इरिवर्सिबल होता है, वेसेक्टोमी हो गया, फिर ये ट्यूबेक्टोमी जिसको ट्यूबल लाइगेशन भी बोलता है, तो वो सर्जिकल मतलब स्टेरिलाइजेशन परमानेंट स्टेरिलाइजेशन बोलता है। उसके बाद में फिर नेचुरल वे में बोलने से, तो अगर आप मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओवुलेशन को आप प्रॉपरली ट्रैक करते हैं बोलने से, तो उसमें भी आप फर्टाइल डेज में इंटरकोर्स नहीं करके आप अच्छा से प्लान कर सकते हैं बच्चा नहीं होने के लिए ना। उसके वो सब नेचुरल मेथड के अंदर में आ जाएंगे। फिर उसके बाद में इमरजेंसी मेथड्स पे, तो फिर अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मिल जाता है, जैसे कि लिबोनोर्जेस्ट्रेल बोल के एक तो आता है जिसको IPL जैसा भी देखता है मतलब ब्रांड नेम पे, तो वो विद इन 72 आवर्स इसे खा के तो उसे इमरजेंसी वे पे कॉन्ट्रासेप्शन कर सकता है। तो हर हेल्थ केयर सेंटर पे कुछ कुछ कॉन्ट्रासेप्शन अवेलेबल होता है, जैसे कि मेल कॉन्डम्स हो गया। मेल कॉन्डम्स वो एवरी हेल्थ केयर फैसिलिटी पे एक कॉन्डम बॉक्स बोल के एक रखा जाता है एक कहीं कॉर्नर पे, जहाँ पे मेन मेन एंट्री का वहाँ पे भी नहीं होगा, कहीं एक कॉर्नर पे साइड पे एक बॉक्स एक होता है, उस पे हमेशा गवर्नमेंट सप्लाइड वाला जो मेल कंडोम्स होता है वो अवेलेबल किया जाता है, ताकि पब्लिक लोग अपने हिसाब से बिना हिचकिचाए तो वहाँ पे उन्होंने अपने हिसाब से ले जा सके मेल कंडोम्स को। उसके बाद में हो गया ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो गया, जैसे कि लिबोनोर्जेस्ट्रेल हो गया, तो वो टेबलेट भी मिल जाते हैं। फिर उसके बाद में माला डी हो गया, माला एन हो गया, तो ये सभी मिल जाते हैं। तो माला डी माला एन ये लोग भी मतलब लाइक आई मीन 28 डेज का साइकिल में वो टेबलेट को एवरी डे एक एक करके खाना पड़ता है, तो अभी हॉस्पिटल पे फुली अवेलेबल है। एंड इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस जैसे कि कॉपर टी वगैरह ये सब भी हॉस्पिटल में मिल जाता है। और एक अच्छी बात है कि मतलब नेशनल हेल्थ मिशन अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवरी ईयर वेसेक्टोमी फोर्टनाइट बोल के एक तो मनाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो उसे उस पीरियड पे मतलब कॉन्ट्रासेप्शंस के अवेयरनेस देते हैं, एंड स्पेशली वेसेक्टोमी के लिए, वेसेक्टोमी जो पुरुष लोगों को वो करते हैं मतलब
1: जी
0: परमानेंट स्टरलाइजेशन करते हैं, उसके लिए अवेयरनेस देते हैं एंड उसके लिए इनकरेज करते हैं। तो उसमें अगर कोई बेनिफिशियरी मिल गया बोलने से, देन वो फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब वो वेसेक्टोमी मतलब करा देते हैं गवर्नमेंट जो, तो ये अच्छी बात है।
1: जी डॉक्टर केडन, बहुत ही उपयोगी जानकारी आपने दी। आज हमारे श्रोताओं को भी पता चला कि फैमिली प्लानिंग के लिए सुरक्षित और प्रभावी यानी सेफ एंड इफेक्टिव तरीके उपलब्ध हैं, और इनमें से कई मेथड्स सरकारी अस्पतालों और हेल्थ सेंटर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट भी दिए जाते हैं। डॉक्टर साहब, अब मेरा अगला सवाल है, हम अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं जो एक हिल स्टेट है, जहां के गांव आज भी दूर दराज

0: और पहाड़ी इलाकों में है। यहां अरुणाचल प्रदेश के हिली और रिमोट एरियाज में फैमिली प्लानिंग अवेयरनेस को लेकर आपको क्या चैलेंजेस देखने को मिलते हैं?
1: जी, ये अगर अच्छा से देखा जाए तो चैलेंजेस तो है कुछ कुछ, जैसे कि ज्योग्राफिकल एंड लॉजिस्टिक बैरियर्स का चैलेंजेस रहेगा। उस पे क्या है बोलने से कि यहाँ का जो टेरेंस लोग है बहुत एक्सट्रीम है, नियरेस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटी पे ट्रैवल करना बहुत एक तकलीफ रह जाता है विलेजर्स के लिए। और ये सप्लाई चेन डिसरप्शंस भी होते हैं, जैसे कि वेदर के कारण एंड खराब रास्ते के कारण, लैंडस्लाइड होने के कारण, तो मतलब सप्लाई ऑफ डिलीवरीज काफ़ी डिले भी हो जाते हैं कभी कभी। उसके बाद में लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट्स होता है, तो उसके कारण भी मतलब किसी किसी के पास गाड़ी नहीं है, बाइक नहीं है, और उन लोग को पैदल ही चलना पड़ता है बहुत दूर दूर से, तो उन लोग मतलब एक काइंड ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटी पे मतलब विजिट नहीं कर पाते हैं। ये सब ज्योग्राफिकल कंडीशंस के अंदर में आ जाएंगे, मतलब जो तकलीफ वाला चीज। जो फिर अनदर पॉइंट रहेगा हेल्थ सिस्टम स्ट्रक्चरल गैप्स, तो उसपे क्या रहेगा बोलने से, जैसे कि शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड प्रोवाइडर्स और ये ट्रेंड स्टाफ टू एडमिनिस्टर रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स सच एस IUDs एसेट्रा। तो मतलब हर हेल्थ फैसिलिटी पे आजकल तो मिनिमम एक ANM तो रहता है, बट अभी तक बहुत सारे हेल्थ फैसिलिटी पे बहुत दूर दूर वाला जो हेल्थ फैसिलिटी हो गया, जो बहुत फार इंटीरियर प्लेसेस पे, उसे उसमें स्टाफ ही नहीं है जो प्रॉपरली ट्रेंड हो ये IUD जैसे कि कॉपर्टी वगैरह इंसर्ट करने के लिए। कभी कभी जैसे कि नेटवर्क का भी प्रॉब्लम होके, आजकल टेलीमेडिसिन बोल के भी शुरू हो गया, जहाँ पे बस्ती वाला लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे बैठे जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स लोग होते हैं, जैसे कि गायनेकोलॉजिस्ट हो गया, पेडिट्रिशियन हो गया, उसे उन लोग टेलीमेडिसिन के द्वारा मतलब इंटरनेट कनेक्टिविटी ठीक होने से वो ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। लेकिन जब बहुत सारे एरियाज पे अभी इंटरनेट कनेक्शन ही अच्छे से नहीं है, तो उसमें उन लोग टेलीमेडिसिन को भी अवेल नहीं कर पा रहा है। और फिर थर्ड पॉइंट पे होगा हाई रेट ऑफ अर्ली मैरिज एंड लो लिटरेसी। तो अभी तक हम लोग का ट्राइबल बस्ती में देखा जाने से अर्ली मैरिजेस का भी बहुत है, मतलब अभी तक जो प्रॉपरली एडल्टहुड अटेंड नहीं किया है, जल्दी जल्दी मैरिज करा दिया, तो और फिर स्कूल अच्छा से नहीं गया, ये सब के कारण जो लिटरेसी रेट जो कमती होके ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव जो ऑप्शंस होता है उसे उन लोग अवेल नहीं कर पाता है, अवेयर नहीं होके। उसके बाद फिर अनदर पॉइंट होगा ये इकोनॉमिक बैरियर्स हो गया। इकोनॉमिक बैरियर्स मतलब जैसे कि बस्ती वाला बहुत लोग हो गए कि उन लोग डेली दूसरों के खेती में जाते हैं, काम करते हैं, थोड़ा डेली उन लोग को ये हजरा टाइप से कुछ वेज मिलता है। फिर अभी हॉस्पिटल भी इतना दूर, हेल्थ केयर फैसिलिटी इतना दूर, तो अपना डेली हजरा को, डेली अपना जो कमाई को छोड़ के इतना दूर जाना भी उन लोग फिर फिजिबल नहीं समझता है, तो ऐसा करके उन लोग एफोर्ट नहीं कर पाता है कि अपना दिन का कमाई को छोड़ के हेल्थ केयर फैसिलिटी पे जाएगा बोल के। तो ये सब कॉन्ट्रासेप्टिव चीज को उन लोग अवेल करने के लिए या तो फैमिली प्लानिंग कंसल्टेशन कराने के लिए, तो ये सब चैलेंजेस है हमारे हिली स्टेट्स पे, स्पेशली हम लोग अरुणाचल पे भी, अलग स्टेट्स पे भी।
0: बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने बताई डॉक्टर केडन जी। क्या फैमिली प्लानिंग का रिलेशन सिर्फ हेल्थ से है या इसका असर देश के इकोनॉमिक और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर भी पड़ता है?
1: फैमिली प्लानिंग सिर्फ हेल्थ से बोल के नहीं होगा, तो ऑब्वियसली ये जो देश के इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी काफी इफेक्ट करता है। किस तरीके से बोलने से, जैसे कि पॉइंट नंबर वन में बोलूंगा डेमोग्राफिक डिवाइडेंट। तो डेमोग्राफिक डिवाइडेंट पे क्या होता है बोलने से, जब एक फैमिली साइज श्रिंक होता है, जब फैमिली साइज जब थोड़ा छोटा हो जाता है, तो डिपेंडेंट चिल्ड्रेन का प्रोपोर्शन थोड़ा गिर जाता है। तो डिपेंडेंट चिल्ड्रेन का जब ये रेट जो जब गिर जाता है, तो वर्किंग एज पॉपुलेशन थोड़ा बढ़ जाता है। तो वर्किंग एज पॉपुलेशन जब बढ़ जाता है, देन वो नेशन का इकोनॉमी ऑब्वियसली वो बढ़ जाता है और ये पॉवर्टी को भी रिड्यूस कर देता है। फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट में आ जाएगा वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। तो इसमें जब वुमेन लोग अपना रिप्रोडक्टिव चॉइसेस को मतलब कंट्रोल कर सकता है, तो वुमेन जो ज़्यादा पेड लेबर फोर्स पे तो ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकता है, अपना काम पे ज़्यादा ध्यान दे सकता है। तो ये सब मतलब गुर फिर के एक सस्टेनेबल गोल एंड जेंडर इक्वलिटी पे मतलब चला जाता है वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जो। फिर थर्ड पॉइंट होगा ये पॉवर्टी एलिवेशन। तो फैमिली प्लान

0: इन्वायरमेंटल प्रेशर्स लाइक डिफोरेस्टेशंस, पोल्यूशन, ये सब भी कंट्रोल में आ जाता है। तो ये भी एक क्लाइमेट चेंज के लिए हाईली इफेक्टिव मेजर्स है, मतलब नेचुरल रिसोर्सेस को प्रिजर्व करने के लिए। कुछ कंट्रीज हो गए जो मतलब लाइक फैमिली प्लानिंग और ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट को अलाइन करके काफी उन लोग मैसिव डेवलपमेंट लीप लिया है, जैसे कि साउथ कोरिया हो गया, थाईलैंड हो गया। तो उससे भी हम लोग सीख सकते हैं, अलग कंट्री लोग भी सीख सकते हैं।
1: यानी हर परिवार का छोटा कदम देश के लिए बड़ा योगदान बनता है। डॉक्टर साहब, अंत में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के इस अवसर पर आकाशवाणी ईटानगर के माध्यम से हमारे सभी श्रोताओं के लिए आपका फाइनल मैसेज क्या रहेगा?
0: हम लोग को समझना जरूरी है कि फैमिली प्लानिंग जो ये बर्ड बाय चॉइस रहना चाहिए, नॉट नॉट बाय चांस, ये हम लोग समझना जरूरी है। और मैं एडवाइस करूंगा कि ये मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहिए, लाइक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, IUDs हो गया, बैरियर मेथड्स हो गया, जो मैंने पहले भी बताया था। IUDs में जैसे कि कॉपर टी आ जाते हैं एग्जांपल के लिए, बैरियर
1: जी
0: मेथड्स में मेल फीमेल कंडोम आ जाते हैं एग्जांपल के लिए, और परमानेंट स्टरलाइजेशन भी मतलब लाइक ऑप्शन आप ले सकते हैं। उसके बाद में जो स्पेसिंग, जो गैपिंग जो मैंने पहले भी बताया था, उसे बहुत प्रायोरिटाइज करना चाहिए, और एक हेल्दी गैपिंग ऑफ एटलीस्ट 2-3 ईयर्स बिटवीन टू प्रेगनेंसीज ना तो मेंटेन करने का कोशिश करिए। कि क्यों बोलने से ये बहुत मदर्स एंड चाइल्ड को, दोनों को ये बेनिफिट देता है, फैमिली को भी बेनिफिट देता है। उसके बाद में कुछ एनी कंसल्टेशन चाहिए होने से, कुछ एनी टिप्स चाहिए होने से रिगार्डिंग फैमिली फैमिली प्लानिंग, आप एक ऑथोराइज्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल को विजिट करिए, हो सकने से एक गायनिकोलॉजिस्ट को विजिट करिए। गायनिकोलॉजिस्ट को नहीं मिल पा रहे हैं तो आप कोई भी हेल्थ सेंटर पे जाके, जो वहाँ के मेडिकल ऑफिसर हो गया, जो जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर होते हैं, जो बेसिक एंटीनेटल चेकअप्स भी कर लेते हैं, उसे भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। और यस, मैं और एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो लैक्टेटिंग मदर्स लोग हो गया, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जरूर करना चाहिए। वो क्या है बोलने से, टिल 6 मंथ्स, बच्चा का 6 मंथ तक वो सिर्फ उसको ब्रेस्ट फीडिंग ही करना है, ना कि उसमें पानी भी देना है, कुछ अलग
1: जी
0: चीज़ भी खिलाना है। तो 6 मंथ तक एक्सक्लूसिवली उसको ब्रेस्ट फीड ही करना चाहिए। और अंत में वही मैं कहना चाहूँगा, हम सबका भलाई, इस देश का भलाई, तो इस पृथ्वी का भलाई। थैंक यू सो मच
1: जी डॉक्टर केडन जी,
0: जी।
1: बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक संदेश आपने हमारे श्रोताओं को दिया। आज आपने फैमिली प्लानिंग, कंट्रासेप्शन, रिस्पॉन्सिबल पेरेंटहुड और पॉपुलेशन स्टेबिलाइजेशन से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर बहुत ही सरल और आसान भाषा में जानकारी दी। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं इस चर्चा से जरूर लाभ उठाएंगे और अपने परिवार की सेहत, खुशहाली और बेहतर भविष्य के लिए सोच समझकर सही फैसले लेंगे। प्रिय श्रोताओं, याद रखिए, फैमिली प्लानिंग परिवार को छोटा करने की मजबूरी नहीं, बल्कि हर बच्चे को अच्छी सेहत, बेहतर शिक्षा और एक सुनहरा भविष्य देने की जिम्मेदारी है। एक स्वस्थ माँ, एक स्वस्थ बच्चा और एक खुशहाल परिवार ही एक मजबूत और विकसित समाज की पहचान है। डॉक्टर केदन हागी जी, आकाशवाणी ईटानगर के इस विशेष कार्यक्रम में शामिल होने और अपना कीमती समय देकर हमारे श्रोताओं को इतना महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी
1: तो इसी प्यारे संदेश के साथ मुझे यानी आपके होस्ट बिक्की रिलुम को दीजिए इजाजत। फिर मुलाकात होगी एक नए रोचक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर। नमस्कार, जय हिंद, जय अरुणाचल। जी हाँ श्रोता मित्रों, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के अवसर पर अभी आपने सुना एक विशेष कार्यक्रम जिसके तहत डॉक्टर केडन हागे ने कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को काफी फायदेमंद होगी ये जानकारियां। आपको ये भी बता दें कि कार्यक्रम की संचालिका थी मिस बिक्की रिलुम। श्रोता मित्रों, आप जुड़े हुए हैं अरुण FM 103.1 MHz पर और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आगे कुछ ही क्षणों में आप सुन पाएंगे आदि श्रोताओं का समाचार। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

आकाशवाणी ईटानगर है सीलो तन्नो पोलो लो लो इनको लालों आतेल तारी गमरु बी कोंगे तन्ना किटिंग मासे रूप कुमरिक सीरो आदि पेबुम तावा लेंडुम करा या पे आदि लुतादागो में तत्पा लुबिना से बालों मुंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी सीलो न्यूजीलैंड लो ऑकलैंड लो इंडिया न्यूजीलैंड बायलेटरल ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विस लगा पे क्रिस्टोफर लुक्सन में लुबोसी डोला पायवियर टारगेट लगा पे 35,000 करोड़ आबार को पे लुबोसी तो देलो रोंग इंडो पैसिफिक मेरी टाइम कॉपरेशन लगा इंडियन नेवी दे न्यूजीलैंड डिफेंस फोर्स की लेको पे सपोर्ट बोसी दो पे कम पेगम साइन बोसी तो चीफ सेक्रेटरी मनीष कुमार भी मेलो इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडियन लोग ज्वाइंट सेक्रेटरी निशाता तिवारी के लीड पोरोला सिबुगरा के रे इरेन को कई पान्योर लोअर सियांग डे के ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट की जिंग में कांगों कारों में चीफ सेक्रेटरी वामा मीटिंग में मेलो डूंगी बोगतो को पेबोरूरूम देलो चीफ सेक्रेटरी वेलुरों ने अरुणाचल प्रदेश रेन एंड फ्लड डैमेज 2026 एम ड्राफ्ट बम दोला मेमोरेंडम में सेंट्रल गवर्नमेंट लो अपना उत्तरी कोलो मलिडो पलुवेक बोसितो गवर्नर के टी परनाइक भी वर्चुअल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एम ईटानगर लोक भवन लो मेलो के इबोम नाम लो ये मुंगे तो पेवोडे में स्टेशन इलेक्ट्रल ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एम इंडियन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट गाइडेंस ला देलो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी रोनो हिल्स दोईमुगे इमुन गेरल ऑर्गेनाइज बम तो वेबो इवम नाम लगा दे स्टेक होल्डर्स तक में इफेक्टिव रिफॉर्म फॉर्मुलेशन लगे रेस्पॉन्सिव पॉलिसीज की दिन में केंद्र दो इवम नाम को डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर सोना मिन ऑल टाइम कम टी सिंपो स्टूडेंट यूनियन लोग एनुअल फेलिसिटेशन प्रोग्राम 2026 एम नाम साइल इबम नाम लो ये मुन गे तो पेवरलो डीसीएम बोगे का ना एकेडमिक लोग मेरिटोरियस स्टूडेंट की दिन में फैसिलिटेट एम इगे बोतो डायरेक्टर ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश तंजंग तक गाइडेंस आयोन लोग इबम दोला फाइनेंशियल असिस्टेंट एम स्टेट स्काउट एंड गाइड्स फेलोशिप कई पांच डिस्ट्रिक्ट लोग नेपको कॉलोनी में हिबू ब्रके दे इरे नम एडुंगे रंग के दिंग इगुर दोप स्टेट ट्रेनिंग कमिश्नर भारत स्काउट्स एंड गाइड्स केम्पी पाकम यासुली एमएलए तोकोतातुं के अलग लो लगली बम तो मेट्रोलॉजिकल सेंट्रल ईटानगर स्टेट सोलोग 18 डिस्ट्रिक्ट को येलो एलआरएम बिकांडो लालुडो ने लुकानम डिस्ट्रिक्ट के दिलो दोमुरमिल्ला यारीलल्ला बजरू पे पड़ोंगो एम नलुकान बीतों ईस्यांग डिस्ट्रिक्ट पुलिस एम एसपी पंकज लंबाब के लीडरशिप लो इबो गए डॉला जेएनसी पासिगार लोग पुलिस इंटर्नशिप प्रोग्राम में हफ्ता आउम को पोर्टितु पोरिको को इबो नाम में आई काम परूप इन बम तो इंटर्नशिप प्रोग्राम देलो पोरिको की डूडे में पुलिस लोग पंक्शनिंग क्रिमिनल जस्टिस पुलिस के अलांग पब्लिक रिलेशन लीगल अवेयरनेस ट्रांसपेरेंसी सिविक्स रेस्पॉन्सिबिलिटी लगान के दिन लुनो मिनम बोतो तन्ना के दिन आदि लुता दागम सिम आकाशवाणी ईटानगर लोक तत्पादुं इंडिया ने T20 इंटरनेशनल सीरीज लोग लेमगोन अपना फाइनल मैच लो इंग्लैंड में सीरीज केलिरिक सीए कुदा साउथम्पटन लोग उटिलिटा गोल लो मैच दे में इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लोग 7 PM लोग के केलिरो मुंजे पीपा वर्ल्ड कप लो स्पेन में बेल्जियम में 2-1 गोल लोक तुकुम ला सेमीफाइनल हंगाई रोरो करो कम 2:30

0: EM-lo Norway, England-em Turkey-e delok Rossi start the EM-lo Argentina Switzerland-em Turkey-e delok tukum na timan ye semi-final-lo Turkey-e ku de kemayum ke tukum na Spain-e lang France e semi-final-em Turkey-e ku siyum ka di lu tadagom em soluin bidong tanna ke dinga aipe.
1: Siyum ke ngolok adi pe bosol tanna ke dengar keraya pe jomya sirap ke luli miri lok tatpa bomun gaya.
2: अभी आप सुन रहे थे आदि श्रोताओं का समाचार। श्रोता मित्र, आपको बता दें कि आदि श्रोताओं के कार्यक्रम को आगे सुनने के लिए आप हमारे मीडियम वेब चैनल 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा डीआरएम 666 किलोहर्ट्ज पर अभी जुड़ सकते हैं। जी हाँ श्रोता मित्र, आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। और चले इसी के साथ ही आपको ये भी बता दें कि हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार इस वक्त 6:35 हो रहे हैं और लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आज के कलाकार। श्रोता मित्रों, भारतीय सिनेमा में कई ऐसे कलाकार मौजूद हैं जिन्होंने अपने हुनर से फिल्मी दुनिया में एक अलग जगह बनाई। फिल्मी जगत के ऐसे ही नगीनों में से एक हैं मशहूर अभिनेत्री जोहरा सहगल। जी हां श्रोता मित्रों, कार्यक्रम आज के कलाकार में हमारे कलाकार हैं अभिनेत्री नृत्यकी जोहरा सहगल। उनके बारे में विस्तार से जानेंगे, इससे पहले आपको सुनवाना चाहते हैं ये गीत।

आप सुन रहे थे चीनी कम फिल्म का ये बेहद ही खूबसूरत गीत श्रेया घोषाल की आवाज में। जी हाँ श्रोता मित्रों, कार्यक्रम आज के कलाकार में आज हम बात कर रहे हैं मशहूर अभिनेत्री नृत्य की जोहरा सहगल की। श्रोता मित्रों, जोहरा सहगल देश ही नहीं विदेश में भी अपनी पहचान बना चुकी थी। अपने पूरे जीवन में जिंदा दिली की मिसाल पेश करने वाले जोहरा सहगल से जुड़ी कई किस्से मशहूर हैं। आइए जानते हैं कि यूपी के मुस्लिम परिवार में जन्मे जोहरा सहगल कैसे बनी विश्व प्रसिद्ध अभिनेत्री। 27 अप्रैल 1912 को उत्तर प्रदेश के एक मुस्लिम परिवार में उनका जन्म हुआ। बेहद छोटी उम्र में ही उन्होंने अपनी माँ को खो दिया। उन्होंने क्वीन मैरी कॉलेज लाहौर से अपनी पढ़ाई पूरी की, जिसके बाद वे सन 1930 में यूरोप चली गई, जहाँ जर्मनी के बेले स्कूल में उन्होंने दाखिला लिया। जी हाँ श्रोता मित्रों, उस दौर में जोहरा सहगल ऐसा करने वाली पहली भारतीय बनी। उन्होंने बेले स्कूल में 3 साल के लिए मॉडर्न डांस की पढ़ाई की। डांस की पढ़ाई पूरी करने के बाद जोहरा ने 1935 में उदय शंकर के साथ एक डांसर के रूप में अपना करियर शुरू किया। 1935 से 1940 के बीच उन्होंने जापान, मिस्र, यूरोप और अमेरिका में अपने हुनर का प्रदर्शन किया। इसी दौरान वो भारत में उदय शंकर के साथ एक एकेडमी में डांस सिखाने लगी। यहाँ उनकी मुलाकात कमलेश्वर सहगल से हुई, जिनसे कुछ साल बाद शादी कर जोहरा लाहौर शिफ्ट हो गई। शादी के बाद एक्ट्रेस ने अपने पति के साथ मिलकर लाहौर में नृत्य संस्थान खोला। आपको बता दें कि बंटवारे के बाद जोहरा बॉम्बे शिफ्ट हो गई, जहां उनकी बहन पृथ्वी थिएटर के साथ काम कर रही थी। बाद में जोहरा भी 1945 में एक अभिनेत्री के रूप में थिएटर से जुड़ी, जिसके बाद उन्होंने 1945 से लेकर 1959 तक देश के सभी प्रमुख शहरों में दौरा किया। इसी बीच उन्होंने 1986 में धरती के लाल फिल्म से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। बाद में उन्होंने चेतन आनंद की फिल्म नीचा नगर में भी अभिनय किया, जिसने न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हासिल की बल्कि कान फिल्म महोत्सव में भी अवार्ड भी जीता। तो चलिए इसी के साथ ही कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनवाते हैं एक और गीत।

आवारा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। श्रोता मित्रों, अभिनय और डांसिंग के अलावा जोहरा सहगल ने कोरियोग्राफी भी की। एक्ट्रेस ने गुरुदत्त की बाजी फिल्म और राज कपूर की आवारा में बतौर कोरियोग्राफर काम किया। इसके अलावा उन्होंने लंदन में डॉक्टर हूं और 1984 की मिनी सीरीज द ज्वेल इन द क्राउन जैसी ब्रिटिश टेलीविजन शो में भी काम किया। बहुमुखी प्रतिभा की धनी जोहरा सहगल ने लगभग हर क्षेत्र में अपना हुनर दिखाया। उन्होंने दिल से हम दिल ले चुके सनम, वीर जारा, सावरिया, चीनी कम जैसी फिल्मों में भी अभिनय किया। आपको बता दें कि उनको आखिरी बार सावरिया फिल्म में देखा गया। तो चलिए इसी के साथ ही आपको सुनवा रहे हैं अगला गीत।

श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाजों में खूबसूरत गीत। जी हाँ, कभी खुशी कभी गम फिल्म से। श्रोता मित्र, आपको बता दें कि पद्मश्री, पद्म विभूषण और कालीदास सम्मान से सम्मानित जोहरा सहगल ने साल 2014 को दुनिया से अलविदा लिया, लेकिन अपनी जिंदा दिली और बिंदास तरीके से जिंदगी जीने की वजह से और अपने हुनर के लिए वे आज भी लोगों के बीच मौजूद हैं।

फिल्म का ये बेहतरीन गीत। इस गीत के साथ ही विश्व विख्यात अभिनेत्री और नृत्यकी जोहरा सहगल पर आधारित कार्यक्रम आज के कलाकार का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। श्रोता मित्र, आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आगे कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे निशी श्रोताओं का समाचार। कृपया कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।

Sì, a casvani itano po come tele po ga alo luri gola lo ken nan po orum ga kana ba je re ma tan melam al mena surung ga nyse au ara molen ji gre ba tan ga de ta cho ba surung ga shi po yam ta pa cho re je jran shi ner ma a khom har re pu ba bla barot la ni julen ba ni ga ara lo al ba se ba ga ba sa ham hu ya de ba mu mi se gre ke la tu ta yan ta te ni to lo go ba chu mu go la an hajar kor mur ko ga la ga ba ni ni ga ara lo len da len ga de ko ba okland ga da lo from stand nam narendra modi la new zealand mo ko ga pro minister ajan Christopher Lokshan Bunyi Aum Aham Jabek Miss Pukunama Ham Mempato Oksoka kabatu kum lo al alene aum aha mego jabdar japa mise tap kuba onka soka ara lo so arnega uni nipu nana tolo indo pacific maritime cooperation ham kai alvasilan glan gata bala indian navy la new zealand defense force ga ara lo albet tulik to aga la rigo mengo ham riba membama dokuba aum aha jame sitapu kunama hamla mempata do भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ज्वाइंट सेक्रेटरी निष्ठा तिवारी गब गलो व इंग चाग को नाम इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम नि गत ने मोर ग न्या आलहो अरुणाचल प्रदेश स्टेट के चीफ सेक्रेटरी धर्म मनीष कुमार गुप्ता ये उराप आप मीटिंग में नाम कबा हम अब गलो ब तो गता ग पुकन महल में फादो ओक निदो उस का सेवे उस गुद ग पीचे जिक गुदा की फान्युर ला लुआर स्यांग ओक इस्ट स्यांग दिस्ट्रिक गुद ने सोक सेंट्र तीमे नी गुद है कागो बिको जिप कुब ओक सोक कबातो कुम लो सो अरुणाचल प्रदेश आगो लो युद नगो सेवे उस है बीजे जिप गुद हुक न भारत सरकार ग अलाक लो जिलिक्सा आगम आहम मेगो जावका मेस पुकनम हमला मेम पाथा तो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी रोनो हिल्स दोईमुख आजन व गाइडेंस ऑफ इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी और इलेक्शन मैनेजमेंट आरा लोक स्टेट चीफ इलेक्टोरल ऑफिस अरुणाचल प्रदेश मोर्ग आलोहानगर लोक बाबन लो वर्चुअल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को अरुणाचल प्रदेश स्टेट गवर्नर के टी फॉर नाइक oka sikna alo lo gobonor ye agom ajab kena red kula so si jaga

0: Isyang district police good her so isyang district ge SV Pankaze Lamba ke leadership ara lok so Jane College pasigat ge ajen be college ge chimpu kula any school a good ge lega be hota om go be police intensive program rigo ham rijup gap kumakhal men padom oksok program ham in kun helpful ga alolu regula lok nana lok rep gala sok telefon ga alolu nan lo go ba ritri ga ku ba khan men pa tha to Bharat la ingen ba ni ga lenga nan 2020 international series men nam ham shilo scout tom ga utilita bol lo kika me se tak tu kuna me ok sok me che ham si jaga kene ba je lo ka kire gar kuna kham me pa to united state ga Englewood Los Angeles stadium lo se ya pipa world cup ga quarter final lo spain ha gol engin ko belgium ne jigre ke la semi final lo challenge ko khar me pa to oxo in cholo boston lo france ha morocco ne gol engin ko jita ga greek la semi final lo challenge chop ku ba ok quarter final kire gon ham so sene mia mi Guardian se lo nerve la England bunyi ge penko lo sege enyi baje ham chumuni to gobari lo ki kame se rab kuna khabla men pa tha do papumpara district na men pe la Arunachal Pradesh state ke regula pin district ke dene yellow alert pe Itanagar ka meteorological center ha jape ke jilen pu kuna ba okasok district ke lo dugum dura ke ajen pe ni do ha dik ta alba hulu jir kuna hamla japa tap ku ba kham to ka suru ga ni shi pu ya ha bo
1: Si Akazvani Itano Pukuma Sokukuba Tanigata Surubishi Memena Biki Paraga Agomba
2: अभी आप सुन रहे थे निशी श्रोताओं का समाचार श्रोता मित्र आपको बता दें कि निशी श्रोताओं का कार्यक्रम आगे सुनने के लिए आप हमारे मीडियम वेब चैनल 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा डीआरएम 666 किलोहर्ट्ज पर अभी जुड़ सकते हैं और पूरे कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं
3: कचरा जी अब जरा संभल के क्योंकि अब आने वाला है सफाई का सबसे बड़ा मुकाबला जी हाँ आईएमसी क्लीनलीनेस लीग 2026
4: 13th ईटानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी यूथ एसोसिएशन लेकर आ रहा है बैटल ऑफ 20 वार्ड्स जो होगा 10th जुलाई 2026 से 25th अगस्त 2026 तक अब होगा मुकाबला कौन सा वार्ड होगा सबसे क्लीन सबसे ग्रीन और बनेगा राजधानी ईटानगर का स्वच्छ चैंपियन और हाँ जीतने वाले वार्ड के लिए है 5 लाख का ग्रैंड कैश प्राइज
3: कॉर्पोरेटर साहब फाइन और मीटिंग तो चलती रहेगी
4: अब ग्लोव्स पहनिए झाड़ू उठाइए और अपने वार्ड को चैंपियन बनाइए
3: और ईटानगर के नागरिकों आपका एक छोटा सा कदम हमारी राजधानी ईटानगर को बना सकता है और भी सुंदर और भी स्वच्छ
4: तो अब कचरा हटाइए वार्ड चमकाइए और जीतिए 5 लाख का कैश प्राइज
3: रजिस्ट्रेशन और जानकारी के लिए संपर्क करें 9366693170 या 9402877126 पर
4: झाड़ू घुमाओ वार्ड चमकाओ आईएमसी क्लीनलीनेस लीग 2026 स्वच्छ राजधानी हमारी जिम्मेदारी
3: अटेंशन पारे हाइड्रो पावर स्टेशन अंडर ऑपरेशन जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे वाहनों को नदियों के रास्ते पार ना करे और ना ही उसमें धोने जाए फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे अपनी सुरक्षा अपने हाथ सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

जी हाँ श्रोता मित्र, आप जुड़े हुए हैं अरुण एफ एम 103.1 MHz पर। श्रोता मित्र, आपको बता दें कि इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:11 हो रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ ही हमारे हिंदी फिल्मी गीतों का सफर आगे जारी रखते हुए आपको सुनवाएंगे तेरी मेरी कहानी फिल्म के गाने। तो चलिए पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं वाजिद की आवाज में।

जी हाँ श्रोता मित्र, आप सुन रहे हैं तेरी मेरी कहानी फिल्म के गाने। अल्लाह जाने ये खूबसूरत गीत आप सुन रहे थे राहत फतेह अली खान की आवाज़ में। श्रोता मित्र, इस फिल्म के बारे में बताना चाहेंगे कि शाहिद कपूर और प्रियंका चोपड़ा की यह फिल्म तेरी मेरी कहानी 2012 में रिलीज हुई थी। ये एक पीरियड रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें तीन अलग अलग युगों यानी कि सन 1910, 1960 और 2012 में एक ही जोड़े की प्रेम कहानी को दिखाया गया है, जो पुनर्जन्म और प्रेम के धागे से जुड़े हुए हैं। निर्देशक कुणाल कोहली ने इस फिल्म के जरिए प्यार के बदलते रूप और आधुनिक जीवन की जटिलताओं को बहुत ही खूबसूरती और हल्के फुल्के अंदाज में पेश किया है।

और इसके साथ ही साजिद वाजिद द्वारा रचित इसका संगीत काफी लोकप्रिय भी हुआ था। तो चलिए इसी के साथ ही कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आपको सुनवाते हैं इस फिल्म का अगला गीत।

श्रोता मित्र, आप आनंद ले रहे थे तेरी मेरी कहानी फिल्म के गीतों का। जी हाँ श्रोता मित्रों, ये आखिरी गीत को आप सुन रहे थे वाजिद, मीका सिंह और श्रेया घोषाल की आवाजों में। श्रोता मित्रों, आपको बता दें कि हिंदी फिल्मी गीतों का ये सफर आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल हम ले रहे हैं एक ब्रेक।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: सुनिए सुनिए सुनिए कचरा जी, अब जरा संभल के, क्योंकि अब आने वाला है सफाई का सबसे बड़ा मुकाबला। जी हाँ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026
1: 13th ईटानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी यूथ एसोसिएशन लेकर आ रहा है बैटल ऑफ 20 वार्ड्स, जो होगा 10th जुलाई 2026 से 25th अगस्त 2026 तक। अब होगा मुकाबला, कौन सा वार्ड होगा सबसे क्लीन, सबसे ग्रीन और बनेगा राजधानी ईटानगर का स्वच्छ चैंपियन। और हाँ, जीतने वाले वार्ड के लिए है 5 लाख का ग्रैंड कैश प्राइज।
0: कॉर्पोरेटर साहब, फाइन और मीटिंग तो चलती रहेगी।
1: अब ग्लोव्स पहनिए, झाड़ू उठाइए और अपने वार्ड को चैंपियन बनाइए।
0: और ईटानगर के नागरिकों, आपका एक छोटा सा कदम हमारी राजधानी ईटानगर को बना सकता है और भी सुंदर और भी स्वच्छ।
1: तो अब कचरा हटाइए, वार्ड चमकाइए और जीतिए 5 लाख का कैश प्राइज।
0: रजिस्ट्रेशन और जानकारी के लिए संपर्क करें 9366693170 या 9402877126 पर।
1: झाड़ू घुमाओ, वार्ड चमकाओ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026, स्वच्छ राजधानी हमारी जिम्मेदारी।
0: अटेंशन, पारे हाइड्रो पावर स्टेशन अंडर ऑपरेशन। जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: पारे हाइड्रो पावर स्टेशन इज करेंटली इन ऑपरेशन। Whenever you hear the warning siren, please move away immediately from the river and all adjoining river banks. When the siren sounds, do not attempt to cross the river or swim in it. Also avoid entering the river bed to collect sand, stones or any other quarry materials. Do not park vehicles in river banks or use the river for washing vehicles. Fishing in the river is strongly discouraged. We also request the public not to organize picnics, gatherings or any other recreational activities in or around the river banks. Even after the water level has gone down, do not camp, stay or set up temporary shelters in river beds or river channels, as water levels can rise suddenly without warning. Your safety depends on staying alert and following precautions. This announcement is issued by Pare Hydro Power Station in the interest of public safety and awareness.

श्रोता मित्र, आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। और आपको ये भी बता दें कि हमारे हिंदी फिल्मी गीतों का सफर आगे जारी रहेगा। श्रोता मित्र, आगे हम आपको सुनवा रहे हैं प्रेम फिल्म के कुछ चुनिंदे गाने। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवा रहे हैं प्रेम फिल्म का ये बेहद ही खूबसूरत गीत अलका याग्निक और नलिन दवे की आवाजों में।

श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे प्रेम फिल्म का ये गीत अलका याग्निक और नलिन दवे की आवाजों में। श्रोता मित्रों, प्रेम फिल्म 1995 में सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। सतीश कौशिक द्वारा निर्देशित ये एक हिंदी रोमांटिक फिल्म है। फिल्म पुनर्जन्म की अवधारणा पर आधारित है, जिसमें संजय कपूर और तब्बू ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सफल नहीं रही थी, लेकिन इसके गाने काफी लोकप्रिय हुए थे। आपको बता दें कि इस फिल्म का जी हां संगीत तैयार किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और इस फिल्म को लिखा था जावेद अख्तर ने। तो आइए आपको सुनवाते हैं इस फिल्म का अगला गीत।

श्रोता मित्रों, आप सुन रहे थे प्रेम फिल्म के कुछ चुनिंदे गाने। इस आखिरी गीत को आप सुन रहे थे अलका याग्निक और नवीन दवे की आवाजों में। इसी के साथ ही हिंदी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। जी हां श्रोता मित्रों, आप जुड़े हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। आपको ये भी बता दें कि कुछ ही पलों में यानी कि 8 बजते ही आप सुन पाएंगे वीकली स्पोर्ट्स राउंड अप कार्यक्रम।

श्रोता मित्रों, अभी आप सुन रहे थे पाश्चात्य संगीत पर आधारित कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज। जी हाँ श्रोता मित्रों, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। आपको बता दें कि कुछ ही पलों में यानी कि 9 बजते ही आप सुन पाएंगे हमारा अगला कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। तो आप जुड़े रहे हमारे साथ यानी अरुण एफएम के साथ।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

जी हाँ श्रोता मित्र, अब समय हो चला है कार्यक्रम भूले बिसरे गीत का, जहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ ऐसे नगमे जो हमारी यादों की स्मृति में धुंधली पड़ गई हैं, लेकिन ये संगीत हिंदी सिनेमा जगत का एक खूबसूरत और अहम हिस्सा है। तो चलिए श्रोता मित्र, कार्यक्रम भूले बिसरे गीत की शुरुआत करते हैं। आपको सुनवाते हैं पहला गीत, साहिब बीवी और गुलाम फिल्म से, जिस गीत को लिखा है शकील बदायूं ने।

अपनी सुरों से सजाया है आशा भोसले ने और उन साथियों ने। संगीत संगीत से सजाया है हेमंत कुमार ने, और गीत के बोल हैं, किसकी दुनिया यहां तबाह नहीं, कौन है जिसके लब पे आह नहीं, हुस्न पर दिल जरूर आएगा, इसके बचने की कोई राह नहीं, जिंदगी आज नजर मिलते ही लुट जाएगी।

0: हमी को मत घेर जरा,
1: हम सब चोर हैं समझ का है फेर जरा।
0: चोर सारी दुनिया हमी को मत घेर जरा,
1: हम सब चोर हैं समझ का है फेर जरा।
0: चलता है जले कोई यहाँ है फिकर किसे,
2: आज का ठिकाना करो कल।

0: है सदियों से जग की रस्म यहाँ,
1: एक की खुशी से बना दूसरे का गम यहाँ।
0: यही तो है सदियों से जग की रस्म यहाँ,
1: एक की खुशी से बना दूसरे का गम यहाँ।
2: जलता है जले कोई यहाँ है फिक्र किसे,
3: आज का ठिकाना करो कल की खबर किसे।
4: हमको हंसते दे जमाना जलता है।
5: जी हाँ श्रोता मित्रों, आप आनंद ले रहे हैं भूले बिसरे गीतों का। ऐसे गीत को आप सुन रहे थे हम सब चोर है फिल्म से मोहम्मद रफी और जीएम दुरानी की आवाजों में। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए

0: नहीं है वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है वल्ला जवाब तुम्हारा
1: माना जनाब ने पुकारा नहीं क्या मेरा साथ भी गवारा नहीं मुफ्त में बन के चल दिए तन के वल्लाह जवाब तुम्हारा नहीं। जी हाँ श्रोता मित्र आप सुन रहे थे मजरूह सुल्तानपुरी द्वारा लिखा ये गीत किशोर कुमार की आवाज में पेइंग गेस्ट फिल्म से। श्रोता मित्र आपको सुनवा रहे हैं इस फिल्म का अगला गीत।

0: सुनिए सुनिए कचरा जी, अब जरा संभल के, क्योंकि अब आने वाला है सफाई का सबसे बड़ा मुकाबला। जी हाँ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026
1: 13th ईटानगर कॉन्स्टिट्यूएंसी यूथ एसोसिएशन लेकर आ रहा है बैटल ऑफ 20 वार्ड्स, जो होगा 10th जुलाई 2026 से 25th अगस्त 2026 तक। अब होगा मुकाबला, कौन सा वार्ड होगा सबसे क्लीन, सबसे ग्रीन और बनेगा राजधानी ईटानगर का स्वच्छ चैंपियन। और हाँ, जीतने वाले वार्ड के लिए है 5 लाख का ग्रैंड कैश प्राइज।
0: कॉर्पोरेटर साहब, फाइन और मीटिंग तो चलती रहेगी।
1: अब ग्लोव्स पहनिए, झाड़ू उठाइए और अपने वार्ड को चैंपियन बनाइए।
0: और ईटानगर के नागरिकों, आपका एक छोटा सा कदम हमारी राजधानी ईटानगर को बना सकता है और भी सुंदर और भी स्वच्छ।
1: तो अब कचरा हटाइए, वार्ड चमकाइए और जीतिए 5 लाख का कैश प्राइज।
0: रजिस्ट्रेशन और जानकारी के लिए संपर्क करें 9366693170 या 9402877126 पर।
1: झाड़ू घुमाओ, वार्ड चमकाओ, IMC क्लीनलीनेस लीग 2026। स्वच्छ राजधानी हमारी जिम्मेदारी।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

ब्रेक के बाद कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में आप सभी सुनने वालों का फिर से स्वागत है। श्रोता मित्रों, आगे अब हम आपको सुनवाएंगे अमर फिल्म के गाने। लीजिए, प्रस्तुत है अमर फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज में।

श्रोता मित्र, आप सुन रहे थे अमर फिल्म से ये बेहद ही खूबसूरत गीत लता मंगेशकर की आवाज में। श्रोता मित्र, इस गीत के साथ कार्यक्रम भूले बिसरे गीत के समापन पर अब हम आ पहुंचे हैं। साथ ही आप सभी से अलविदा कहने का वक्त भी हो चला है। उम्मीद है इस प्रसारण सभा के कार्यक्रम आपको पसंद आए होंगे, जिसे आप तक पहुंचाने में हमारे साथ बने हुए थे प्रसारण निष्पादक पी दोले तथा तकनीकी अभियंता पीपी त्योरी और साथ ही हमारे अन्य सहकर्मी। श्रोता मित्र, जाने से पहले ये भी बता दें कि आगे कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से एफएम गोल्ड के कार्यक्रमों को, तो आप बने रहे अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और आपसे होगी फिर मुलाकात हर दिन की तरह कल प्रातः 5:48 पर, यानी हमारी पहली प्रसारण सभा के तहत। तब तक के लिए अपने रेडियो साथी नीलम को दीजिए अनुमति। आप रखें अपना और अपनों का ख्याल। नमस्कार, शुभ रात्रि।

नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। वर्षा भारत के लिए केवल एक ऋतु नहीं बल्कि नवजीवन का उत्सव है। बादलों का आगमन, धरती की सौंधी गंध, खेतों की हरियाली और लोकगीतों की स्वर लहरियां, ये सब मिलकर हमारी सांस्कृतिक स्मृति का हिस्सा बनते हैं। भारतीय मनीषा ने जल को सदैव जीवन का मूल माना है। ऋग्वेद का ये मंत्र कहता है, आपो हिष्ठा मयो भुवा, यानी जल ही सुख, समृद्धि और कल्याण का स्रोत है। यही कारण है कि भारत ने जल का केवल उपयोग नहीं किया, उसका सम्मान भी किया। कहीं बावड़ियां बनी, कहीं तालाब, कहीं कुंड, तो कहीं मंदिरों के सरोवर। वर्षा की हर बूंद को संजोना हमारी जीवन पद्धति का एक हिस्सा ही था। आज परिस्थितियाँ थोड़ी बदल रही हैं, तो कहना चाहिए बदल चुकी हैं। जलवायु परिवर्तन

0: परिवर्तन के कारण वर्षा का स्वरूप भी बदला। कहीं अतिवृष्टि, कहीं अल्पवृष्टि और कई क्षेत्रों में लगातार गिरता भूजल स्तर, ये संकेत हमें सचेत करते हैं कि जल संरक्षण अब विकल्प नहीं, आवश्यकता है। इसी सोच को जन भागीदारी का स्वरूप देने के उद्देश्य से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर कैच द रेन अभियान प्रारंभ किया गया। इसका संदेश है, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, यानी जहां भी वर्षा हो, जब भी वर्षा हो, उसकी प्रत्येक बूंद को सहेजिए। प्रधानमंत्री ने मन की बात के अनेक संस्करणों में भी जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आग्रह किया है। उन्होंने देश के विभिन्न हिस्सों में तालाबों के पुनर्जीवन, वर्षा जल संचयन और सामुदायिक प्रयासों के प्रेरक उदाहरणों का उल्लेख करते हुए कहा है कि जल संरक्षण तभी सफल होगा जब ये शासन का नहीं, समाज का संकल्प बने। ये अभियान वस्तुतः आधुनिक भारत को उसकी ही प्राचीन जल संस्कृति से जोड़ने का एक अद्भुत प्रयास है। बारिश की हर बूंद प्रकृति का उपहार है। उसे सहेजना केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति के उस मूल भाव का सम्मान भी है जो हमें सिखाता है कि प्रकृति से जितना लें उतना उसे लौटाएं भी। प्रकृति के प्रति श्रद्धा भारतीय संस्कृति को उसकी अनोखी अनूठी पहचान देती है। यही सांस्कृतिक चेतना हमारे पर्वों में भी दिखाई देती है, हमारे उत्सवों में भी दिखाई देती है, जहां आस्था और लोक जीवन एकाकार हो जाते हैं।
1: यो यो यो जगन्नाथो चढ़ी नंदी।
0: इसी क्रम में पुरी की विश्व विख्यात श्री जगन्नाथ रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक समावेशिता, लोक आस्था और शिल्प परंपरा का एक अद्भुत उत्सव है। और इसी पर केंद्रित है हमारी अगली प्रस्तुति, नित्य नीलाचल।

0: जैसा शरीर वैसा देव, अर्थात शरीर के लिए जो आवश्यक है देव पूजन भी उसी विधि के अनुसार होना चाहिए। इस भावपूर्ण विचारधारा का प्रतीक है उड़ीसा के पुरी में अनुष्ठित हो रही यह नवदिनात्मक यात्रा। भक्त और भगवान के बीच सारे व्यवधान को तोड़कर प्रभु बलभद्र, देवी सुभद्रा और प्रभु श्री जगन्नाथ रथारूढ़ होकर रत्नवेदी को छोड़कर पूरी बड़दांड में यात्रा करते हैं। श्री गुंडीचा मंदिर में 7 दिन रहकर बाहुड़ा यात्रा में भाई बहन श्री मंदिर को वापस आते हैं। यह यात्रा भाव की यात्रा है, समन्वय की यात्रा है। कठोपनिषद में कहा गया है, आत्मानं रथिनं विधि शरीरं रथमेव तु। रथ यात्रा की महानता के बारे में गवेषक अशोक पांडे कहते हैं,
1: भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को बड़े आकार में अनुष्ठित होती है। प्रत्येक वर्ष सरस्वती पूजा यानी वसंत पंचमी से काष्ठ संग्रह का कार्य शुरू होता है। रथ निर्माण में लगभग 205 प्रकार के सेवायत कार्य करते हैं।
0: साल में एक बार अनुष्ठित इस रथ यात्रा की प्रस्तुति बहुत पहले से होती है। श्रीनगर के सम्मुख स्थित रथ खला में पवित्र अक्षय तृतीया से ही रथ का कार्य आरंभ हो जाता है। इसमें विश्वकर्मा महाराणा, रूपकार, चित्रकार, भोई सेवक, करतिया सेवक, ताम्र विशोई, ओझा महाराणा और अन्य सेवक हिस्सा लेते हैं। रथ निर्माण के परंपरा के ऊपर प्रकाश डालते हुए पुरी के मुख्य विश्वकर्मा सेवक विजय कुमार महापात्रा जी का कहना है,
2: मैं नंदीघोष रथ का मुख्य महाराणा सेवक हूँ। 1971 से हम एक कार्य कर रहा हूँ। भगवान जी जो रथ का काम होता है ना, ये हर साल बैसाख महीने अक्षय तृतीया तिथि से शुरू होता है और आषाढ़ श्री गुंडीचा के पहला दिन नेत्र उत्सव के दिन समाप्त हो जाता है। तीनों रथ में सबसे प्रथम का लकड़ी है फांसी, फांसी का लकड़ी इस्तेमाल किया जाता है फांसी। इसके बाद ढोरा और एक लकड़ी है, इसका नाम है असन। फांसी, ढोरा, असन की लकड़ी में ये तीनों रथ निर्माण किया जाता है और मही सिमली का लकड़ी में ये निर्माण किया जाता है। हमारा विश्वकर्मा के साथ सहयोग करने के लिए अर्थात लकड़ी को उठाने के लिए भोई सेवक है। इसके बाद लोहे का काम करने के लिए कमार सेवक है और चित्र का काम करने के लिए चित्रकार सेवक है, रूपकार सेवक है, लकड़ी में रूप देता है। महाराणा, भोई, कमार, रूपकार, चित्रकार सेवक के द्वारा यह रथ का कार्य संपन्न होता है। अक्षय तृतीया तिथि से जब भगवान जगन्नाथ जी का रथ का कार्य शुरू दिया जाता है, इसके बाद रथ का काम शुरू होता है। इसके बाद ये जो नृसिंह चतुर्दशी तिथि आता है और एक काम जोड़ दिया जाता है, इसका नाम है गुज्जर। जगन्नाथ जी का चंदन यात्रा होता है ना अक्षय तृतीया तिथि से, जो भोर तिथि आएगा चंदन यात्रा के आखिरी दिन, आखिरी दिन में दोनों पहिया में एक अक्ष संयोग किया जाता है प्रभु के आज्ञामण आने से बाद। हर कार्य यहाँ पर प्रभु के आज्ञा से होता है। अक्षय तृतीया तिथि से प्रभु आज्ञा देता है, मेरा रथ को शुभारंभ करो। इसके बाद रथ का कार्य शुरू किया जाता है। भौरी तिथि में प्रभु आज्ञा देंगे, मेरा रथ को खड़ा करो। इसके बाद दोनों पहिया में एक अक्ष संयोग किया जाता है। नेत्रोत्सव तिथि से प्रभु आज्ञा देंगे, मेरा रथ को मेरे दरवाजे पर लाओ। आज्ञा माल आने से बाद खींच के ले जाएंगे प्रभु दरवाजे के पर। जगन्नाथ जी का रथ सबसे बड़ा है और बलभद्र जी का रथ जरा छोटा है, सुभद्रा माई का रथ सबसे छोटा है। जगन्नाथ जी का रथ में 16 पहिया लगता है, बलभद्र जी का रथ में 14 पहिया लगता है और सुभद्रा माई के रथ में 12 पहिया लगता है। इस तीनों रथ ऐसे बना जाता है और कोई जगह में इसी तरह रथ नहीं बना जाता है।
0: श्रीक्षेत्र धाम में भक्त के साथ भगवान के अपूर्व मिलन के दो मुख्य यात्राएं होती हैं। पहला स्नान यात्रा, दूसरा गुंडीचा यात्रा। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मंदिर के स्वर्ण कुएं से 108 घड़े जल से श्री बलभद्र, देवी सुभद्रा, श्री जगन्नाथ और श्री सुदर्शन को स्नान कराया जाता है। इस दिन प्रभु श्री जगन्नाथ गजानन वेश धारण करते हैं। आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा से तीनों ठाकुर अणसर घर में रहते हैं। इस समय अणसर घर की पट्टी में तीनों ठाकुरों की एक चित्रपट की पूजा की जाती है, इसे पट्टदिया कहते हैं। दैतापति सेवक हलधर दास महापात्र के अनुसार,
3: मैं हूँ हलधर दास महापात्र, बलभद्र जी का 12 ग्रही दैतापति हूँ। स्नान का बाद में अंदर जाते हैं हमारा सेवा शुरू होता है, श्रृंगार करते हैं, वेश करते हैं, रात को समय भगवान अनसर पिंडी को चल जाते हैं। ये सेवा हमारा अमावस्या तक सेवा होता है, ये सेवा 15 दिन में चलते हैं। यहाँ अनुसर का घर में शुक्ल वस्त्र परिधान होगा और शुक्ल फूल लगी होगा। एकादश का दिन महाप्रभु जी की रंगीन परिधान होगा। आयुर्वेदिक तो पथी पांचन होता है, आम केला पनस सपुरी सपका, ये 5 प्रकार फल भोग होता है, पथी होता है, मुख और नारियल का पूरा जल, लवंग, जायफल दे के, चंदन दे के इसको पानी खिलाते हैं और पान भी खिलाते हैं। जितना शब्द होता है कीर्तन का, भजन का, जो बाजा सब गाना होता है, मंदिर का अंदर में कुछ चलेगा। सुस्त होने के बाद में रथ यात्रा होगा, द्वितीया तिथि में रथ का ऊपर जाएगा।
0: अनसर खत्म होने के बाद प्रभु आरोग्य लाभ करते हैं। साधारण मनुष्य के जीवन में जो घटित होता है वही श्री मंदिर में भी होता है। अनसर के बाद नेत्रोत्सव, उसके बाद रथ यात्रा, काल ध्वज, देव दलन और नंदी घोष तीनों रथ सुशोभित होकर सिंह द्वार के सम्मुख प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं। धाड़ी पहंडी में कब आएंगी चतुर्धा मूर्ति?
1: रथ खला से तीनों ही रथ सज धज करके तैयार करके लाए जाते हैं और श्री मंदिर के महाद्वार के ठीक सामने उत्तर दिशा की तरफ मोड़ करके खड़ा कर दिया जाता है। ऐसे में भगवान जगन्नाथ अपने रत्न वेदी का त्याग करके बाहर निकलते हैं और पहंडी विजय करते निश्चलानंद सरस्वती महाराज अपने परिकरों के साथ तीनों ही रथों का वे अवलोकन करते हैं और रथों पर जाकर के अपना आत्मनिवेदन चतुर्धा देव विग्रहों को देते हैं। उनके वापस आने के बाद सीधे श्री नाहर से पुरी के गजपति महाराज भगवान जगन्नाथ के प्रथम सेवक तीनों ही रथों पर वे सोने के मुठ वाले झाड़ू से छेरा पोरा करते हैं और इस तरह से भगवान जगन्नाथ जब जाते हैं अपने गुंडीचा घर में जाकर वहां 7 दिन तक विश्राम करते हैं, उसको गुंडीचा महोत्सव कहते हैं।

0: रथ यात्रा की समाप्ति बाहुड़ा यात्रा में होती है। यात्रा तो समाप्त हो जाती है पर प्रभु की अनंत लीला श्री मंदिर के रत्न सिंहासन में चलती रहती है। श्री मंदिर के शिखर पर पतित पावन की ध्वजा लहराती रहती है। उसी ध्वजा में सारे विश्वास का समन्वय होता है। ऐसा लगता है जैसे सबकी सांसें तरंगित हो रही है महोदधि में। और कभी इस दृश्य को शब्दवद करते हुए भाव विभोर होके गाने लगते हैं, देखो ये नित्य नीलाचल सभी तीर्थों का संगम स्थल, देखो ये नित्य नीलाचल सभी तीर्थों का संगम स्थल।
1: ये था लघु रूपक नित्य नीलाचल। मूल उड़िया आलेख तरुण कांति राउत का था, जिसका हिंदी अनुवाद किया डॉक्टर रश्मि रेखा जिना ने। वाचन और प्रस्तुति थी प्रज्ञा पारमिता साहू की, आकाशवाणी कटक से। भारत की सांस्कृतिक विविधता का एक सुंदर पक्ष ये भी है कि यहाँ ऋतुएं केवल मौसम नहीं बदलती बल्कि अपने साथ स्वाद, रंग और उत्सव भी लेकर आती हैं। इसी स्वाद और विरासत की एक अनूठी झलक मिलती है दिल्ली में हर साल आयोजित आम महोत्सव में। यहाँ देश के अलग अलग राज्यों से लाई गई सैकड़ों किस्मों के आम न केवल प्रदर्शित किए जाते हैं बल्कि भारतीय बागवानी, कृषि अनुसंधान और फल संस्कृति की समृद्ध परंपरा का भी परिचय कराते हैं। पत्रिका में हमारी अगली प्रस्तुति है इसी आयोजन पर, ये आम कुछ खास है।
2: मैं डॉक्टर ए के सिंह, एक्स प्रिंसिपल साइंटिस्ट, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, और मैंगो के विषय में आपको ये बताना चाहूंगा कि आम महोत्सव जो हमारा करने का जो उद्देश्य होता है वो होता है कि हम पूरे कंट्री से सभी जगहों पे एक दूसरे को एक मिठास के रूप में परिचित करा सके। और चूंकि एक आम ऐसा फसल है जो कि ट्रॉपिकल से लेके सब ट्रॉपिकल रीजन माने उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, हर जगह उगाया जाता है। केवल अंतर ये होता है कि हर जगह की जलवायु में प्रजाति विशेष का विशेष महत्व होता है और उस सूक्ष्म जलवायु में जो क्षेत्र विशेष का होता है उसमें आम का स्वाद अलग ही होता है। तो हमारा उद्देश्य होता है कि हर क्षेत्र के आम यहाँ पे आए और वो अपनी मिठास पूरी जनता के बीच में ले जाए और जनता सभी प्रजातियों के बारे में जान सके कि उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम तक कौन सी प्रजातियां उगाई जाती है। इस बार देखिए वैसे तो आए थे 20 पार्टिसिपेंट्स ऐसे आए थे जो ग्रोवर्स थे और 6 पार्टिसिपेंट्स ऐसे आए थे जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थे और वो हमने कवर किया था उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली, तो 5-6 स्टेट ही हमने पूरा कंप्लीट कवर किया।
3: डॉक्टर नितिन विक्रम सिंह प्रधान वैज्ञानिक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से। हमारे पास हमारे संस्थान से विगत 15 वर्षों में लगभग 10 संकर किस्में विकसित की गई है आम की। उषा सूर्या है, उषा अरुणिमा, उषा सूर्या एक सिलेक्शन है, बाकी सारी संकर किस्में है। अरुणिमा है, आपका प्रतिभा है, श्रेष्ठ है, पीताम्बर है, लालिमा है, अभी रिसेंटली हमने दीक्षिता भी रिलीज की है। मोस्टली अमरपाली और संचेशन के संकरण से बना है पर कुछ किस्में तो दशहरी और लाल सिंदरी भी सम्मिलित। जैसा आप सभी देखते हैं ऐसे आम महोत्सव यहाँ चल रहा है और आम के नाम पे देखिए दिल्ली की जगह में कितने लोग, कितनी भीड़ यहाँ उमड़ी। आम केवल एक फल नहीं है, आम एक इमोशनल कनेक्शन है लोग। जैसे आप यूपी की बात कर लें तो वहाँ दशहरी है, आप वेस्ट बंगाल की बात कर ले वहाँ मालदा बहुत फेमस है, बिहार में जरदालू है, किशनभोग है, आप साउथ में चले जाए, आंध्र में चले जाए तो वहाँ बैगना पल्ली है, महाराष्ट्र में चले जाए तो अल्फांसो है, गुजरात में केसर है। तो ऐसे ही विभिन्न किस्में हैं जो मिठास अपने स्वाद से लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है।
4: मेरा नाम भरतराज सिंह यादव है, मैं एमपी कठियावाड़ा से आया हूँ। ये साइज में सबसे बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा आम है और ये हमारे

0: खेड़ों में होता है हमारे गाँव में, और भी बहुत सारी वेराइटीज है लेकिन हमारे सीजन अभी खत्म हो चुका है तो हम लोग इतनी लेके आए।
1: मेरा नाम रामकिशोर मौर्या है, मैं मलिहाबाद लखनऊ से हूँ। हमारे यहाँ अनेक प्रकार की प्रजातियों के आम पाए जाते हैं जिनको लोग जानते नहीं, इसलिए दिखाने के लिए कि लोग जाने पहचाने। हम अकेले 250 वैरायटी यहाँ आम की वैरायटी प्रस्तुत किए हैं, जिसमें खट्टे मीठे हैं और कुछ चूस कर खाने वाले हैं, कुछ काट के खाने वाले हैं, कुछ अचार की वैरायटियाँ विशेषकर, जो कि सभी प्रजातियों का अपना एक अनूठा स्वाद है, ताकि इन लोगों को मार्केट में जहाँ भी दिखे उनका स्वाद ले और खाए, तभी उसके बाद हमारे किसान की आमदनी बढ़ेगी। जो हमारी पुरानी हमारे पैतृक वैरायटियाँ है वो जीवित रहने अन्यथा विलुप्त हो जाएंगी।
2: मैं कदीम चंदन नर्सरी मलिहाबाद लखनऊ से आया हुआ हूँ। मेरा नाम शेख शादाब अली है। मेरा पुरखों से काम चला आ रहा है नर्सरी का, जो अलग अलग वैरायटी को डेवलपमेंट करते हैं, तैयार करते हैं, पौधे नए नए निकालते हैं। हमारे पास तमाम सी वैरायटी हैं, सुरखा बर्मा है, गुलाब खास है, हुसनारा है, दशहरी है, राम केला है, चन्नत पसंद है, साजिद पसंद है, बनारसी है, रस कपूर है, तमाम सी वैरायटी। इतनी वैरायटी है कि यहाँ पे आपको हम गिनाते हुए थक जाएंगे। अदर की तमाम सी ऐसी वैरायटी है जो आप एक दूसरे को मिलाती है, उसकी मिठास इतनी मिठास होती है जो दिल को खुश कर देती है और दिलों में मोहब्बत पैदा कर देती है। जो भी आम खाते हैं और दिल से हमको दुआएं देके जाती
3: है। ये आम कुछ खास हैं। दिल्ली के वार्षिक आम महोत्सव के बहाने भारत की फल समृद्धि, कृषि परंपरा और विविधता की रोचक यात्रा अभी आपने सुनी। सहयोग श्रीनाथ दीक्षित का था। भारत की सांस्कृतिक धरोहर केवल परंपराओं से नहीं, उन कलाकारों से भी समृद्ध होती है जो अपनी साधना से लोक और शास्त्र के बीच एक सेतु बन जाते हैं और देह के परे जाकर समय पर अपने हस्ताक्षर अंकित कर देते हैं। दुख की बात यह है कि बीते कुछ समय में ऐसी ही दो विशिष्ट विभूतियों ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। सबसे पहले बात लोक गाथा की विश्व यात्री पद्म विभूषण तीजन बाई की। छत्तीसगढ़ की लोक गाथा पंडवानी को गांव की चौपाल से अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाने वाली तीजन बाई ने अपने सशक्त गायन, प्रभावशाली अभिनय और अद्भुत कथन शैली से लोक कला को नई पहचान दिलाई। उन्होंने परंपरागत सीमाओं को तोड़ते हुए पंडवानी की कपालिक शैली को अपनाया और अपनी अनूठी प्रस्तुति के माध्यम से भारतीय लोक नाट्य को विश्वव्यापी सम्मान दिलाया। उनके स्वरों में लोक जीवन की मिट्टी, महाभारत की कथा और भारतीय लोक संस्कृति की आत्मा एक साथ सुनाई देती है। सुनते हैं तीजन बाई से आकाशवाणी रायपुर के लिए रिकॉर्ड किया गया उनका एक पुराना साक्षात्कार।

माता ने अटारी ये थे हमारा ध्रुव वही के दिन हमें उस दिन हम अटारी में रहे फिर हमला छोटपन में पकड़ के गनियारी में ले इस वहाँ हमारा लालन पालन हुई हमार माँ के नाम सुखबती और पिताजी के नाम छनुकलाल रही से छह भाई बहनी रहे हैं दो भाई चार बहनी गरीब होने के नाता ऐसे गुजारा बहुत दिन ले चलत रही से अब जब मैं बड़े लड़की हूँ तो संज्ञान हो गए तो लोग ले चला छोड़ के चल दे भाई बहनी मन के पूरा देखभाल ला मैं करूँ हमन छह भाई बहनी में कोनो पढ़े लिखे नहीं है हमार दाई है बांस गीत गावे और हमारे बाबू बांस बजावे माँ के साथ गुनगुनाए के जो आदत पड़ीस तो ऐसे पड़ीस कि वो एकदम लट लग गए लट लगे तो मैं कर्मा ददरिया सुआ पड़की बांस गीत गा लेत रही हूँ माँ गावे आरू

0: या या जनकारी राम राम अहो लाला सोला चेली के झूमी जाए हो।
1: बाटी भौरा भी अब्बड़ खेलत रहे हूँ, कबड्डी खेलत रहे हूँ, सुर खेलत रहे हूँ, खो खो खेलत रहे हूँ, तो

में मोर नाना के घर पड़त रही से छोटे नाना के दनियारी गांव में तो छोटे से नौकर झोपड़ा रही से तेमे भीतर में बैठ के पंडवानी के गायन गात रही से बिजलाल पारधी मोर नाना जी के नाम और वो हम ऐसे टेर लगाई द्रौपदी बन के श्री कृष्ण जिला तो वो आवाज सुने के बाद तो मोर रोम रोम एकदम खड़ा हो गई। अरे बाप रे हाथ कतेक सुंदर एकर आवाज और कतेक बढ़िया भगवान ल पुकारा थे और एला लोग मन हा बिजलाल नाम रही से पर भगवान के नाम जपे ना तो ओला जपरी कहा भी 11-13 के लगभग में रहे हूँ मैं तो ये बच्चा कतेक सुंदर एकर दिल में लगाओ है तो सुने बरा थे की के वो छोटे से चटाई निकाली सो कथे में बैठ बेटा में बैठ आ कतका कन सुने ऐसे की के कही तो एक हफ्ता के जतका कहानी सुनाए रही से नहीं तेला 5-10 मिनट में खत्म कर दियो। तो नाना के आंखी में आंसू आ गए। उसी समय वो बोलीस कि बेटा मोर घर में हीरा है हे प्रभु और मैं नहीं परखे सके हूँ इसे की आज भी गुंजा थे तेर के आधार पे ही मैं तेर लगा था जब पंडवानी गाता हूँ तो

हजार रुपये जो जनता जनार्दन के सम्मान हमल ला मिलते वो गदगद कर देते। ऐसे लग जाते कि हम धरती में नहीं कि स्वर्ग में हनका ऐसे लागते मोर मन लागते भाई। जब अच्छा कथा में हम डूब के उन मन ला सुनाथन और उन मन कोई कोई जगह रोए धोए की बात है वो मन रोना शुरू कर देते। हम उसका सम्मान पाके अपन आप ला हम पूरा उकरे ऊपर अर्पण कर देथन ते हमला कई कौन सी मिट्टी में बना के हमला भेजे घर से हमला सब लोग ले सम्मान और प्यार मिला थे। ये में अब बड़ा आनंद आते आज भी वही है अब आगे बढ़ मालिक के हाथ।

0: मैं तो एक तो नारी हूँ है ना, और नारी के पात्र कहे माँ मोला कोई कष्ट नहीं पड़े और आनंद आते ज्यादा, पर जब भीम के रोल करता हूँ तो दो गुना आनंद आते। मैं अपन आप लग, मैं भीम समझे लग जाता हूँ कि मैं ही भीम हूँ, कि वो की जोशीला गदा पकड़ के रिंग था, तेकर कारण हुई है कि मैं सचमुच में वो समय मैं भीम के रोल नहीं करके मैं खुद भीम हूँ, ऐसे अनुभव लागते। चाहते हैं तो मैं पंडवानी ला आजकल के आधुनिक युग में आधुनिक रूप से काम कर सकत रहे हूँ, ओला एती तेती बहका सकत रहे हूँ, ओ में अच्छा अच्छा रोचक डाल सकत रहे हूँ, पर वो रोचक डाले में वो चीज नहीं दिखतीस, वो तो बर्बाद हो जातीस ना, फिर नाम कहाँ होतीस। तो ये चीज बचाए के खातिर हमला सब जने जुल मिल के अपन संस्कृति ला अच्छा सजा के रखे माँ, हमन ला फायदा है, हमारे आने वाले पीढ़ी मन ला फायदा है। सिखाए में जो आनंद आते मैं अब कुछ मोला अच्छा नहीं लगे, कतको लेकर रोते रोवत रोवत गाते आ तो बोले भूर यारो चुचकारो ये गाडर ही ते गाडर भी बेटा बहुत सुंदर गाले था, बोले बढ़ावा भी दो, तो ये में बड़ा आनंद आते मैंने गुरु बन के काम करो तो आपके समय में मोला बहुत अच्छा लगते, लेकर मल्ला सिखा के दे दो।
1: तपी करत मैं धुरला भेटे हूँ और नरसिंह ला भेटे हूँ खंभा माँ, भूर बिनत सौरी ला भेटे हूँ क्यों टल भेटे हूँ गंगा माँ।
2: और अब स्मरण करते हैं भारतीय रंगमंच की एक महान विभूति विजया मेहता का। विजया मेहता आधुनिक भारतीय रंगमंच की उन अग्रणी निर्देशकों में थी जिन्होंने मराठी रंगभूमि को नई सौंदर्य दृष्टि, प्रयोगशीलता और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। उन्होंने शास्त्रीय और आधुनिक रंग भाषा के बीच एक सशक्त सेतु बनाया। अभिनय, निर्देशन, रंग प्रशिक्षण और नाट्य चिंतन, हर क्षेत्र में उनका योगदान उल्लेखनीय रहा। उनके व्यक्तित्व और योगदान पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं सुप्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक अमोल पालेकर।
3: विजया जी एक ऐसी अभिनेत्री थी जिसे दिग्गज कहना भी कम होगा। एक छोटी सी बात मैं कह दूं कि विजया जी के बाद जितनी भी अभिनेत्रियां मराठी स्टेज पे आई और बड़ी अच्छी अभिनेत्री, उन सब पे और जिन्होंने विजया जी के साथ

0: साथ काम किया था उन सब पे विजया जी के अभिनय की छाप इतनी जबरदस्त थी कि ये कौन से स्कूल से आई है ये बताने की जरूरत नहीं रहती थी। मतलब उनके करियर के शुरुआत से आखिर तक उन्होंने एक ऐसी छाप छोड़ दी मराठी रंगमंच पर कि जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। रंगायन जैसी संस्था का उन्होंने निर्माण किया और अलग अलग प्रायोगिक नाटक उन्होंने पेश करना शुरू किया। उन्होंने एक अपना प्रेक्षक वर्ग बनाया जो बढ़ते गया। और विजया जी के बारे में एक बात कहना बहुत जरूरी है और समझना, विजया जी ने उनकी शुरुआत प्रायोगिक रंगमंच से की लेकिन वहां से वो मेन स्ट्रीम रंगमंच पर चली गई और मेन स्ट्रीम रंगमंच पर उन्होंने अभिनय भी किया और निर्देशन बहुत ज्यादा किया। सवाल उठाना, अलग किस्म के नाटक पेश करना, नए नए नाटककार पेश करना, ये सारा योगदान विजया जी ने बड़े काबिलियत के साथ किया।
1: भारतीय लोक कला और रंगमंच की ये दोनों विलक्षण साधिकाएं अपने अपने क्षेत्र में सृजन, समर्पण और सांस्कृतिक प्रतिबद्धता की ऐसी विरासत छोड़ गई हैं जो हमेशा हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी। भारतीय संस्कृति की शक्ति उसकी निरंतरता में है। प्रकृति के संरक्षण से लेकर लोक आस्था तक, कृषि परंपरा से लेकर सृजनशील कलाकारों की विरासत तक, हर धारा एक ही सांस्कृतिक प्रवाह का विस्तार है। इसी विश्वास के साथ आज की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती यहीं संपन्न होती है। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अधिक ब्यौरा हमारी विशेष संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ऐतिहासिक दो दिवसीय न्यूजीलैंड यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। चार दशकों से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा रही जिसने दोनों देशों के संबंधों को नई गति दी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित पाँच महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को न्यूजीलैंड का विश्वसनीय मित्र बताते हुए भारतीय समुदाय के योगदान और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत है। मंजुमीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जाँच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय भी समिति के सदस्य में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। गोवा में मीडिया से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली 41 संसदीय सदस्य समिति सरकारों, राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के विचार जानने के लिए राज्यों का दौरा कर रही है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना ने देश भर में 2 लाख से अधिक सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण मंजूर करने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। योजना के अंतर्गत 20,300 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ और लगभग 11 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए। नई दिल्ली में आज विशेष कार्यक्रम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये उपलब्धि भारत की खाद्य प्रसंस्करण विकास यात्रा के अगले चरण के लिए मजबूत आधार है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कल्पुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण आज वियतनाम के फू क्वेक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों में 10 तमिलनाडु से, 3 आंध्र प्रदेश से और 2 केरलम से थे। नाव में 32 भारतीय पर्यटकों, 3 चालक दल के सदस्यों और स्नान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। इंग्लैंड ने भारत को साउथहैम्पटन में 5वें और अंतिम T20 मैच में 258 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7वें ओवर में 2 विकेट पर 69 रन बना लिए थे। इंग्लैंड ने 5 मैचों की श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त बना रखी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम, कृतिका प्रदीप और चिकिता तानीपार्थी की टिकड़ी ने आज तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में रजत पदक अपने नाम किया। वहीं कृतिका प्रदीप ने व्यक्तिगत महिला कंपाउंड में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi has concluded his historic 2-day visit to New Zealand and departed for India. The visit, the first by an Indian Prime Minister to New Zealand in over four decades, gave a major boost to bilateral ties. During the visit, Prime Minister Modi held talks with his New Zealand counterpart Christopher Luxon. The two leaders witnessed the exchange of five memoranda of understanding in areas including defence, tourism, sports, disaster management and dairy and animal husbandry. A major highlight of the visit was the community event at Auckland's Park Arena, attended by over 10,000 members of the Indian diaspora. Addressing the gathering, Mr. Modi stated that the future of India and New Zealand is intertwined and the bilateral trade agreement will accelerate India's journey towards a developed nation.
3: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है. भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है. हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है. हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है. पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे.
2: On the occasion, Prime Minister Luxon described India as a trusted friend, praised

0: व्यापक वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को न्यूजीलैंड का विश्वसनीय मित्र बताते हुए भारतीय समुदाय के योगदान और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत है।
1: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूँ हम सफल होंगे।
0: मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों का महत्वपूर्ण आधार है। ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के संबंध साझा विरासत, स्थायी मित्रता, समान लोकतांत्रिक मूल्यों और उज्ज्वल भविष्य के साझा संकल्प पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि ऑकलैंड से वेलिंगटन और क्राइस्टचर्च से क्वींसटाउन तक भारतीय समुदाय ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। श्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और वहां की सरकार के सदस्यों की उपस्थिति के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये भारत न्यूजीलैंड संबंधों के प्रति व्यापक समर्थन का प्रतीक है। इस अवसर पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट के आज वियतनाम के फुक कोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं।
3: दूतावास के अनुसार मृतकों में से 10 तमिलनाडु से, 3 आंध्र प्रदेश से और 2 केरलम से थे। नाव में 32 भारतीय पर्यटकों, 3 चालक दल के सदस्यों और 1 परिचारक सहित कुल 36 लोग सवार थे। 17 यात्रियों और चालक दल के 4 सदस्यों सहित 21 लोगों को बचा लिया गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 जीवित बचे लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें गहन चिकित्सा देखभाल दी जा रही है। हनोई स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि खोज और बचाव अभियान जारी है। वहीं प्रभावित परिवारों को जानकारी और सहायता प्रदान करने के लिए हो ची मिन सिटी स्थित भारतीय दूतावास में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में घायलों के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल एक्स @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। दर्पण में आपका फिर स्वागत है। तूफान बावी के चीन के पूर्वी तट की ओर बढ़ने के कारण चीन में एहतियातन 6 लाख से अधिक लोगों को उनके घरों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। ये तूफान जापान के साकिशिमा द्वीपों और उत्तरी ताइवान से गुजरने के बाद अब चीन के लिए खतरा बना हुआ है। सोमवार को अमरीकी प्रशांत द्वीपों से टकराने और उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने के बाद से ये तूफान काफी कमजोर हो गया है। हालांकि तूफान की गति पहले ही कम हो गई, लेकिन भारी बारिश और नमी के कारण यह अभी भी गंभीर खतरा बना हुआ है। चीन के मौसम विभाग ने तूफान के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दक्षिण पूर्वी स्पेन के अंडालुसिया क्षेत्र में भीषण जंगल की आग को काबू में करने के लिए सैकड़ों दमकल कर्मी और सैन्य कर्मी संघर्ष कर रहे हैं। ये आग हाल के दशकों में देश की सबसे घातक जंगल की आग में से एक बन गई है। स्पेन के अधिकारियों के

0: अनुसार बेदार गांव के आसपास आपातकालीन सेवाओं को तैनात किया गया है, जहां 12 लोगों की मौत हो गई है, जिनमें 4 ब्रिटिश नागरिक शामिल हैं। 23 अन्य लोग अभी भी लापता हैं। अल्मेरिया के लॉस गरला डॉस क्षेत्र के स्थानीय अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला मुस्तफा खामनेई ने अपने पिता आयतुल्ला अली खामनेई की हत्या का बदला लेने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि देश की जिम्मेदारी है। एक रिपोर्ट।
1: आयतुल्ला अली खामेनेई की हत्या इस साल की शुरुआत में अमेरिका और इसराइल के हमलों में हुई थी। मुस्तफा खामेनेई ने दिवंगत नेता के अंतिम संस्कार में लोगों की भारी भीड़ को ऐतिहासिक बताया। आयतुल्ला अली खामेनेई के सुपुर्दे खाक के मौके पर जारी संदेश में मुस्तफा खामेनेई ने कहा कि हत्या के लिए जिम्मेदार लोग सजा से बच नहीं पाएंगे। इस बीच सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की खुली मांगे उठने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने आज ईरान को धमकी दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर यह टिप्पणी तब की जब वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों ने ईरान से सार्वजनिक बयान की मांग की कि होर्मुज जलडमरू मध्य खुला है और इस अहम रास्ते से गुजरने वाले जहाजों पर अब कोई हमला नहीं किया जाएगा। विश्व दर्पण के लिए मैं मनोज।
0: विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में चेकिया की कैरोलिना मुखोवा और लिंडा नोस्कोवा आमने सामने हैं। वहीं पुरुष डबल्स के फाइनल में ब्रिटेन के हेनरी पैटन और फिनलैंड के हैरी हेलियोवारा ने क्रोएशिया के मटी पाविक और एल साल्वेडोर के मार्सिलो अरेवालो की जोड़ी को 7-6, 7-6 से हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम लिया। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। फ्रांस और स्पेन पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश रवाना। कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। वियतनाम में नाव दुर्घटना में 15 भारतीयों की मौत, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। चीन में तूफान बावी के बढ़ने से 6 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉर्वे और इंग्लैंड तथा मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।